सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 45 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो चंदन के समान है, किसी के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। खुशी और गम हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हंसमुख की श्रेणी में आते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको भाता है, जबकि उदास चेहरे को लोग पसंद नहीं करते। यदि आप मुस्कुराते या हंसते हैं तो सामने वाले लोग भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार हंसकर

0: अपने गमों को भुलाने का प्रयत्न तो करते ही हैं, दूसरों की तकलीफ भी कुछ कम करते हैं। उदास चेहरे लोगों को उदास कर देते हैं। किसी को उदास देखकर आसपास के लोगों को खुशी नहीं होती। ये तो कुदरत की देन है कि किसी की खिलखिलाहट लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और किसी की आंखों के आंसू अन्य की आंखें भी गीली कर देते हैं। हंसी को स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि बताया गया है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है जो चेहरे पर एक अनोखी चमक लाता है। यही वजह है कि हंसमुख लोगों के चेहरे दमकते रहते हैं। हंसी मानसिक तनाव को कम करती है। हंसने से मानसिक तनाव कम होता है। जहां तक हो सके तनावग्रस्त व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर उठना बैठना चाहिए जिन्हें हंसने हंसाने की आदत हो। हंसमुख लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोग ऐसे लोगों का साथ पसंद करते हैं जिन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि हमेशा रोना रोने वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। उदासी किसी को नहीं भाती। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आंसुओं पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुख तकलीफों के साथ भी इंसान को जीना तो पड़ता है। क्यों ना हम सभी आंसुओं के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयत्न करें, थोड़ा खुद हंसें, जरा दूसरों को भी खुशी देने का प्रयत्न करें। हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। विशुद्ध हंसी ही खुशी देती है। क्रूर हंसी खुशी देने के बजाय रुला भी सकती है। भद्दा मजाक करना, अपमानित करना, मानसिक चोट पहुंचाना हंसी नहीं बल्कि अशिष्ट है। ये असभ्यता दर्शाता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना एक घटिया आदत है। जो हंसी खुशी बांटे वही हंसी वास्तव में हंसी है। ये मानवता का तकाजा है, हंसिए हंसाइए।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आपके खेत में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों को मारते हैं, नाश करते हैं। उनमें से एक ट्राइकोडर्मा भी है। ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी आप खेतों में जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्वतंत्र रूप से जमीन यानी कि मिट्टी में एवं सड़ती लकड़ी पर पाए जाने वाला एक फफूंद है। इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। इससे निकलने वाले रस से सड़ने वाले एवं जमीन में रहने वाले फफूंद के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को नष्ट करने में काम आ सकता है। यानी कि ट्राइकोडर्मा द्वारा जो अन्य फफूंद हैं जो कि रोग पैदा करते हैं उन रोगों के नियंत्रण हो सकता है। फ्यूजेरियम फाइटोप्थोरा एस्क्लेरोसियम जो मिट्टी जनित फफूंद हैं उनको ट्राइकोडर्मा नष्ट करता है और पौधे को सुरक्षित रखता है। कुछ रोग जो कि फफूंद के द्वारा फैलते हैं जैसे फसल और सब्जियों में मृदुगलन रोग डैम्पिंग ऑफ, जिसमें कि पौधा जो है उगने के साथ ही मुरझाने लगता है और उसका जो धड़ भाग सड़ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। सब्जियों में जड़ गलन एवं कॉलर सड़न रोग जो कि फ्यूजेरियम मैक्रोफोमिना से होता है। चना एवं मसूर में जड़ सड़न एवं उकठा रोग जो होता है वो भी फफूंद के द्वारा ही होता है। और इन सब रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग कर सकते हैं इन रोगों की रोकथाम के लिए। ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा पौधों में वृद्धि सहायक होता है। इसके उपयोग के कारण फास्फेट एवं सूक्ष्म तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जड़ अधिक नीचे तक जाने के कारण

0: पौधों में सूखा सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कीटनाशी का अपघटन भी ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से होता है। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं कार्बामेट कीटनाशी का मिट्टी में अपघटन ज़्यादा होता है। अब आप जान लीजिए कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके द्वारा बीज उपचार भी किया जा सकता है, यानी कि बीज जनित जो फफूंद होते हैं उनके द्वारा जो नुकसान होता है उससे बचाव हेतु, उस नुकसान से बचाव हेतु ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन जो है, यानी कि पाउडर जो है, उसे 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। नर्सरी का भी आप उपचार कर सकते हैं। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी के घोल में आप प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी को उपचारित कर बीज की बुआई कर सकते हैं। मिट्टी उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम भींगे हुए गोबर खाद में मिलाकर छाया में फर्श पर फैलाकर पॉलीथीन से ढक दें। 3-4 दिन बाद इसे उलट पुलट कर पुनः पॉलीथीन से ढक दें। 7 दिन बाद गोबर खाद मिश्रित ट्राइकोडर्मा को खेत में मिला दें। ट्राइकोडर्मा के 1% घोल को जुताई के कुछ समय पूर्व छिड़काव कर भूमि जनित जड़ गलन, धड़ गलन एवं उकठा रोगों से भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा एक फफूद है, लेकिन जो हानिकारक फफूद आपके खेतों में पाए जाते हैं, आपके फसलों को नुकसान करते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप गमला में भी कर सकते हैं, क्योंकि गमला में जब भी आप पौधे लगाते हैं या शोभाकारी पौधे लगाते हैं, कैक्टस लगाते हैं, तो एक समस्या उसमें बहुत देखने को मिलती है कि आपका पौधा जो है जड़ के पास से, यानी कि जैसे अंकुरित हुआ या जैसे वो उसका धड़ भाग है, वो लसलसा हो जाता है, वो गल जाता है, फिर पौधा आपका सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो इस तरह से इस रोग को भी नियंत्रित करने के लिए यदि आप गमले में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से ये जो बीमारी है वो नहीं लगेगी। ट्राइकोडर्मा बाजार में आपको पाउडर के रूप में मिलता है, उसका ये आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये फफूद है, इसका जो जैविक भाग है वो बाजार में आपको पैकेट में मिलता है, उसका आप लेकर के गमले में भी प्रयोग कर सकते हैं, खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, नर्सरी उपचार कर सकते हैं, मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से जड़ गलन, धड़ गलन, उकठा रोग और मृदु गलन रोग जो है, वो सारे रोग जो हैं इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, अन्य फफूद को मार सकते हैं।
1: ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार का प्रसारण होगा, इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

0: जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

गीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है वाणी जयराम का।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। आज का विषय है मुंह का कैंसर, इसके कारण और बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो भारत में बड़ी तेजी से फैल रही है जी, और उसमें जागरूकता का बड़ा अभाव है, मुंह के कैंसर के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है पटना के जाने माने कंसल्टेंट ओरल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेश। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
2: धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर, जैसा कि हमने कहा भी कि एक जागरूकता का अभाव है, इसके क्या कुछ कारण हैं, इस पर हम विशेष तौर पर जानना चाहेंगे आज आपसे।
2: जी जी, तो लोगों को लगता है कि मुंह का कैंसर सिर्फ तंबाकू, गुटखा या इन्हीं आदतों से होता है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कारण यही है, मगर इनके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं जिनसे मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा इसी पे करते हैं कि जो सबसे कॉमन कारण है वो है अत्यधिक तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, गुटखा में हो, खैनी रूप में हो, सिगरेट में हो, बीड़ी, किसी भी तरह से। और अगर साथ में अल्कोहल भी होता है तो इसका और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आम कारण यही है मुंह के कैंसर होने का। उसके अलावा और भी कारण है, जैसे एक दूसरा सबसे एक बड़ा कारण ये भी है कि मुंह में किसी कारण से बार बार घाव होना, जैसे कोई नुकीला दांत हो या कोई ऐसा नकली दांत जो कि बार बार गाल को या जीभ को में घाव कर रहा हो, तो वो बहुत लंबे समय तक होते होते भी वो कैंसर का रूप ले लेता है।
1: जी जी,
2: तो ये भी अगर है कि अगर कोई चीज़ कोई भी अगर आपके मुंह में बार बार घाव हो रहा है या उसके कारण बार बार आपको चोट लग रही है, तो उसको भी निदान अतिशीघ्र कर लेना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए।
1: मुंह की स्वच्छता की अगर हम बात करें, साफ सफाई को लेकर, तो ये कितना कारक हो
2: सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ओरल हाइजीन भी एक बड़ा कारण है। तो इन्फेक्शन, कुछ वायरस होते हैं जिनको हम लोग ऑनको वायरस बोलते हैं, उनका इन्फेक्शन है, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी हैं जो कुछ कुछ तरह से मुंह के कैंसर होने में अपना उनका भी एक योगदान है, एक
1: मुंह के
2: है।
1: जो कैंसर होते हैं बेसिकली किन किन हिस्सों में होते हैं, कुछ खास?
2: जी जी, मुंह में देखिए तो पूरा मुंह में ही आपके सबसे कहीं भी कैंसर हो सकता है, जो कि सबसे आम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। तो मुंह में आपको जो लिप है दोनों तरफ, गाल के साइड, जीभ, जीभ के साइड जो है वो किनारे के साइड,
1: जी जी,
2: तो ये सब जो है वो ज़्यादा कॉमन साइड है। और जैसे तालू है, ये सब थोड़ा कम कॉमन जगह है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो लिप्स में और गाल में, जीभ में, ये सब जगह आपको मुंह के कैंसर।
1: जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो दांत होते हैं कई बार दांत से चोट लगता है, तो या फिर कई बार दांत किसी कारणवश किसी लोगों को बाहर भी आ जाते हैं, और अक्सर जो होठ में, तो उसको हम लोग शेपिंग करा लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर, तो क्या ये उचित है या फिर उसको नेचुरली छोड़ देना?
2: नहीं, वो तो आपके प्राथमिकता पे होती है,
1: जी
2: क्योंकि
1: जी,
2: वो अगर बाहर है तो वो तो अलग कारण हो गया, वो तो देखने
1: तो
2: के कारण हो गया,
1: जैसे कि टेम्पर्ड हो जाता है थोड़ा सा
2: जी,
1: वो
2: लेकिन
1: फिर...
2: कैंसर कारक वो होंगे जैसे कोई नुकीला दांत हो
1: जी जी,
2: जो जीभ में या गाल में या होठ में बार बार बार बार जो घाव करता हो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक, तो कैंसर के कारण वो हो सकते हैं।
1: एक उम्र आयु वर्ग की अगर लोगों की बात करें मुंह कैंसर होने की, जैसे भारत में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मुंह के कैंसर के जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, कारण तो आपने बताया, क्या उम्र सीमा जिसमें ये ज्यादातर देखने को मिल रहा
2: जी,
1: है?
2: जी, ज्यादातर हम लोग को केसेस दिखते हैं मुंह के कैंसर वो 30 साल से ऊपर के ही लोग में है, 30, 40, 50 साल के एज में है। लेकिन अब बहुत कम एज से कई बच्चों में ये आदत होने लगी है।
1: जी जी,
2: बहुत हम लोग बहुत यंग एज के भी मुंह के कैंसर के पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, 20, 22, 24 साल के पेशेंट हैं जो कि कैंसर डेवलप हो चुका है, जो कि 10, 12 साल की उम्र से ही जो लोग शुरू कर देते हैं ये आदतें, तो उनमें फिर अब तो यंग एज में भी होने लगा है, पहले तो 40 के बाद ही होता
1: बाद ही देखने को मिलता
2: देखने
1: था।
2: को
1: तो
2: मिलता था।
1: एहतियात के तौर पर अगर हम बात करें कि मुंह के कैंसर से अपने को सुरक्षित रखें, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे
2: सबसे
1: लोगों
2: बड़ा
1: को?
2: सुझाव है कि किसी भी तरह के नशे की आदत से आप बिल्कुल दूर रहें। लेकिन सबको लगता है कि ये दूसरों को होगा, मुझे नहीं होगा, तो जानते सभी हैं, मानते
1: कोई नहीं,
2: कोई नहीं है,
1: जी
2: ठीक
1: जी
2: है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ये मानो कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। जो गुटखे या जो सिगरेट के पैकेट लोग खरीदते हैं उसी के ऊपर ही आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियां लगी रहती है,
1: बिल्कुल,
2: उसके बाद भी लोग उसे खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मानते नहीं है कि ये मुझे हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है कि लोग ये ना माने कि मुझे ना हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपके शारीरिक जेनेटिक स्थिति कैसी है, किन्हीं लोग को जल्दी हो जाता है, किन्हीं लोग को देर से होता है, या किन्हीं लोग के जिनकी इम्यूनिटी या जेनेटिक बहुत स्ट्रांग होती है उनमें सिर्फ कुछ लक्षण होके रह जाते हैं, उनमें डेवलप नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता
1: हो
2: है
1: नहीं
2: किसी में।
1: सकता मिला जुला

0: ये है कि मुंह के कैंसर पर हमें अवेयर रहना चाहिए, अपने जो मुंह स्वच्छ रखना चाहिए और जो भी इसके कारण है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया उस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और मुंह के कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं उस विषय पर हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। मुंह के कान कैंसर, इसका बचाव, इसके लक्षण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मधुरेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे धर्मेंद्र कुमार राठौर। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। सुबह 7:15 पर सुनेंगे बज्जिका लोक गीत, कलाकार होंगे इंदु बाला शर्मा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तबला वादन उस्ताद जाकिर हुसैन से।

सुबह 9:10 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। रसमंजरी कार्यक्रम में आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का सुबह 10 बजे। दोपहर 12 बजे का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कविता चौधरी और निशा कुमारी से कुछ भोजपुरी लोकगीत। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर।

सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल और शाम 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई जानकारी हासिल कर सकते हैं कृषि संबंधी।

0: रात्रि 7:52 पर और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनेंगे कुछ भजन। कलाकार होंगे अनूप जलोटा। रात्रि 10:00 प्रस्तुत करेंगे गूंजे बिहार। आज का कार्यक्रम आधारित होगा सोहर, झुमरी, कजरी लोक गीतों पर। और रात्रि 10:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा। पहले सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर हिंदी समाचार का प्रसारण होगा। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इण्डोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन

0: यात्रा त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इण्डोनेशिया वायुसेनायाः युद्धकविमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिक सहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीन सभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिक सम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक

रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में

0: के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, 7 जुलाई का दिन भारतीय और वैश्विक इतिहास में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। तो चलिए सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करें तो 1763 में मीर जाफर की अंग्रेजों ने दोबारा ताजपोशी की थी। आज ही के दिन लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने, सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर नियंत्रण स्थापित किया था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बना, आज ही के दिन 1799 में। वहीं 1896 में भारत में पहली मुंबई के वॉटसन होटल में फ्रांसीसी लूमियर ब्रदर्स द्वारा पहली बार भारत में सिनेमा का प्रदर्शन किया गया था। इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की शुरुआत माना जाता है। वहीं 1905 में आज ही के दिन पुणे में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने स्वदेशी आंदोलन के तहत पहली बार विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई थी। और 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम यानी दामोदर वैली

कॉरपोरेशन डीवीसी की स्थापना हुई, जो आजाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की अगर हम बात करें तो 1978 में सोलोमन द्वीप की आजादी हुई थी। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप समूह को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज ही के दिन बोरिस बेकर मात्र 17 वर्ष की आयु में जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतकर सबसे युवा चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया था आज ही के दिन 1985 में। और बात करें आज के दिन जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो 1656 में सिखों के 8वें गुरु, जिन्हें उनकी छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा के लिए याद किया जाता है, उनका जन्म हुआ था। 1883 7 जुलाई को हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक और कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। उनकी कहानी उसने कहा था मील का पत्थर मानी जाती है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर व विकेटकीपरों में से एक कैप्टन कूल एमएस धोनी का जन्म आज ही के दिन 1981 को रांची में हुआ था। और शुतो आपको बताएं, आज के दिन प्रमुख व्यक्तियों का निधन किन किन का हुआ था, तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1999 में 7 जुलाई के दिन कारगिल युद्ध के दौरान 7 जुलाई को ही पॉइंट 4875 को मुक्त कराते समय भारतीय सेना के जाबाज कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। उनका उद्घोष ये दिल मांगे बोर आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। और 1930 में आज के दिन सर आर्थर कॉनन डॉयल, जो दुनिया के सबसे मशहूर जासूसी किरदार शर्लक होम्स के रचयिता थे, उनका निधन हुआ था। तो श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में।

औषधों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के मुंशी ने की थी और इसका उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वर्षा चक्र को भी संतुलित रखते हैं। एक तरफ जहां मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तो वहीं वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज जब बढ़ता प्रदूषण और घटते वन हमारे सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं, तब वन महोत्सव का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो श्रोताओं, आइए इस वन महोत्सव पर हम सभी एक संकल्प लें कि केवल एक पौधा लगाकर ही नहीं बल्कि उसकी नियमित देखभाल करके उसे एक स्वस्थ वृक्ष बनाने तक सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और बेहतर भविष्य देगा।

श्रोताओं, याद रखिए, स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय योग और फिटनेस के लिए निकालें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न और ऊर्जावान, एनर्जेटिक बना रहेगा। तो इसी संदेश के साथ हालचाल का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। प्रस्तुत है बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं इंदुबाला शर्मा।

इंदुबाला शर्मा से भी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन से सुनेंगे तबला वादन। सारंगी पर इनका साथ दे रहे हैं सुल्तान खान। तो लीजिए सुनिए तीन ताल तबले पर उस्ताद जाकिर हुसैन से।

धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धनागत धन

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन से तबला वादन तीन ताल। सारंगी पर इनका साथ दे रहे थे सुल्तान खान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशिया

कई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापार

0: स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CST की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership which was established.

0: goal in the last seconds. On the other hand, Malik Tillman scored the lone goal for the US in the first half. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanging playing 11 for the third T20 international. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 international on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust Chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president especially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency charge sheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो

0: बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर पराबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मालियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदाज गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की 100 साल तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि ये वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज़्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद

0: अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्रुरी तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाब्तगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।

0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज़ इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमुई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब अंचलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। यह कर्मचारी आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: श्री शाह ने एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन

0: सन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण चौथे वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बारे में राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क या सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी पार्क या सड़क का चयन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए पार्क या सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गौरतलब है कि आज लोगों की समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति शिकायत या समस्या के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 या सहयोग पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उपचुनाव के लिए राजद ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं NDA की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान उनका निजी राय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह पार्टी या सरकार की राय नहीं है।
1: उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए।
0: प्रदेश में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी सह निविदा का माध्यम से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को देने का निर्णय लिया है। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार अब खनन पट्टों का आधार मूल्य पहले की तुलना में अधिक होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खनन पट्टे में उपलब्ध पत्थर की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इससे ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पर्यटन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकारी किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में रहने के मामले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है जो BNS की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(26) के अंतर्गत दर्ज करते हुए लगातार अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
0: आरोप है कि मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था जो बिहार ATS से जुड़े एक मामले में भी नामजद है। निगरानी जांच की टीम ने धनरुआ अंचल कार्यालय के लिपिक शैलेश कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिपिक परिमार्जन प्लस के तहत जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रिश्वत ले रहा था। भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में शराबबंदी कानून समाप्त होने की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि भ्रामक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भाषण की आवाज को AI से एडिट कर यह झूठा दावा किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम में पहली बार तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपत राय को राम राम, कृष्ण मोहन को कमान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे। प्रभात खबर लिखता है, BRO के फंड के गबन से जुड़े मामले में बिहार समेत 11 राज्यों में CBI का छापा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के मॉडल स्कूलों में शामिल की जाएंगी राजस्थान की विशिष्टताएं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मानहानि

केस में बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को किया तलब। आज अखबार की सुर्खी है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4थे वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया।

0: और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

गुलाम अली और उमेरा चिन्ना की आवाज़ में आपने इस गज़ल को समाप्त किया सामिन। और आज की तारीख 7 जुलाई, ये इसलिए ख़ास है कि आज हिंदी अदब के एक अजीम और हिमाजहद शख्सियत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की योम विलादत है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक बेहतरीन अफसाना निगार, नक्काद, मुहक्किक और मुअर्रिख थे। आपकी वजह शोहरत, आपका जो शहरे आफाक अफसाना, उसने कहा था है जिसने उर्दू और हिंदी फिक्शन पर गहरे नक़ूश छोड़े थे। विलादत इनकी जो हुई थी वो इनके आबाई जो है ताल्लुक़ इनके ख़ानदान का, वो हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के गुलेर गांव से था। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी को अपने नाम का हिस्सा बनाया था। वालिद इनके पंडित शिव कुमार शर्मा संस्कृत और हिंदी के मशहूर आलिम थे। आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, पाली और प्राकृत जैसी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। ये द्विवेदी युग के एक अहम तरीन स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुबे तारीख़ और धर्म के प्रोफेसर थे। आपने कदीम तारीख़, फ़लसफ़ा और आसार कदीमा पर बेहतरीन तहक़ीकी काम भी किया था। उसने कहा था ये जो अफसाना है उसका सबसे मकबूल अफसाना है क्योंकि ये हिंदी अदब की तारीख़ में एक ऐसी संगमील की हैसियत रखता है।

0: जिसमें कहानी पहले जंग अजीम के पस मंज़र में कुर्बानी, वफा और मोहब्बत के जज्बे पर मबनी है। ये अपने दौर के फ्लैशबैक तकनीक की बेहतरीन मिसाल भी है। दिगर अहम कहानियों में अगर हम देखें सामीन, तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन वगैरह काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। आपके तंज़ो मज़ा और फ़लसफियाना मज़ामीन भी बहुत मकबूल हुए, जैसे कछुआ धर्म। आपने बहुत कम लिखा, लेकिन जितना लिखा वो मेयार और तासीर में लाफानी था। 12 सितंबर 1922 को काशी में आपका इंतकाल हो गया। यकीनन हमने अपने पिछले ज़माने की तारीख़ को, जब भी उसके औराक को पलटा है, तो हमें मुख्तलिफ हिमा जहत शख्सियतों से वास्ता पड़ा है, जो अपने अंदर बहुत सारी खूबियों को समो करके रखे हुए थे, और उन्होंने अपनी उन काविशों के ज़रिए अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारी बेहतरीन और उम्दा मिसालें छोड़ी हैं। उनमें एक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी थे। आए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम आपको अपने अगले पेशकश की जानी मुतवज्जे करते हैं। ये भी एक गुफ्तगू है जिसमें उनवान है हसरत मोहानी, सियासी और अदबी खिदमात के हवाले से, और इसमें मोहम्मद आलम की डॉक्टर रिजवानुल्लाह से गुफ्तगू लीजिए। हम आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, मुलाहिजा फरमाएं।
1: हम जानते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, और मुजाहिद आज़ादी के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों के अंदर उनकी नुमाया खिदमात है। मौलाना की जो मुख्तलिफ और हमा जहत खूबियाँ हैं, हम अपने मेहमान गिरामी जनाब मोहम्मद रिजवानुल्लाह आरवी से जानना चाहेंगे कि हसरत मोहानी जो एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, सहाफ़ी थे, बुलंद पाया शायर थे, आप उनकी सबसे मुमताज़ खूबी क्या महसूस करते हैं?
2: देखिए, इसमें शक नहीं कि तहरीक आज़ादी में हसरत मोहानी का जो अहम और नुमाया किरदार रहा है और मुजाहिदाना किरदार रहा है, वो बिला शुबा उनकी शख्सियत की इम्तियाजी खसूसियत है और इम्तियाजी शान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सहाफ़त को या उनकी शायरी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि सच पूछिए तो उनकी शख्सियत की तामीर और तश्कील में उनकी सहाफ़त और शायरी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इसके बग़ैर उनकी शख्सियत, अगर इस पर बात न की जाए, तो उनकी शख्सियत अधूरी और तशना रहेगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि उनकी सहाफ़त और शायरी जो थी, के ज़रिए एक मखसूस क्लास तक पहुँचे, पढ़े लिखे लोगों तक पहुँचे, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम तक उनकी जो तहरीक आज़ादी में जद्दोजहद रही और अमली सियासत में जो उनकी सरगर्मी रही, उसने उनको गोया हिंदुस्तानी आवाम तक पहुँचाया। और उनकी तबीयत में शुरू से बगावत का अंसुर शामिल था, अंग्रेज़ मुखालिफत में वो पेश पेश रहते थे, और उनके दौरे तालिब इल्मी में से जब वो अलीगढ़ में दाखिला हुआ उनका, उसी वक्त से वो अमली सियासत में सरगर्म हो गए थे। चुनांचे उनको तलबा यूनियन का सेक्रेटरी भी बनाया गया सब।
1: हिंदुस्तान के बुलंद पाया जो है हमारे कायद थे महात्मा गांधी या नेहरू वगैरह,
2: जी
1: उन लोगों से इनके बहुत करीबी मराशिम थे,
2: यकीनन
1: और उसी पाया के ये भी जो है बुलाया गया
2: यकीनन
1: है।
2: यकीनन उनके करीबी मरासिम थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपनी बेबाकी और सदाकत के सिलसिले में कोई मसलहत पसंदी इनके यहाँ नहीं थी, और
1: बेबाक
2: इसीलिए
1: लीडर थे।
2: बेबाक लीडर थे, और इसीलिए महात्मा गांधी के जो अदम तशद्दुद का फलसफा था, वो उनसे इत्तफाक नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि नहीं, कुछ सख्ती अगर करनी पड़े आज़ादी हासिल करने के लिए, तो वो भी हमको अपनाना चाहिए,
1: आज़ादी के लिए जो भी कुर्बानी
2: जो भी
1: देनी
2: कुर्बानी
1: पड़ी,
2: देनी पड़े। और
1: हर
2: कुर्बानी
1: तरह की कुर्बानी देने
2: यकीनन
1: को तैयार
2: और
1: है।
2: कुर्बानी दी भी इन्होंने, सिर्फ मतलब ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जब इन्होंने उर्दू में अल्लाह जारी किया, तो इतने सख्त मजामीन लिखे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ के जेल भी जाना पड़ा, और वो पर्चा भी उनका बंद हो गया,
1: कई मरतबा जो
2: कई
1: है
2: मरतबा
1: से
2: जेल जाना पड़ा। तो ये सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने,
1: कई मरतबा वो पर्चा जारी हुआ, और फिर जो है से वो उनका वही तेवर रहा,
2: वही
1: जिसकी वजह
2: तेवर
1: से
2: रहा। बिल्कुल
1: तीन
2: बिल्कुल,
1: मरतबा वो पर्चा जो है
2: कई
1: से
2: मरतबा पर्चा बंद हुआ, कई मरतबा जेल गए, लेकिन का जो
1: उनका
2: अज़्म
1: जो
2: था,
1: मिशन
2: हाँ,
1: था,
2: जो
1: उनका जो
2: उनके
1: तेवर था, उनको
2: बिल्कुल
1: उन्होंने बाकी रखा।
2: अपाए इस्तेकामत में कहीं से कोई लग्जिश उनके
1: और इसी
2: नहीं
1: तरह
2: आई।
1: से ये भी कहा जाता है कि उनकी स्वदेशी तहरीक जो है,
2: हाँ हाँ
1: इसमें
2: बिल्कुल
1: उन्होंने स्वदेशी तहरीक में
2: बिल्कुल,
1: बहुत ही बढ़ चढ़ के
2: बहुत
1: नुमाया।
2: बहुत बहुत सारे हिस्सा लिया, और गैर मुल्की मसनूआत का बायकॉट किया, इतना ही नहीं बल्कि खुद स्वदेशी दुकान भी खोल ली, और इससे भी आगे बढ़ के पूरे शुमाली हिंद का दौरा करके सबको मायल किया उन्होंने कि आप लोग ऐसा काम कीजिए। तो ये सही है कि उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा उनकी सहाफ़त भी है, उनकी शायरी भी है, लेकिन हकीकत जो है, ये जो आपने कहा कि इम्तियाजी खसूसियत क्या है, तो इम्तियाजी खसूसियत तहरीक आज़ादी में उनकी जद्दोजहद है, उनकी

0: सियासत में सरगर्मी है और उनका मुजाहिदाना किरदार
1: अच्छा,
0: है।
1: ये भी कहा जाता है कि हमारे जो मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी थे तो पहले हुकूक के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए ये कोशा थे, सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा ये हसरत
0: बिल्कुल
1: मोहानी ही ने दिया कि
0: हजरत,
1: हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए,
0: ये
1: हमें सिर्फ हिस्सेदारी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी बिना पर ये एक तरफ थे और तमाम लीडरान दूसरी तरफ थे, अकेले
1: वाह,
0: मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया, हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी।
1: अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको बहुत
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: शद्दोमत के साथ
0: उस
1: मुकम्मल आज़ादी
0: दिया,
1: का नारा सबसे पहले
0: बिल्कुल
1: उन्होंने दिया।
0: दिया। और ये और बात है कि जो आपने कॉन्फ्रेंस का नाम लिया उसमें इनकी तजवीज़ मंजूर नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे और आखिर में हालात ऐसे हुए कथा खार के इनकी तजवीज़ पर लोगों का
1: आवाम के जहन में
0: इतमाद।
1: सबसे पहले
0: सबसे पहले सबसे
1: ये
0: पहले
1: पैगाम तो गया और उनका ये मुद्दा बड़ा आगे बढ़ा।
0: इनकी अव्वलियात बहुत सी हैं, सिर्फ मतलब स्वदेशी तहरीक की आपने जो कहा मुकामिल आज़ादी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी और सत्याग्रह का तस्वुर और इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये
1: हाँ, ये
0: सारी
1: सब आपने सही
0: ये
1: फरमाया, आजादी दिलाने में
0: बिल्कुल
1: इनकलाब जिंदाबाद का
0: बिल्कुल
1: बहुत ही
0: यकीनन
1: नुमाया रोल है।
0: यकीनन
1: तो इस सिलसिले में जब हम गौर करते हैं और पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि इसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी।
0: बिल्कुल बेशक
1: उनके परहेज को जो है से बंद कर
0: बंद
1: दिया
0: कर दिया
1: गया, उनके
0: गया, जी हाँ
1: मकान को जायदाद को
0: बिल्कुल
1: जब्त किया
0: जी
1: गया,
0: जी
1: उनको कई मरतबा जेल में जाना
0: बिल्कुल
1: पड़ा,
0: बिल्कुल
1: उनके अहलिया निशातुन्नेसा
0: निशात
1: थी,
0: उन्नेसा थी उनको,
1: उनके साथ ये बहुत ही
0: यहाँ
1: मसाइल
0: तक बिल्कुल
1: से
0: बिल्कुल
1: गुजरना
0: उनके
1: पड़ा।
0: कई रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया जेल में रहते हुए, लेकिन कभी उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई दरख्वास्त की कि हमको जाने दिया जाए। और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है जिसका जिक्र आपने शायद नहीं किया, जिसका दर्द वही महसूस कर सकते थे, वो किताबों के बहुत शौकीन थे और अपनी बेहतरीन लाइब्रेरी उन्होंने कायम की थी, वो सारी लाइब्रेरी को जब्त कर लिया गया, जिसका बहुत बड़ा सदमा हुआ
1: इल्मी
0: उनको,
1: सरमाया को भी
0: इल्मी
1: है,
0: सरमाया को बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया,
1: इल्मी
0: लेकिन
1: सरमाया के जाये में
0: बहुत
1: उन्होंने बहुत
0: शौक से
1: अफसोस
0: उन्होंने
1: किया।
0: जमा किया था और उसी सरमाया की बुनियाद पर कई शोरा का तस्करा उन्होंने तरतीब दिया था।
1: उनका ये भी एक कमाल है कि अदब की खिदमत भी हमेशा करते रहे,
0: हमेशा हमेशा
1: यहां तक कि जब जेल में भी गए तो
0: जी
1: जेल के अंदर भी उन्होंने जो है अपने मशे सुखन को जारी
0: जारी
1: रखा। उनका
0: रखा,
1: एक बहुत ही मशहूर शेर
0: हाँ
1: है,
0: हाँ है मशक
1: है
0: सुखन
1: मशने
0: जारी,
1: सुखन जारी,
0: शक्की की मशक्कत
1: चक्की की
0: भी
1: मशक्कत भी,
0: जी,
1: एक तुरफा तमाशा है हसरत
0: हजरत
1: की
0: की तबीयत
1: तबीयत
0: भी
1: भी, कि
0: जी,
1: वहां भी अपने जो है
0: बिल्कुल
1: शेर व अदब को
0: बिल्कुल
1: उन्होंने जारी रखा
0: जारी
1: और ये
0: रखा,
1: जेल की सलाखों के अंदर भी उनके
0: बिल्कुल
1: हौसले जो है
0: बिल्कुल
1: से पस्त नहीं
0: पस्त
1: हुए।
0: नहीं हुए
1: हर चंद दिले शैदा हुर्रियत कामिल का मंजूर दुआ लेकिन कैद मोहब्बत भी।
0: हाँ हाँ
1: तो जो उनकी शायरी है
0: जी।
1: तो शायरी के हवाले से है, उनके शायरी में क्या मकाम है?
0: उनकी शायरी की जहाँ तक बात, उनको एक शायर की हैसियत से वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और उसकी वजह यह है कि उनकी इब्तदाई शायरी जो हुस्न इश्क या इश्किया शायरी को लोगों ने समझ लिया कि उनका यही है, बहुत मशहूर शेर है उनका कि नहीं आती जो उनकी याद तो पहरों नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, इस तरह के। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी शायरी में सियासी उनसुर भी था, तसव्वुफ़ और मारिफत की आमेजिश भी थी, जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी। जैसे आप उनकी सियासी शायरी पर गौर करेंगे, आपने पढ़ा भी है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है अंग्रेज़ों की तरफ इशारा करके, उनको जुल्म सितम की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है कि नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम, जबर बज़ेर नकाब देखिए कब तक रहे। तो ये सब उनकी शायरी की सियासी जहत है, एक जहत उनकी आरिफाना शायरी की भी है जिसमें तसव्वुफ़ मारिफत की बात की गई है। जैसे एक शेर है उनका कि आसान हकीकी है नहाय सहल मजाजी, मालूम हुई राह मोहब्बत की दराजी, जिक्र फिक्र रियाज सोम सलात, सारे झगड़े हैं एक बराए खलूस।
1: उनके
0: जी
1: अरफाना शायरी में ये भी उनका बहुत मशहूर शेर है, याद करो वो दिन कि तेरा कोई सौदाई न था,
0: हाँ सदाई न था,
1: याद
0: हाँ
1: करो वो दिन कि तेरा कोई सौदाई न था, बावजूद हुस्न तू आगाह रहनाई न था।
0: राना ही ना। उनकी
1: मजे
0: शायरी में बहुत तनवु है, बहुत ही रंगीनियाँ हैं, बहुत गहराई भी है, लेकिन उस तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी।
1: बल्कि
0: लोग
1: हम तो ये देखते हैं कि
0: जी
1: उनकी शायरी जो है जरबुल मसल का भी
0: जी
1: मकाम
0: जी
1: हासिल कर लिया। खास तौर पे उनका ये शेर, खैरत का नाम जुनू
0: रख
1: पड़ गया
0: दिया
1: जुनू का
0: खैरत,
1: खैरत,
0: जो
1: जो
0: चाहे आप
1: चाहे
0: तरफ
1: आपका
0: उसने
1: हुस्ने करिश्मा
0: करिश्मा
1: साथ
0: साथ करे।
1: करे।
0: जी बिल्कुल
1: तो ये जरबुल मसल
0: मसल की तरह,
1: जबां
0: और
1: जद है और
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: आम
1: लुगा
0: लोग
1: मीम
0: अपनी
1: है।
0: किताबों में मजामीन में इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसे बहुत से शेर हैं उनके
1: तो
0: जी।
1: बुनियादी तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि वो गजल के शायर थे या नज्म के शायर थे, या उनकी शायरी का जो है से मखसूस रंग क्या है, क्लासिकी शायरी थी या जदीद शायरी?
0: देखिए वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नज़में हैं उनके यहाँ, और नज़मों में गज़ल का रंग नहीं है बल्कि वो सियासी रंग है, और नज़म की सिंफ का जो तकाजा है उसके मुताबिक वो है।
1: बाद लोगों ने उनको रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन भी
0: हाँ
1: कहा।
0: वो इसीलिए कहा है कि
1: हाँ,
0: उनके यहाँ गज़ल में तरन्नुम भी है, उनके यहाँ इमेजरी भी है, नशातिया लहजा है, ये सारी चीज़ें हैं उनके यहाँ, ऐसे बहुत से अशार मिलेंगे आपको। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि गज़ल के शायर होते हुए आप उनके ज़माने की या उससे कुछ पहले की शायरी को देखेंगे तो उसमें जो है आपको कुछ आमियाना लबो लहजा मिलेगा या कुछ सूकियाना बात मिलेगी, लेकिन इन्होंने गज़ल की तत्हीर की एक तरह से, اور اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا. جیسے ایک ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ دیکھنا ہے تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا.

0: गजल में इनके है कि कभी हुस्न को रुसवा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही नाजुक अंदाज में व लतीफ अंदाज में पेश करते
1: हुस्न
0: हैं।
1: को बेपरवाह वो नहीं करते
0: जी हाँ
1: हैं।
0: जी हाँ जी,
1: और उनका हुस्न तगज़ुल ये भी है, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां,
0: बेताबियां। हाँ
1: बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, हम ये समझे थे अब दिल को शिकवा कर
0: शकेबा
1: दिया।
0: कर दिया। जी हाँ
1: जी,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: ये जो है
0: सही,
1: हुस्न तगज़ुल
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: उनके शायरी में, और ये भी उनकी शायरी का कमाल है कि आज के इस नए दौर में
0: जी
1: और जब जदीद गजल का दौर आया है तो उनकी कुछ गजलें फिल्मों के जरिया
0: हाँ
1: से
0: हाँ हाँ
1: इतनी
0: हाँ
1: मशहूर हुई,
0: मशहूर हुई।
1: खासतौर पे फिल्म निकाह
0: हाँ
1: का वो,
0: अनिका का, जी
1: कि
0: हाँ,
1: वो गजल के
0: चुपके
1: चुपके
0: चुपके रात
1: चुपके रात
0: देना,
1: दिन वो
0: आंसू
1: आंसू
0: बहाना याद।
1: बहाना
0: जी
1: याद
0: हाँ
1: है।
0: जी,
1: नई नस्लों में भी
0: हाँ हाँ
1: उनकी
0: उनकी,
1: शायरी ने, उनकी गजल ने, समझ
0: हाँ
1: जाए कि हम आज
0: फिर
1: के
0: हाँ
1: जमाने में
0: हाँ
1: कहें कि धूम
0: धूम
1: मचाया,
0: मचा दी। सही है
1: और हर शख्स तक ये उनकी शायरी,
0: बिल्कुल
1: उनकी गजल
0: बिल्कुल
1: पहुंची
0: बिल्कुल। वो
1: है।
0: क्लासिकी रंग के शायर भी थे और असातिज़ा से मुतासिर थे, और चूंकि अरबी फारसी के आलिम भी थे इसलिए उनके यहाँ वो फारसी वगैरह की आमेज़िश भी मिलती है, यहाँ
1: वतन
0: पर
1: की
0: माशाल्लाह।
1: मोहब्बत में इस
0: बिल्कुल
1: एकदम
0: बिल्कुल
1: सरशार थे। हम चाहेंगे कि आप उनकी जो हुब्बुल वतनी और कौमी शायरी है उस सिलसिले में भी अगर आप हमारी
0: नहीं
1: कुछ।
0: देखिए, हुब्बुल वतनी और कौमी शायरी की बेहतरीन मिसाल आपको हम बताएं कि न सरमायादारों की निखवत रहेगी, न हुक्काम का जोर बेजा रहेगा, ज़माना वो जल्द आने वाला है जिसमें किसी का न मेहनत पे दावा रहेगा। देखिए, वो मज़दूरों काश्तकारों के लिए भी उतने ही जोश और जज्बे के साथ बात करते थे, इसलिए उनकी शायरी में वो सियासत का अनसर बहुत गहरा भी है और बहुत पुरजोश भी है।
1: हुब्बे वतन पे उनका ये शेर भी बहुत मशहूर है, अच्छा है अहले जौर किए जाएं सख्तियां,
0: सख्तियाँ, हाँ हाँ ये भी है
1: अच्छा
0: जी,
1: है अहले जौर किए
0: किए
1: जाएं
0: जाएँ सख्तियाँ
1: सख्तियां,
0: जी,
1: फैलेगी यूं शोरिशे हुब्बे वतन
0: हुब्बे वतन
1: तमाम।
0: तमाम। जी हाँ ये
1: हुब्बे
0: भी है
1: वतन तमाम
0: तमाम।
1: जो
0: जी
1: है
0: हाँ
1: कहा कि
0: बिल्कुल
1: जितनी चाहे सख्ती कर
0: कर ले।
1: ले,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन हमारे वतन की मोहब्बत और
0: जी,
1: कामिल होगी, मुकम्मल
0: और
1: होगी,
0: मुकम्मल
1: कम नहीं
0: होगी,
1: हो
0: कम
1: सकती।
0: नहीं हो सकती, बिल्कुल।
1: जी,
0: सबसे बड़ी वो इम्तियाजी निशान था उनकी
1: और
0: शख्सियत का ये।
1: हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी
0: हाँ
1: यकजहती के भी बड़े आलम
0: ये बहुत बड़ी बात आपने कही, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। उस इत्तेहाद के बगैर तो हिंदुस्तान की आज़ादी का तसव्वुर भी
1: तसव्वुर।
0: नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, तमाम पार्टियों को साथ लेके चले, और इसीलिए तमाम पार्टियों के लोग भी इनको साथ लेके चलते थे। एक और बहुत अहम खिदमत, कोई भी समाजी या सियासी या इस्लाही तहरीक थी उस ज़माने में, चाहे खिलाफत तहरीक हो या खिलाफत अहरार हो, सब में इन्होंने बहुत ही सरगर्मी से हिस्सा लिया, और सबके प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक ही नस्बुल ऐन को बयान किया कि बस हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इन मुल्की खिदमत है जिसका एतराफ़ करना चाहिए।
1: तो इस तौर पर भी उन्होंने मुल्की खिदमात अंजाम दी है। सबसे जो अहम खिदमात उनकी है वो शायराना खसूसियात है,
0: जी
1: गजल की कदीम और जदीद दोनों के
0: दोनों
1: दरमियान उन्होंने एक
0: दोनों
1: मजबूत
0: दोनों
1: कड़ी
0: का
1: पैदा की
0: कड़ी
1: है
0: पैदा की,
1: और
0: दोनों
1: दोनों का एक हसीन इम्तिजाज उन्होंने पेश
0: इम्तिदाद
1: किया
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यही वजह है कि जहाँ गालिब की शोखी नजर आती है, मोमिन खान की रैनाई नजर आती है, उसी तरीके से आम शोरा के भी फनी कमालात उनके जो है
0: शायरी में नज़र आते हैं। अब देखिए
1: शायर
0: ना,
1: हैं।
0: जैसे एक मशहूर उनका एक रंग है हुस्न इश्क की तर्जुमानी वाला, रुमानी शायरी का, उसमें कहते हैं, दिल में क्या क्या हवस दीद बढ़ाई न गई, रू बरू उनके मगर आँख उठाई न
1: आंख
0: गई।
1: उठाई नहीं गई। और
0: इस
1: इसी
0: सादगी
1: तरह उनकी शायरी में सादगी भी बहुत थी, बात
0: बहुत
1: शायर
0: है, सादगी बहुत है जी।
1: उनका एक शेर है कि वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ,
0: हाँ हाँ हाँ
1: वफा
0: तुझसे
1: तुझसे
0: ऐ बेवफा
1: ऐ
0: चाहे
1: बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख
0: क्या
1: मैं
0: चाहता
1: क्या
0: हूँ,
1: चाहता
0: क्या
1: हूँ।
0: चाहता
1: तो
0: हूँ
1: कहीं कहीं पे इतनी
0: जी,
1: सादगी से वो अपनी चीज
0: बिल्कुल
1: को पेश करते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल
1: कि हैरत होती है।
0: जी,
1: और इसी तरीके से सादगी का उनका एक शेर और मुलाहिजा हो कि शेर दरअसल है वही हसरत,
0: शेर दरअसल है वही
1: वही
0: हसरत।
1: हसरत
0: हाँ
1: सुनते ही दिल में जो उतर
0: जो जो
1: जाए।
0: उतर जाए, क्या
1: तो
0: कहना
1: ये
0: है,
1: कितनी
0: बिल्कुल
1: सादगी से
0: बिल्कुल
1: उन्होंने शायरी को
0: बिल्कुल।
1: पेश किया है कि शायरी जो मकसूद तक और जो जिंदगी का जो असल मकसद है
0: मकसद है जी,
1: वहां
0: हाँ
1: तक पहुंचाने में
0: सही
1: शायरी कितनी
0: सही
1: मददगार होती है।
0: सही,
1: तो
0: पूरी पूरी शायरी उनकी सादगी की मिसाल है,
1: सादगी की
0: सादगी
1: मिसाल
0: चाहे
1: है।
0: वो किसी मौजू पर कहा हो, लेकिन सादगी सब में नुमाया है इनकी
1: और जहां पे हुस्न का सरापा पेश किया है, इश्क को पेश किया है, तो
0: जी।
1: वहां पे भी महबूब को बहुत ही हसीन पैराए में पैकर
0: सही
1: तशी
0: हाँ
1: की है।
0: हाँ
1: महबूब पे उनका एक बहुत मशहूर शेर है, लाया है दिल पे कितनी खराबी, ऐ यार तेरा हुस्न
0: तेरा हुस्ने
1: शराबी।
0: शराबी,
1: और भी इसी तरह से फिरती है अब तक दिल की नजर में, कैफियत उसकी वो नीम
0: वो
1: ख्वाबी।
0: नीम ख्वाबी,
1: तो
0: सही
1: ये जो
0: सही
1: है अपने महबूब का जो
0: बिल्कुल
1: सराहा जो है
0: सही
1: बहुत ही सादगी
0: सही
1: के साथ उन्होंने पेश
0: बिल्कुल।
1: किया।
0: एक बात जो हमने कहा शुरू में आपसे कि उनकी शायरी के अहम खसूसियत में, वो तो खैर हुस्न इश्क की तर्जुमानी अपनी जगह पर है, लेकिन तसव्वुफ का रंग भी है। जैसे एक मशहूर शेर है कि गुनाह अपना नहीं साबित, खता के फिर भी कायल हैं, अदब का है यही शेवा, यही शान तसव्वुफ है।
1: वाह,
0: तो ये जो उनके यहाँ एक तसव्वुफ का रंग भी है, कौमी शायरी भी उनके यहाँ है कि जफा हाय कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। ये अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की तरफ गोया इशारा है। अपनी शायरी के ज़रिए आवाम को तहरीक भी दी है कि आप बेदार हों और अपने हकूक़ के लिए और अपने मकसद के लिए उठ खड़े हों। तो ये सारी चीज़ें, सारी पहलू उनके शायरी में नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं, बहुत
1: आरिफाना
0: बनाई
1: शायरी में
0: मिजाज।
1: उनका ये शेर भी बहुत मशहूर है, इश्क रोज अर्जू पे अपने मुझको हैरानी नहीं, जलवा रंगी ये तुझको नाज यकता ही न
0: हाँ
1: था,
0: नाज लगता ही नहीं जी,
1: नाज
0: हाँ
1: यकता ही नहीं था।
0: ये क्या
1: ये भी
0: कहना है,
1: उनका
0: बिल्कुल हाँ
1: आरिफाना कलाम
0: क्या
1: है।
0: कहना
1: और
0: है।
1: इनकी ये गजल भी

0: बहुत मशहूर है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन
1: अंजुमन तमाम। हाँ,
0: रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन
1: चमन तमाम।
0: का एक खास पहलू हमें ये भी नजर आता है कि वो सहाफत को भी हमेशा अपना हिज़्ज़े जा बनाए रखे रहे और उर्दू मुअल्ला के जरिया एक दो साल नहीं तकरीबन 40 साल तक नौजवानों में और मुल्क के बाशिंदों के दरमियान सियासी बेदारी और इनकलाबी रूह फूकते रहे और उसके जरिया उन्होंने बहुत ही नुमाया खिदमात अंजाम दी है। इतने अरसे तक किसी भी मैगजीन
1: बार बार उसका बंद
0: को
1: होना,
0: जारी रखना,
1: बार बार जारी करना, ये बड़ी बात।
0: तो आप उनके सहाफती किरदार से आप
1: देखिए, उनके बुनियादी तौर पर उर्दू मुअल्ला का इजरा उन्होंने किया था वो अदबी मकसद पूरा करने के लिए, चूंकि उनको शोरा का तस्करा तरतीब देना था, लेकिन उस जमाने के हालात ऐसे थे कि वो सियासत से अलग रह ही नहीं सकते थे। चुनांचे शुरू ही से उसमें मजामीन शाये होने लगे, इनके अपने भी और इनके जो हम ख्याल लोग थे उनके भी मजामीन को इन्होंने शाये किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, उस जमाने में जितने भी जो रहनुमायान कौम थे, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जहन साजी भी करना था और हिंदुस्तानी अवाम को मुतहद भी करना था अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें कोई शक नहीं कि उन मजामीन से जहन साजी हुई और उस जमाने में और भी सहाफ़ी थे, लेकिन इनकी सहाफत जो है सबसे मुमताज थी, इस वजह से कि इनको बिल्कुल इब्तदाई दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद करने में, लोगों के सियासी शऊर को बेदार करने में उर्दू मुअल्ला का जो अहम कारनामा है उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता।
0: बल्कि उर्दू मुअल्ला में ये देखते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी के तजर्बात और मुशाहदात को जो जेलों के अंदर है मुशाहदात जिंदा के नाम से,
1: मुशाहदात जिंदा के नाम से तो एक किताबी तरतीब थी बाद में, लेकिन किस्तों में छपा था पहले,
0: जो एक तारीखी दस्तावेज है,
1: क्या कहना है, वो जेल की पूरी दस्तावेज है वो, जो किस्तों में छपा था उर्दू मुअल्ला में, बाद में मुशाहदात जिंदा के नाम से वो जो है किताबी शक्ल में वो शाये हुआ।
0: और फिर इसी मुजल्ला के जरिए हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने उस जमाने के जो अजीमुल मर्तबा शोराए किराम थे उनकी शायरी को भी पेश किया, यहाँ तक कि गालिब के जो दीवान है उनके अशार की तशरीह भी उन्होंने सिलसिलेवार उन्होंने दीवान गालिब के अशार की उन्होंने तशरीह पेश किया।
1: इसी वजह से ना एक मशहूर नाकिद ने लिखा है उनके इसी पहलू पर बात करते हुए कि लोगों ने उनको वहाँ शायर समझ लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनसे बड़ा तनकीद निगार, उससे बड़ा तस्करा निगार उर्दू दुनिया में कम पैदा हुआ है, और भी बिल्कुल इब्तदाई जमाने में जब उन्होंने मील का पत्थर गोया रखा, बाद में लोगों ने फिर उस पर इमारत तामीर की, लेकिन हकीकत यह है कि उस जमाने में जब इतनी सहूलत भी नहीं थी, खुद से सारा काम करना था, किताबें इकट्ठा करना था, तो 11 जिल्दों में शोरा का तस्करा तरतीब देना, शोरा के अशार की तशरीह करना, ये आसान बात नहीं था जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया उर्दू मुअल्ला के जरिए।
0: और ये भी हम देखते हैं कि उन्होंने रिसाला के निकालने में या किताबों के शाये करने में अपना सरमाया लगाया,
1: बिल्कुल किसी तरह का तावुन कहीं से न इल्मी तावुन न माली तावुन,
0: जी
1: जो कुछ किया खुद अपने तौर पर इन्होंने किया।
0: और ये भी तो बड़ा अदबी कारनामा है कि जदीद शोरा के कलाम को उन्होंने 7 जिल्दों में शाये किया,
1: 7 जिल्दों में, जी हाँ। और हैरत है कि इतना अमली तौर पर इतना सरगर्म हो रहते हुए कैसे इतना वक्त निकाल लेना, तमाम चीजों को तरतीब देना।
0: हम चाहेंगे कि चलते चलते आप उनकी कोई मशहूर गजल हमारे सामने के लिए पेश करें।
1: जी, आपके हुक्म की तामील में उनके अपने मखसूस अंदाज की 2 गजलें पेश कर रहा हूँ। महबूब है महबूब की हर बात बजा है, अब मुझसे तगाफुल भी वो फरमाए तो क्या है, फिर शिकवे गम का मुझे क्यों शौक हुआ है, फिर हंस के वो कह देंगे यही तेरी सजा है,
0: वाह वाह वाह क्या,
1: हम खुश हैं बहरहाल जफा हो के वफा हो, वो यूं की मोहब्बत की सजा में भी मजा है,
0: वाह वाह,
1: सूंघी तुझे एक बार वो खुशबुए गरीबा, अब तक ये उसी बुए गरीबा का नशा है,
0: वाह वाह,
1: कहने को तो जाहिर में खफा हम भी हैं, लेकिन कुछ दिल का अजब हाल है जब से वो खफा है,
0: वाह वाह,
1: हम छीन के ले भी गए पान आपके मुंह का,
0: वाह,
1: कहते ही रहे आप के देंगे न दिया है, शर्मा के वो बोले भी तो क्या हमसे न बोले, क्या खूब तेरी छेड़ का हसरत ये सिला है,
0: वाह।
1: और इसी रंग की एक दूसरी गजल मुलाहिज़ा फरमाए, सोते में जो देखा था रुखे यार का आलम,
0: वाह,
1: आंखों में ये खुनकी है उसी नूरे सहर की, है शौक भी दीवाना तेरे नक्श कदम का, मायल भी अकीदत है तेरे सजदे दर की, लगजिश सी है जो उसके कदम में दमे रफ्तार, ये नाजुकी मस्ती ये नजाकत सी कमर की, आ जाती है नागाह जुदाई की मुसीबत, होती है खबर किसको तेरे अज़्म सफर की, या हुस्न है या इश्क है एक नक्श यहाँ का, क्या बात है ऐ शौक तेरे राह गुजर की, कुछ फ़ायदा हसरत न हुआ जब्त हवस का, पोशीदा मोहब्बत न रही शीन बसर की,
0: वाह। बहुत ही आपने उम्दा गजल उनकी जो पेश की, उनकी ये गजल और बहुत ही मशहूर है, चाहेंगे कि पेश करें।
1: जी जरूर, इरशाद।
0: रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम,
1: क्या कहना,
0: हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इज्तराब, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इज्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए है चलन
1: चलन तमाम,
0: अल्लाह रे जिसम यार की खूबी के खुद ब खुद, अल्लाह रे जिसम यार की खूबी के खुद ब खुद, رنگ

0: गीनियों में डूब गया पैरहन
1: पैरहन
0: तमाम,
1: तमाम।
0: और इसी तरह से है नाज हुस्न से जो फरोजा जबीन यार, है नाज
1: नाज़े
0: हुस्न
1: हुस्न
0: से
1: से
0: जो
1: फरोजा
0: फरोजा जबीन
1: जबीन यार,
0: यार, लबरेज आब नूर है चाहे जखन तमाम,
1: क्या कहें
0: इस
1: भाई।
0: नाजनीन ने जब से किया है वो कयाम, गुलजार बन गई है जमीने दकन तमाम। अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरी से
1: हुब्बे
0: हुब्बे
1: वतन
0: वतन
1: तमाम,
0: तमाम।
1: क्या कहें।
0: इसी शेर पे हम आज के इस गुफ्तगू को यहीं अख्ताम पजीर करना चाहते हैं। आज के हमारे इस गुफ्तगू में जो मेहमान मधु थे जनाब रिजवानुल्ला आरवी, और उनसे मुखातिब थे ये खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। शुक्रिया।

सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब का ये कलाम आपने अभी समाप्त किया, और इसी के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे और इरादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम रसमंजरी। श्रोताओं, रसमंजरी कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए पहला गाना धुरंधर द रिवेंज फिल्म से। खान साहब और शाश्वत सचदेवा की आवाज है। गाने के बोल हैं नुसरत फतेह अली खान के और म्यूजिक कंपोजर हैं शाश्वत सचदेवा और नुसरत फतेह अली खान।

अरिजीत सिंह, मणि महादेवन, रवि मिश्रा और अरशद मोहम्मद की आवाज़ में लीजिए सुनिए राजे फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं रसमंजरी कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है ड्रीम गर्ल फिल्म से, मीत ब्रोश

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

थ्री इडियट्स फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम स्वानंद किरकिरे और शान की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इस गाने को लिखा है और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: सिम्बा फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज़ में, रश्मि विराग के बोल और संगीत था तनिष्क बागशी का। इसके साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, इनसे मिलिए। प्रस्तुत है त्रिपुरारी शरण, बिहार स्टेट सीआईसी से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए में स्वागत है। आज का एपिसोड यह बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो न सिर्फ एक श्रेष्ठ प्रशासक रहे बल्कि रचनात्मक साहित्यकार, फिल्मकार, विचारक और संवेदनशील समाज विश्लेषक भी आप कह सकते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया से आपने शिक्षा की शुरुआत की, उसके बाद आपने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट स्टीफेंस वहां से आपने शिक्षा ली, उसके बाद जेएनयू में गए और वर्तमान में जो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो त्रिपुरारी शरण सर, आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: सर, हम आपके पूरे व्यक्तित्व है, चूंकि आपका व्यक्तित्व इतना भरा पूरा है कि किन्हीं भी पहलुओं को छुए बिल्कुल तरह से संपूर्ण सा होता है, तो शुरुआत, चूंकि ये कार्यक्रम आपके एक प्रेरणा के लिए भी जो विषय होता है उनसे जुड़े हैं, तो शुरुआत से हम लोग करना चाहेंगे बातचीत की। जैसे आप मुजफ्फरपुर छोटे से गाँव से निकल कर और दिल्ली महानगर में सेंट स्टीफेंस तक आपने पढ़ाई की, तो सैनिक स्कूल से होते हुए वहां तक के सफर के बारे में हम संक्षेप में जानना चाहेंगे।
2: लंबा सफर है। ऐसा है कि शुरुआत की पढ़ाई मैंने घर पे ही की।
1: जी जी,
2: जिसको प्राथमिक विद्यालय वगैरह कहते हैं, तो मैं प्राथमिक विद्यालय वगैरह कभी शुरू में गया नहीं, क्योंकि मेरे पिता का ये विश्वास था कि किसी भी बच्चे को शुरुआत के 10 वर्षों तक उसके माता पिता के द्वारा ही पढ़ाया जाना सबसे उत्तम शिक्षा होती है।
1: बिल्कुल।
2: मेरे पिता मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देते थे, तो उनका ये मानना था कि शुरुआती शिक्षा अगर घर में माता पिता शिक्षित हों और उनमें ये काबिलियत हो कि वे अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकें, तो उन्हें घर पे ही पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी इसी सोच के अंतर्गत मुझे घर पे ही रखा गया। मैं हमारे यहाँ भी एक मास्टर साहब रहते थे जिन्होंने हमें शुरुआती वर्षों में पढ़ाया, और उनसे जो कुछ बचता था वो मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी। मेरी भाषा की शिक्षा,
1: जी जी,
2: खासकर हिंदी भाषा की शिक्षा, शुरुआती शिक्षा मेरी माँ ने मुझे दी, और बाकी जो कुछ बचा था वो पिताजी पढ़ाते थे। तो ये दौर उस तरीके से शुरू हुआ। फिर उसके बाद सैनिक स्कूल तिलैया गए, तो वहाँ मैं तो समझता हूँ कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था मेरे जीवन का, और सैनिक स्कूल तिलैया अपने समय में तो बहुत ही नामी गिरामी स्कूल था, तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिली।
1: आपने जैसा कि कहा कि माँ ने आपको भाषा की शिक्षा दी और पिताजी द्वारा आपने प्रोफेशनल एक तरह से शिक्षा दीक्षा की बात, तो जब वहां से बचपन से आप जब ये दोनों शिक्षा ली, जिस प्रकार से आपकी रुचि दिख रही है, आप साहित्य में भी है, भाषा साहित्य हिंदी इसमें भी लिख रहे हैं, और इधर प्रशासनिक सेवा में भी गए, तो रुचि वहां पर आपको कन्फ्लिक्ट हुआ या फिर आपने वहां से कहां से डिटरमिन हुआ कि पहले प्रशासनिक सेवा में जाना है?
2: अगर सही तरीके से इसके बारे में सोचें और इस पर गौर करें, तो जो रुचि का प्रस्फुटन है वो तो अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया होती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: लेकिन ये जरूर है कि उसमें आपके स्कूल के शिक्षक, आपके अपने परिवार के सदस्य,

0: इन सब का योगदान होता है। तो जैसे मैं ये एक बात जानता हूं कि मेरे शिक्षक थे अंग्रेजी के मिस्टर चौधरी, आज वो है नहीं, मैं नमन करता हूं उनकी स्मृतियों को। इतने अच्छे शिक्षक थे कि बात बात में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते थे हमें, और न सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर बल्कि भाषा के बारे में भी वो सारी बातें बताते थे। तो उनके द्वारा बताई गई चीजें जो हैं वो शुरुआती प्रेरणा में जरूर शामिल करूंगा मैं। और उसके बाद मैं अगर जिस किसी व्यक्ति को स्मरण करता हूं अपनी प्रेरणाओं के स्रोत के रूप में, तो उसमें मैं मेरे दिवंगत बड़े भाई थे, वो फौज में अफसर थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और उनको अंग्रेजी साहित्य में बहुत रुचि थी। फौज में अफसर होने के बावजूद भी मुझे अभी भी स्मरण आता है कि अपने समय में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, और जब भी कभी कोई साहित्य की, अंग्रेजी साहित्य की अच्छी किताब पढ़ते थे तो उसका जिक्र मुझसे जरूर करते थे, और संभव होता था तो वो किताब मुझे देते भी थे।
1: जैसे आपकी संवेदनशीलता संगीत साहित्य में बचपन से देखने को मिला था, उसके बाद आप कॉलेज में गए, आपने स्टीफेंस में भी पढ़ा, जेएनयू में भी पढ़ा, वहाँ का एक परिवेश की अगर हम बात करें, आप हायर शिक्षा के लिए गए, तो उस समय काल को आप किस रूप में देखते हैं जब आप वहाँ थे?
0: सेंट स्टीफेंस कॉलेज का जो परिवेश था, वहाँ का जो माहौल था, वो एक अलग किस्म का माहौल था। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज अभी भी आज की तारीख में भी देश के अग्रगणी कॉलेजों में गिना जाता है। ये जरूर है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज का माहौल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, थोड़ा सा एलिटिस्ट तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय था कि पूरे देश भर के विद्यार्थी वहाँ पे आते थे
1: जी।
0: वो एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस जिसको कहेंगे किसी भी छात्र के लिए होता है, कि आपको एक, यू आर लिविंग इन अ मिनी इंडिया, है ना, हर राज्य से हर प्रांत से लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो अगर आप रुचि, आपका रुझान ऐसी ऐसी चीज़ों पर है, तो आप देखेंगे कि एक गागर में सागर वहाँ पे मिलता है आपको, है ना, सांस्कृतिक रूप से। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इन सब में जो एक अंडरलाइनिंग, एक डिफाइंग एलिमेंट था, वो था कि थोड़ा सा एलिटिज्म जरूर था उसमें, और ये बात जाकर के पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गई जब मैं जेएनयू गया। तो और जेएनयू गया तो वहाँ का माहौल एकदम दूसरा था। वहाँ भी पूरे राज्य से, पूरे देश से छात्र थे, कुछ राज्यों से थोड़ा ज़्यादा थे, कुछ राज्यों से बहुत कम थे, लेकिन थे सभी राज्यों से। लेकिन उन सबका जो सामाजिक आर्थिक उनकी जो पृष्ठभूमि थी
1: जी,
0: वो सेंट स्टीफन से काफी
1: कम था, बहुत
0: बहुत बहुत अंतर था सेंट स्टीफन की पृष्ठभूमि से। लेकिन फिर भी ये जरूर था कि जेएनयू में एक दूसरे किस्म का अनुभव मिला, और जेएनयू में वैचारिक स्तर पे बहुत ही समृद्ध अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला।
1: रुचि तो आपके साहित्य में शुरुआत से ही देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने छात्र जीवन में, जब आप जेएनयू में गए तो वहाँ एक पत्रिका, दिनमान पत्रिका ऐसा है, उसमें आपने लिखना शुरू किया, तो वहाँ वो कैसे शुरुआत किया?
0: रुचि थी अब उसको एकदम ठीक ठीक तरीके से उकेर पाना
1: जी
0: कि कैसे और क्यों, शायद उसके लिए थोड़ा सा और चिंतन करके आपको बताना होगा
1: जी।
0: लेकिन जितना मुझे याद है कि मुझे शौक तो था लिखने का
1: जी।
0: जो भी थोड़ा बहुत क्रिएटिव एलिमेंट होता है किसी व्यक्ति में, तो वो उसकी अभिव्यक्ति चाहता है,
1: बिल्कुल,
0: वो अपने अपनी सोच को, अपनी सृजनात्मक चिंतन को वो कागज पर देखना चाहता है,
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे ख्याल से पहला उभार तो इसी के अंतर्गत आया होगा जब मैंने सोचा लिखने को। और मुझे याद है कन्हैया लाल नंदन आए हुए थे हमारे यहाँ, किसी परिचर्चा में आए हुए थे, तो उस परिचर्चा के बाद उनसे लंबी बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको इतनी रुचि है तो तुम लिखते क्यों नहीं हो। तो मुझे याद है कि उस समय में कादम्बिनी के वो संपादक हुआ करते थे
1: जी।
0: तो मेरी पहली कविता कन्हैया लाल नंदन जी ने ही कादम्बिनी में सन 1980 में निकाली थी। तो इस तरीके से फिर दिनमान में, बाद में जब फिल्मों पर लिखने लगा मैं, तो चूंकि दिनमान में फिल्मों पर अलग से काफी लिखा जाता था, और विनोद भारद्वाज जी उस समय देखते थे दिनमान में ये जो कल्चर वाला कॉलम होता था, तो उनसे अच्छा संबंध था मेरा, तो ऐसे करके ये एक प्रक्रिया थी उसमें।
1: दिनमान में जैसा कि आपने बताया कि फिल्मों के बारे में समीक्षा भी होती थी, लिखी जाती थी, तो कहीं फिल्मों की तरफ रुझान भी आपका यहीं से शुरू हुआ?
0: देखिए फिल्मों की तरफ रुझान जो है वो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बता सकता हूं मैं,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: इतना जरूर था कि

0: जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस जमाने में तो ये फिल्में आती थीं विदेश से, जो अंग्रेजी की फिल्में, तो दो तीन हॉल थे दिल्ली में जहां दिखाई जाती थीं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते थे
1: जी,
0: उसकी जो प्रसिद्ध फिल्में थीं वो उनको देख पाने का जरिया बहुत सीमित था। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेल्यूलॉयड क्लब हुआ करता था। वो सेल्यूलॉयड क्लब क्या करता था कि जब ये फिल्म फेस्टिवल खत्म हो जाता था तो उसके बाद जिस देश की फिल्म है उस देश के दूतावास पे जाकर उनसे पूछता था कि उसकी प्रति उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलती थी तो वो मुफ्त में मिलती थी और उसका वो उसकी स्क्रीनिंग करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेल्यूलॉयड क्लब में। तो वो जो विश्व सिनेमा था, विश्व सिनेमा को देखने का मौका मुझे उसी माध्यम से मिला। अंग्रेजी की फिल्में तो हम जब सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तब भी
1: वहां से
0: देखते थे,
1: देखते।
0: लेकिन वो पॉपुलर सिनेमा था जो
1: जी,
0: विश्व सिनेमा, जो जिसको कहते हैं आर्ट हाउस सिनेमा या अंग्रेजी भाषा के से अलग जो सिनेमा, जो जो अनुवादित सिनेमा हुआ करता था, वो देखने का मौका सबसे पहले तो उस जमाने में सेलुलॉयड क्लब के माध्यम से ही मिला था।
1: आपने कॉलेज लाइफ में भी आपने लिखना भी शुरू किया, फिल्मों में भी आपकी रुचि बढ़ी, लेकिन जिस सबसे ज़्यादा एक प्रभावी जो पहलू है आपका, आपके जीवन का, एक तरह से प्रशासनिक सेवा में आपने रहकर हर जिस क्षेत्र में गए, जिस पद को संभाला, आईएएस की तरफ, मतलब प्रशासनिक सेवा की तरफ आपका जो उड़ान है, या तो आपने सोचा ही होगा, डिटरमिन हुए होंगे, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़े समय के लिए होल्ड किया होगा।
0: इन सब चीज़ों के बारे में कारण कारक का संबंध बिठा पाना
1: बड़ा
0: बहुत
1: मुश्किल है।
0: मुश्किल होता है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा मैं कि हाँ, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उस जमाने के बिहार में, जिस जमाने में मैं बड़ा हुआ, वो शायद आज और ज़्यादा सत्य होगा, लेकिन उस जमाने के बिहार में किसी भी मध्यवर्गीय पिता कि ये इच्छा होती थी कि उसका बेटा
1: बेटा
0: बड़ा अधिकारी बने।
1: बिल्कुल
0: और बड़ा अधिकारी की परिभाषा में
1: आईएएस
0: आईएएस अधिकारी
1: ऑफिसर
0: तो है ही, इसको तो
1: पहले
0: आप
1: रहता
0: नकार नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
0: वही
1: तो
0: है जो माहौल होता है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है आदमी। हो
1: बिल्कुल
0: सकता है अगर मैंने बंबई शहर में जन्म लिया होता तो मैं कुछ
1: और कर
0: और
1: रहे होते,
0: क्षेत्र में करता रहता, लेकिन माहौल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
1: फिर भी आपकी जो इस पीरियड का है, आपके प्रशासनिक सेवा का, हमेशा स्वच्छ और पारदर्शी माना जाता है, एक निडर अधिकारी के रूप में भी इस तौर पे आपको देखा जाता है, तो एक तरह से आप मैनेज करने के लिए, अगर आपकी रुचि तो खैर साहित्य और उसमें है, उसको आप समय देना भी चाहते हैं, हालांकि इस क्षेत्र में जब आएंगे तो जनता का, प्रशासन का और कई तरह के तरह से प्रेशर होते हैं, मैनेज करना आपके लिए कितना, मतलब मुश्किल रहा या फिर बड़ा ही सरल रहा?
0: कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, आप एक नौजवान के अंदर तो अनंत ऊर्जा होती है,
1: बिल्कुल
0: उस ऊर्जा का आप सृजनात्मक तरीके से प्रयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते। मेरा ये अपना
1: जी,
0: व्यक्तिगत रूप से मानना है। बस उतना ही था कि उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसका इस्तेमाल करना। और जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप करें, सब कुछ करें, एंजॉय करें जितना भी करना, लेकिन एक बेसिक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होना बहुत
1: बस
0: जरूरी होता है। उस सेंस ऑफ डिसिप्लिन के बिना
1: कुछ नहीं।
0: आप अपनी, चाहे वो सृजनात्मक ऊर्जा हो चाहे जो भी ऊर्जा हो, उसका भली भांति उपयोग
1: नहीं
0: नहीं
1: कर
0: कर सकते।
1: सकते, मतलब किसी भी रूप में हो, युवा अधिकारी या फिर अन्य रूप में भी, तो एक मूल्य है, उस मूल्य पे चलना चाहिए, तभी आप अपने अन्य उपलब्धियों को भी पा सकते हैं। एक प्रमुख पद पे भी रहते हुए एक संक्षेप में हम अब जानना चाहेंगे कि जैसे आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे, इसके अलावा इस रिटायरमेंट के बाद अन्य पदों पर भी रहे, वर्तमान में आप सूचना आयुक्त हैं, तो एक मानक हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ऐसा मानक होना चाहिए जिसमें सफलता आपको बड़ी आसानी से या फिर परेशानी ना हो।
0: अब मानक के बारे में क्या कहेंगे, ये तो बहुत कुछ आपके आपकी क्षमता पर
1: निर्भर
0: निर्भर
1: करता है।
0: करता है, लेकिन अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर पाना उसके लिए बहुत
1: जी,
0: जरूरी है। जो मैंने कहा, बेयर मिनिमम डिसिप्लिन, अनुशासित
1: अनुशासन,
0: रहना,
1: बिल्कुल
0: अनुशासित जीवन जीना। और अनुशासित जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि यू शुड नॉट एंजॉय, बिना मतलब अपने आप को मनोरंजित किए हुए आप सृजन वाला जीवन
1: सृजन
0: नहीं जी
1: नहीं जी
0: सकते हैं।
1: सकते हैं, बिल्कुल
0: लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या सीमा है, कहाँ जाके रुकना है,
1: बिल्कुल
0: कहाँ तक जाना है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा
1: मंत्र
0: सीक्रेट
1: कह
0: है।
1: सकते हैं जी। सर आप हमारे प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक भी रहे हैं, तो उस पीरियड की अगर हम बात करें, दूरदर्शन जैसा विशाल संगठन रहा है उसका आपने नेतृत्व किया, कुछ अनुभव।
0: देखिए, दूरदर्शन में जिस जमाने में मैं महानिदेशक

0: था वो मेरे ख्याल से दूरदर्शन क्या प्रसार भारती का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था।
1: जी।
0: चुनौतीपूर्ण समय क्यों? क्योंकि देखिए कई दशकों तक दूरदर्शन चाहे आकाशवाणी वो एक धर्रे पर चल रहा था। उस धर्रे में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता रहता था, लेकिन जिस जमाने में मैं आया या मेरे आने के समय, मेरे आने के जस्ट पहले, वो जो एक टेक्नोलॉजिकल लीप आया ना, वो बहुत ही मतलब उसको जिसको कहते हैं ना झकझोर देने वाला था,
1: जी जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना, पूरा मॉडल बदल
1: चेंज हो
0: गया।
1: गया।
0: और किस जमाने में दूरदर्शन का एक अधिकार था,
1: हाँ,
0: ऑल इंडिया रेडियो का
1: एक
0: एक
1: अधिकार
0: अधिकार
1: था
0: था,
1: बिल्कुल।
0: एक अधिकार का जमाना तो कब का खत्म हो चुका था। लेकिन मैं जिस समय आया उस समय ये जो प्रतिद्वंदिता शुरू हुई प्राइवेट चैनल्स की, वो उस वक्त अब उभार पे आ रही थी, आ चुकी थी। मैं उसका पहला भुक्तभोगी, पहला तो नहीं कहूंगा, दूसरा या तीसरा जो भी है, लेकिन मैं उसका भुक्तभोगी था। तो इसलिए नए तरीके, नए सलीके सब अख्तियार करना था, नहीं तो आप बच नहीं सकते थे। वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था जिस समय मैंने बागडोर संभाली दूरदर्शन की। पता नहीं आगे जो समय है उसमें टेक्नोलॉजी में क्या क्या और अंतर
1: होंगे।
0: आएगा, क्या
1: जी जी
0: क्या।
1: बिल्कुल, समय के साथ परिवर्तन तो निश्चित है। इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए आपने चुनौतियों को सामना किया और दूरदर्शन को एक स्थापित आपने किया। इसी समय आपने देशांतर जैसी पत्रिका भी लिखी, तो उसका क्या मूल रहा उस पत्रिका
0: वो
1: को लिखने
0: देखिए
1: का?
0: उसका तो बहुत साधारण सा ये है, इतिहास है। मुझे बुलाया गया, इन हाउस मैगजीन थी दूरदर्शन की,
1: जी।
0: उसको इनॉगरेट करने के लिए। तो मैं गया, मैंने कहा कि देखिए आप लोग ये इन हाउस मैगजीन चलाते हैं, इसको कौन पढ़ता है? तो सब चुप बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि अगर आप इन हाउस मैगजीन चलाते हैं और उसमें लोग लिखते हैं, पैसा भी खर्च होता है, तो कुछ ऐसा कीजिए जो आने वाली संततियां उसको देखें, देख
1: देखें।
0: सके,
1: जी
0: उसको संजो सके, वो आपके कृतित्व का, आपके व्यक्तित्व का एक दस्तावेज बन सके।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन समय लगा, समय लगा, 2-4 महीने में लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, फिर अच्छे लोग मिल गए। और अपने समय में दृश्यांतर ने हिंदी भाषा के, खास करके हिंदुस्तान के जितने साहित्यकार थे, जो चोटी के साहित्यकार थे, सबको इकट्ठा किया। और उस जमाने की वो 15 महीने की प्रतियां अगर आप उल्टा के देखेंगे, तो उस पूरे दौर का एक दर्पण आपको दिखाई देगा दृश्यांतर में, उस दौर के साहित्य का दर्पण दिखाई देगा। और उसको बहुत लोगों ने पढ़ा, आज भी पढ़ते हैं, आज भी नाम लिया जाता है। तो वही था कि कोई चीज हो रही है, चल रही है, अपने ढर्रे पे चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कुछ बिखराव नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें सृजनात्मक बदलाव करके कोई नई चीज ऐसी जिसमें लोगों की रुचि हो, जो किसी एक सृजन की ओर आपको आकर्षित करे। तो यही था
1: दृश्यांतर।
0: दृश्यांतर
1: जी।
0: का मूल उद्देश्य, यही
1: सर,
0: कि
1: हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत को सुनाएं। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: जो भी आपको पसंद आए वो चला दीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिल्मों की समीक्षा करते हुए फिर एक समय आया आप जो बंद पड़ गया था, फिर से आप पुणे में एक तरह जो हमारा संस्थान था फिल्म और टेलीविजन संस्थान उससे जुड़े और आपने एक्टिंग की भी शुरुआत की, फिल्म का निर्माण भी किया, तो ये जो आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ, ये इसका आप इसके बारे में थोड़ा सा आप साझा कर अपना अनुभव
1: अभी तो बड़ा लंबा
0: संक्षेप
1: इतिहास
0: में
1: आपने पूछ लिया है, लेकिन
0: क्योंकि
1: ये
0: आपने
1: जो
0: दो फिल्में भी बनाई।
1: पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का मेरा दौर था
0: जी
1: तकरीबन करीब करीब 4.5-5 साल का,
0: जी जी
1: वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने अपना बहुत कुछ उसमें लगाया, उसमें बहुत दिल लगाया और बहुत कुछ करने की कोशिश की और किया भी, लोगों ने उसको रिकग्नाइज भी किया। जो 28-30 साल से एक्टिंग कोर्स बंद था
0: जी जी
1: उसकी शुरुआत की, फिर से शुरुआत की, और वो देखिए उसका ये फल हुआ कि आज हमारे देश हिंदी सिनेमा खास करके, लेकिन हिंदी के अलावा भी मराठी और बंगाली और तमिल सिनेमा में, मलयालम सिनेमा में जो चोटी के एक्टर्स हैं वो सब हमारे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मेरे समय में मैंने जिन लोगों को लाया वहाँ पे, वो सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हिंदी सिनेमा के जो लीडिंग एक्टर्स हैं वो सब हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स रहे हैं एक्टिंग कोर्स। एक दौर था मेरे दिल के बहुत करीब, वो दौर था, मेहनत भी लगी, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा भी होता रहा छात्रों के साथ, जैसा कि हर स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग में होता है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कुल मिला जुला करके वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय रहा।
0: ये जो आपने ये आप छात्रों के साथ मिलकर वहां पर शुरुआत की, तो ये पहले से आपका शौक था जैसे फिल्म निर्माण में, या फिर एक प्रयोग किए वहां
1: नहीं तो मैं
0: जाकर?
1: तो फिल्मों में शौक था, वो तो मैंने पूरी पूरा
0: जी
1: इतिहास
0: जी
1: बता दिया, सेल्यूलॉइड
0: जी
1: क्लब से लेकर
0: जी
1: के,
0: जी जी
1: तो ये सब उसी की अंतरधारा है।
0: दो
1: बाथरूम
0: फिल्में
1: तक
0: भी आपने बनाई है उसमें जो एक था वो सुबह
1: वो
0: किधर
1: सुबह किधर निकल
0: निकल
1: गई,
0: गई था,
1: और
0: और
1: उसके बाद
0: कभी
1: एक और फिल्म
0: कभी
1: है जब दिन चले न रात
0: रात।
1: चले।
0: तो इन दोनों फिल्मों के बनाने के पीछे मतलब क्या इसके मूल में है, संदेश क्या देना चाहते थे?
1: संदेश सबसे पहला ये तो था, ये तो मैंने शुरुआत में ही, जब मैंने शुरुआत की वहां पे फिल्म

0: वगैरह की, तो 2 साल पहले ही मैंने बताया कि हमारा ये अरमान होगा कि हमारे बच्चे खुद फिल्म बनाएं, यहाँ के स्टूडेंट्स फिल्म बनाएं। वहां डिप्लोमा फिल्म का तो पहले से था,
1: जी
0: तो पहले डिप्लोमा बनती थी 10 मिनट। मैंने कहा 10 मिनट की डिप्लोमा, 15 मिनट की डिप्लोमा का क्या मतलब है, आप बनाइए पूरा का पूरा फिल्म बनाइए। उन फिल्मों को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि जैसे डिप्लोमा फिल्में बनाते थे लड़के,
1: जी जी
0: बच्चों को बनाना होता है, एक्टिंग कोर्स के बच्चों के लिए डिप्लोमा ऐसी बनाई जाए जिसमें उनको पूरा का पूरा मौका मिले अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को दिखाने का। और उसके साथ साथ जो अन्य विधा के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं,
1: जी जी
0: एक्टिंग के अलावा मतलब डायरेक्शन, सेट डिजाइन, सब उसमें साथ मिलकर के काम करें जैसे फिल्में बनाई जाती हैं वैसे, ताकि एक फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस उनको हो, पूरा रेंज है इस्तेमाल कर सकें वो।
1: इन बातों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आपके लेखन और खास कर तौर पर आपकी पुस्तक जो है माधोपुर का घर, काफी चर्चा में भी रहा और काफी लोगों ने इसे पढ़ा भी है। तो माधोपुर का घर एक केवल कहानी नहीं, हम ये कह सकते हैं, बल्कि एक मिट्टी की महक है उस गांव की। दर्द थोड़ी सी ऐसा लगता है कि सेंसिटिव है, दर्दनाक है, बिछड़न है वहां पर। क्या एक कहानी जो माधोपुर का घर को लेकर आपने जो लिखा है, उसका जो पात्र है, कैरेक्टर है, पशु प्रेम को दिखाता है, तो माधोपुर का घर के बारे में हम थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं।
0: देखिए, माधोपुर का घर संक्षेप में चर्चा करना मेरे लिए बराबर थोड़ा सा
1: मुश्किल होगा।
0: संक्षेप में सिर्फ ये कहूंगा कि माधोपुर का घर किताब को देखने के कई तरीके हैं।
1: जी जी
0: उनमें से सबसे जो मेरे ख्याल से सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वो उसको एक प्रेम कथा के रूप में देखने का है। अब आप कहेंगे प्रेम कथा, भाई किसके बीच प्रेम?
1: जी बिल्कुल। प्रेम कैसा, मतलब प्रेम तो
0: तो
1: हर चीज का
0: क्या
1: अलग
0: एक
1: अलग होता है।
0: मनुष्य और एक जीव के बीच में प्रेम नहीं होता? और क्या एक मनुष्य और किसी परिवेश के बीच में प्रेम नहीं होता?
1: बिल्कुल
0: तो वो है, वो प्रेम की एक अलग आभा है, उसका एक अलग डायमेंशन है जिसको माधोपुर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो माधोपुर का घर में मैंने करने की कोशिश की है, कितना सफल हो पाया मैं खुद नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो ये है कि ये जो अवधारणा है घर की,
1: जी।
0: इस अवधारणा को थोड़ा सा और डिफाइन करने की, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश की गई है कि आखिर ये घर होता क्या है। घर क्या वही चीज है जहां हम लौट करके जाते हैं या जहां से कहीं जाते हैं? अपने आप में ये एक बहुत ही क्लिष्ट परिभाषा है, घर क्लिष्ट क्लिष्ट अवधारणा है।
1: अवधारणा है।
0: तो इन अवधारणाओं को पारिभाषित करने की कोशिश है माधोपुर का घर उपन्यास।
1: बिल्कुल, घर जो है केवल दीवारों से नहीं बना होता है, रिश्ता है, अनुभव है, संबंध है, उससे बना हुआ है। पात्र की अगर बात करें, इसमें आपने पात्र जो रखा है
0: पात्र ही
1: का,
0: कहिएगा, चाहे वो मानव पात्र हो या जीव पात्र हो,
1: जी,
0: पात्र जो है, पात्र के स्तर पे सबसे जो महत्वपूर्ण पात्र है माधोपुर का, वो तो मेरे ख्याल से लोरा, जो उसकी
1: लोरा होता
0: नरेटर
1: है।
0: है,
1: जी
0: श्वान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो लोरा के माध्यम से ही मानव संबंधों की बहुत सारी चीजें उकेरी जाती हैं।
1: फिर भी संक्षेप में जो ये माधोपुर का घर है, इसको आप क्या मानते हैं, एक संस्मरण है, उपन्यास है, या फिर एक सामाजिक दर्पण, क्या किस रूप में इसलिए आप लिखा है इसे आपने?
0: देखिए, एक स्तर पे अपने समय को रजिस्टर करता है और दस्तावेज है अपने समय का,
1: जी
0: तकरीबन
1: जी
0: 100 साल के कालखंड का वो
1: बिल्कुल
0: दस्तावेज है जिसमें 3 अलग-अलग संततियों की कहानी है। मेरे ख्याल से अगर प्रेम कथा के रूप में नहीं, तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसमें माधोपुर को देखा जाना चाहिए वो यही है।
1: तो इसमें लास्ट में जो दिखाया है अंत में, वो भी लोरी भी और उसका जो है पात्र बिछड़ जाता है, तो दोनों एकांतपन सा ऐसा होता, तो जो समापन आपने किया है और शुरुआत, दोनों में काफी मतलब अंतर है। क्या उद्देश्य या क्या
0: तो जो
1: संदेश?
0: समापन मैंने किया है उसका तो विशद उद्देश्य जो है वो यही है ना, घर
1: जी,
0: छूटता
1: घर
0: है।
1: छूट जाता है फिर
0: जब घर
1: लौट के लो।
0: छूटता है तो क्या होता है, वो मैंने किसी दूसरे माध्यम से, किसी जीव के माध्यम से, उस जीव के उस घर से लगाव के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, कि जब वो खरीद कर जब आप लाया जाता है तो ऐसा सोचते हैं कि वो, लेकिन बाद में जिस तरह से उसका लगाव हो जाता है, वो महसूस वो भी वो जीव करता है। तो यहाँ पर प्रेम एक जीव और जो व्यक्ति के रूप में आपने दर्शाया है, काफ़ी ही मतलब एक तरह से स्पष्ट और बड़ा ही सरल रूप में आपने ये दर्शाने की कोशिश की है। अंत में हम ये चाहेंगे कि लेखक त्रिपुरारी शरण और प्रशासक त्रिपुरारी शरण एक दूसरे में अगर बात करें तो कौन किस पर हावी है?
0: ये प्रश्न बेमानी है मेरे लिए। मैं अपना जीवन अपनी गति से, अपनी मति से, अपने तरीके से जीता हूं, और मुझे कहीं कोई ये सब इन सब चीजों के कारण मुझे कभी अपने सामान्य जीवन में कोई व्यवधान का सामना नहीं
1: नहीं
0: करना
1: करना
0: पड़ता
1: पड़ता।
0: है। और ये मेरे

0: ख्याल से मुझे समृद्ध करती हैं, मुझे कमजोर नहीं
1: कमजोर
0: करती।
1: नहीं करती। माधवपुर के घर के बाद अभी हाल ही में आपकी पुस्तक आई है अंतिम आश्रय, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में हमें बताएं।
0: अंतिम आश्रय उपन्यास एक स्तर पर काफी चीजों को एक साथ समेट करके पाठकों के पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन मूल रूप में अंतिम आश्रय वो उसको एक स्वातंत्र्योत्तर भारत में पली बढ़ी महिला की कहानी,
1: जी,
0: जो महिला 100 वर्षों का कालखंड देखती है, जीवन जीती है, उसकी कहानी है, और उस कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करता है ये उपन्यास अंतिम आश्रय। इसका जो शीर्षक है अंतिम आश्रय, उसका मर्म और उसका भेद तो अंत में जाकर पता चलता है कि लंबा जीवन, ज्यादातर सुखमय जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति को अंत में क्या आश्रय तलाशने की जरूरत पड़ती है, ये एक प्रश्न है जो जिसका उत्तर उपन्यास का कथानक देने की कोशिश करता है। सफल है या नहीं है इस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उस प्रश्न को खड़ा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि लंबा जीवन जीने के बावजूद भी क्या ये तय है कि मनुष्य की जो मूल इच्छाएं हैं, जो मूल भावनाएं हैं, उनको वो अपने अपने तरीके से संतृप्त हो पाती
1: संतृप्त
0: है।
1: हो पाती है। धन्यवाद त्रिपुरारी शरण जी, आपने अपने अनुभव, अपनी स्मृतियां, विचारों और जो संवेदना है इतनी सरलता के साथ हमारे श्रोताओं के समक्ष साझा किया। समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे त्रिपुरारी शरण बिहार सीट CIC से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:01 और 40 सेकंड हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। मोहित चौहान की आवाज में पेश है ये पहला गाना और तमाशा फिल्म से। इस गाने को हमने लिया है जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में आप सुन रहे थे जब दे इंडिया फिल्म का ये गाना। और आइए सुनते हैं अगला गाना क्वीन फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

आइए सुनते हैं अगला गाना साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में लीजिए सुनते हैं अगला गाना आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से। कुमार के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गाना उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में। इस गाने को हमने लिया है स्वदेश फिल्म से। जावेद अख्तर ने इस गाने के बोल लिखे हैं और संगीत से सवारा है AR रहमान ने।

भाग मिल्खा भाग लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ में, प्रसन्न जोशी के बोल और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

अनजाना अनजाने फिल्म में भी आपने विशाल डडलानी और साथियों को सुना। नीलेश मिश्रा के बोल, विशाल शेखर का संगीत। अगला गीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में, द डर्टी पिक्चर से सुनिए, रजत अरोरा के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज कुछ भोजपुरी लोकगीत सुनिए। सबसे पहले सुन रहे हैं कविता चौधरी के गाए कुछ लोकगीत।

0: कविता चौधरी के गाए लोकगीतों का आनंद लिया आपने। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में एक अंतराल के साथ सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभी आपने बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में निशा कुमारी के गाए लोक गीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: बहनों बहनों को रेडियो दोस्त राजश्री का नमस्कार। बहनों, हम लोग रोज़ ही किसी ना किसी बात पर मायका ससुराल की बातें करते हैं। जब हम बेटियों की शादी करते हैं तो उन्हें ससुराल जाना पड़ता है, और तब से मायका ससुराल की बातें घर में होती रहती हैं। हम माओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को ये बताएं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। सबसे पहली बात, ससुराल भी एक घर होता है और सास ससुर माता पिता होते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। देवर नंद भाई बहन जैसे होते हैं, उनको प्यार देना चाहिए। ससुराल वालों को भी बहू को थोड़ा वक्त देना चाहिए कि सबको समझ सके। किसी भी रिश्ते में प्यार का होना ज़रूरी होता है, लेकिन हम अगर अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी प्यार करते हैं तो उसे जताना भी ज़रूरी है। अब प्यार कैसे हम जताएं बच्चों पे, तो कभी उनको कुछ खिला दीजिए। स्पर्श से भी हम बच्चों को प्यार जता सकते हैं, जैसे कभी उनके माथों को चूम लिया और हम उनसे प्यार करते हैं, इसका इजहार हम ऐसे भी कर सकते हैं।

बहनों, अभी हमने एक बहुत प्यारे से गीत का आनंद लिया। फिल्म कुर्बानी का ये गाना था, आवाज़ें थी कंचन मनहर और आनंद की। बहनों, कभी कभी

0: हम गलती कर बैठते हैं और डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। एक किस्सा मैं बताती हूँ। एक दिन मेरे घर में काम के दौरान काम वाली दीदी से डिनर का सेट का एक प्लेट टूट गया और वो डर से हमसे आंखें नहीं मिला रही थी। फिर हमने पूछा तो देखा कि उसकी आंखें भरी हुई है। बताया कि दीदी डिनर सेट का एक प्लेट टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम में आ जाइए। अरे काम करते वक्त तो ऐसा होता ही है, कुछ भी टूट सकता है, किसी से भी टूट सकता है। जब हमने ये कहा कि कोई बात नहीं तो उनका चेहरा चमक गया, वो खुश हो गई। तो बहनों मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षमा करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, ये आपका बड़प्पन है। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कोई अगर बहुत बड़ी गलती कर दिया है तो हम क्या करें। उसको हम डांटना फटकारना शुरू करते हैं जो ठीक नहीं है। गलती सबसे होती है, हम भी करते हैं, तो हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। बहनों अब हम सुनेंगे काव्य पाठ। काव्य पाठ आपको, कवित्री हैं सुधा पांडे।
1: मेरी कविता सांसों की डोर पर है। हर किसी का सांसों पर जीवन आश्रित है। जब तक सांस चलती, जीवन चक्र चलता रहता है। मैंने सांसों को अपनी लाइनों में बांधा है। मेरी कविता है सांसों की डोर नाजुक सी। सांसों की डोर कहीं और, नाजुक सी छोर कहीं और। प्रभु हर सांस में बसे हो, जान की डोर कहीं और। बहाना किसी और का, जाना है क्षितिज की ओर। समय न ठहरा है नर का, बहाना न है जीवन धन का। गठरी बांध अपने कर्म का, जिस रूप में आए थे, जाना है मृत्यु की ओर। वही है जीवन गाथा, यही है जीवन गाथा। जीवन से होना रूबरू, सच को अपनाए, लुत्फ उठाए। हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी के महत्व को पंक्तियों में सजाया है। जिस तरह माता का महत्व हमारे जीवन में है, उसी तरह मातृभाषा हिंदी का भी महत्व हमारे जीवन में है। मैं उसे अपनी कविता में बांधी हूँ। जन्मदात्री हिंदी है मेरी, देश की तरक्की भाषा से अस्तित्व ना खोने देंगे, भाषा सबकी एक रहे। क्यों आता हिंदी पखवाड़ा, क्यों आता हिंदी पखवाड़ा, इसका हो हर दिन सम्मान। बिना भाषा बोली बिना कहाँ मिलता है अंजाम। भाषा से ही जुड़ते हैं हम, भाषा से ही जुड़ते हैं हम। मातृभाषा से होता संवाद, हिंदी ईमान है, हिंदी है पहचान। हम सबका हिंदी है अभिमान, हिंदी से ही है हिंदुस्तान। अलख जगाता, दिल तक लाता, लोगों का बढ़ाता स्वाभिमान। हिंदी हमारी एकता की जान, हिंदी भाषा का इतिहास पुराना। भाषों का भावों का मिलता उद्गार, बोली की सरलता है इतनी, बच्चा बच्चा सीखता संसार। रामायण महाभारत है और है पुराण, बुद्धि का भंडार बढ़ाता है ज्ञान। संस्कृत इसका उद्गम स्थान, मधुर सौम्य वाणी से घिस जाता पाषाण। मधुर सौम्य वाणी से घिस जाता पाषाण। शहीदों को याद करती हूँ, आज हम लोग सुकून से जी रहे हैं, इसका श्रेय हमारे देश के सैनिकों को जाता है। कविता का नाम है बलिदान। मातृभूमि ने दी आवाज, उठो वीरों संभालो कमान। आजादी की पुरानी बातें कितनों ने दे दी कुर्बानी। देश

भगत सिंह और चंद्रशेखर की कुर्बानी याद करो, उनकी जज्बातों को ले चढ़ो शिखर, गांधी पटेल की त्याग को देखो, आजादी के लिए क्या न सहा, घर बना जेलों में कैद रहा, यातनाएं सह संस्थापक बना, भारत माता का ख्याल करो, दुनिया में मान सम्मान करो, भगत राजगुरु और सुखदेव अंग्रेजों को खदेड़ भगाया, संघर्ष झेलते हो गए बलिदान, 23 मार्च बलिदान दिवस मना, फांसी का दिन किया निश्चित, बेदर्दी हृदय पार किया न प्रायश्चित, हर वर्ष शहीदों के नाम सम्मान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जाता, हमारे इतिहास में मिला स्थान, त्याग और बलिदान का भाव लिया, क्रांतिकारी दल तैयार किया, इंकलाब जिंदाबाद किनारे से, देश हमारा हुआ गुंजायमान, भूखे प्यासे हड़ताल रखे, यातनाएं सहते रहे उफन किया, देश के लिए दे दी कुर्बानी, क्रांतिकारी शहीदों को बारंबार नतमस्तक, हमारा नमन है नमन है नमन है। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका एक दिवस नहीं, हर दिन महिलाओं की सशक्तिकरण का उदाहरण रहे, घर से लेकर देश विदेशों में एक पहचान बने। महिला दिवस, सादगी की चुनर ओढ़े, दिल में विशालता गढ़े, संपूर्ण नारी के रूप में जगत में है साक्षात खड़ी, नारी की शक्ति कम नहीं, कहीं सुई तो तलवार भी बनी, कभी सौम्य तो रुद्राणी भी दिखी, नारी को ना समझो कमजोर कड़ी, छेड़ो ना ताकत का दिखा गुरूर, किसी भी क्षेत्र में कदम रख करती शुरू, माता रूप ममता को देखा कभी तो ढाल बनकर रक्षा करती, कल्पना झांसी की रानी नायडू को देखा सामने खड़ी, देश की आजादी ले उड़ान भरी, कई रूप हैं नारी जग में खड़ी, देश का गौरव सम्मान दिला, सर झुका अपमान सदा सही, फिर भी मन से अब शब्द ना कही, निश्चल निश्चय सशक्त खड़ी, विश्व को परिवार बना, कर्तव्य हर जगह निभाती, कुछ ना अपना है करती, आज देश में सम्मान है पाती, आज देश में सम्मान है पाती। हिंदुस्तान हमारा है, इसे हम गर्व से कहते हैं, रग रग में बहता है रक्त प्रधान, मेरे देश की बूंद बूंद में हिंदुस्तान, सीमा पर खड़ा सिपाही करे देश की रक्षा, नहीं चाहता मेरे सिवा कोई करे सुरक्षा, जिंदगी दरकिनार खाने को गोली है तैयार, मातृभूमि की रक्षा के लिए होते हैं बलिहार, उस माँ को करती नमन जननी है जो वीरों की, उस माँ को करती नमन जननी है जो वीरों की, कितने मजबूत कलेजा रख भेजा है वीर सपूतों को, हम हिंद के निवासी कभी लड़ने से नहीं डरते, जब आगे कदम रखा तो फिर पीछे नहीं हटते, आज तिरंगे की शान बने वीरों ने दी कुर्बानी, आजादी की लहर उठी घर घर झंडा है फहरानी, वीर जवानों करती सम्मान अमर रहे अमर रहे, देश के वीरों यह वतन खून से लिखा है चमन, जाति पाति का भेद नहीं एकता का नारा है, बड़े कदम वीरों के पावन जन्म स्थान हमारा है, पावन जन्म स्थान हमारा है। गांव के जमीन को अपनी कविता में दर्शाने की कोशिश की, गांव की मिट्टी, गांव गांव की मिट्टी की खुशबू आती है हर बार मुझे,

सोंधी सोंधी खुशबू बुलाती पशु पक्षी और माहौल खेती का, हरियाली फैला ठंडक पहुंचाती, गांव में धूल धक्कड़ से बचाती, शुद्ध वातावरण में हमें घुलाती, गांव में दुराव ना देखा, हिंदू मुस्लिम दोनों का भाईचारा एकता का भाव हमें सिखाती, निस्वार्थ भाव से करते सहयोग, दादी नानी नाना दादा का प्यार गांव की मिट्टी में घुल जाती, धान मक्का गेहूं चूड़ा चावल दलहन सरसों से खेतों का श्रृंगार, गांव की मिट्टी खींचता अपनी ओर, ढेकी ओखल माटी का चूल्हा स्वादिष्ट भोजन से सेहत बनता, मोटा अनाज ताकत का राज, दिन भर की ऊर्जा भरता मन में, माटी की महक गांव की धरती, बैल गाय की सेवा लक्ष्मी का, कुआं तालाब पनिहारिन घड़ा ले मटक मटक भरती पानी, कृषि की ताकत खेती से अनाज, माटी मेरे गांव की देती आवाज, हरियाली से सजी है धरती, माटी मेरे गांव की सुन हमराज, माटी मेरे गांव की सुन हमराज। नारी के ऊपर एक गजल लिखा है, नारियां क्या नहीं कर सकती, हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं, उसे अपनी पंक्तियों में बांधा है, चांद

कदम बढ़ाती है नारियां, गुल गुल सन गुलिस्तां सजाती हैं, देश में परचम

तक परिवार बच्चे संभालती, आज हर काम संभालती है नारियां। चांद मंगल पर जाती हैं नारियां,

0: है धैर्य साहस का प्रमाण देती है नारियां, धैर्य साहस का प्रमाण देती है नारियां।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी काव्य पाठ सुधा पांडे से। अब कुछ गीत संगीत हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, राजसी का नमस्कार स्वीकार करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाई हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा

0: कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम है अक्षयवट। सुनिए भेंट वार्ता। विषय है लाभदायक है नियमित जीवन। भेंट वार्ताकार हैं शिवजी कुमार। बातचीत कर रही हैं अलका प्रियदर्शनी।

0: कार्यक्रम है अक्षयवट, सुनिए भेंट वार्ता। विषय है लाभदायक है नियमित जीवन। भेंट वार्ताकार हैं शिवजी कुमार, बातचीत कर रही हैं अलका प्रियदर्शनी।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में हैं शिवजी कुमार, जाने माने योग प्रशिक्षक, और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से नियमित जीवन शैली और योग की मदद से हम बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्ते जी।
1: अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर का मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है
2: जी,
1: और कभी कभी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जैसे मधुमेह, हाई बीपी,
2: जी जी
1: इन सब का भी शिकार हो जाता है मनुष्य।
2: जी,
1: तो ऐसी स्थिति में हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो उम्र होने के साथ सोचते हैं कि अब आराम से अब जीवन व्यतीत करें और कि निष्क्रिय जीवन शैली अपना लेते हैं। क्या बुजुर्ग होने का मतलब एक सक्रिय जीवन शैली को छोड़ देना है या एक नियमित जीवन शैली को बनाए रखना चाहिए?
2: जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बुजुर्ग होने का मतलब है कि एक सक्रिय जीवन से अलग हो गए हम और अब आराम की ज़िंदगी गुजारें बैठ करके इस तरह से, क्योंकि यही सारी चुनौतियाँ यहीं से आरंभ होती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य के लेवल पर, स्मरण शक्ति के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, काम की जो ऊर्जा है शरीर में उसके लेवल पर, तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को कैसे एनर्जाइज रखें, कैसे हम ऊर्जावान बने रहें। तो इसके लिए नियमित जीवन शैली में योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद अभी 66 साल का हूँ तो मैं अपने को बुजुर्ग नहीं मानता, और नियमित रूप से योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, सारे प्राणायाम ये मैं करता हूँ और इसका परिणाम मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्गियत का एहसास मुझे नहीं है।
1: जी, यानी खान पान पर ध्यान देकर और अगर आप व्यायाम करें, योग करें, तो आप अपने आप को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। तो किस तरह का खान पान हो, क्या इन सब में भी कुछ बदलाव चाहिए? जीवन शैली के बदलाव के बारे में क्या कहना
2: जी
1: चाहिए?
2: खान पान तो असली चीज है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहावत है पुरानी। और खान पान के स्तर पर लोग अब बढ़ती उम्र में बहुत सी बातों को
1: भूल जाते हैं
2: कि कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बल्कि एक तरह से स्वाद के लिए भोजन जो है ना लोग करते हैं। और ऐसी उम्र में स्वास्थ्य के लिए भोजन, जो हमारे स्वास्थ्य ठीक रखे, ऐसा भोजन करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रातः काल में उठते हैं तो सबसे पहले तो पहली क्रिया होती है शौच की क्रिया। तो शौच की क्रिया से यदि आदमी निवृत्त नहीं हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी, वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो शौच की क्रिया से निवृत्त होने के लिए जरूरी है कि 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए, और गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ा कुछ हम लोग आसन बताते हैं जो पेट को साफ करने के लिए, ऊर्ध्वताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और ये शंख प्रचालन की क्रिया में आते हैं ये सारे आसन, और फिर बैठ करके उदरकर्षासन, फिर लेट करके पेट के बल तिर्यक भुजंग आसन, ये सब आसन करने के बाद यदि वो शौच के लिए जाते हैं तो एक बार में उनका पेट साफ हो जाता है। देखिए, हमारा जो शरीर है उसका असली फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ही सारा कुछ चलता है, सारा सिस्टम हमारा, चाहे वो हमारा स्केल्टन सिस्टम हो, चाहे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, और अगर योग की भाषा में कहें तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सारे प्राण जो है, प्राण 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, ये सब उसी से कार्यरत, माने कार्य करते हैं, गतिशील होते हैं। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? तो पहली क्रिया हमारी यह है कि हम लोग श्वास कम से कम 5 से 10 मिनट तक केवल दोनों नसिकाओं से लें और छोड़ें। इसको हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, और मैं ये करता हूँ तो, और इसका परिणाम देखता हूँ कि मेरी सोच कभी नकारात्मक नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता हूँ। अरे कोई काम कैसे नहीं होगा, होगा, करेंगे इसको। तो एक चुनौतियाँ हमेशा जीवन में तो आती ही रहती हैं, तो उन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करना और उनसे निपटना, ये आ जाता है इससे।
1: जी, खान पान में भी उनको लगता है कि स्वाद का थोड़ा चटखारा ले लें
2: जी,
1: क्योंकि
2: जी।
1: अब उम्र हो रही है।
2: हाँ,
1: लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने जीवन के हर पहलू पे ध्यान देना है और हर उम्र में ध्यान देना है। जब प्राणायाम की आपने बात की और आपने कहा कि इससे सोच को भी सकारात्मक होने में मदद मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम लोग देखते हैं कि बुजुर्ग जो है

0: उनको जीवन से और समाज से काफी शिकायत हो जाती है एक उम्र के बाद, उनको
1: जी
0: लगता है कि चारों तरफ नकारात्मक ही हो
1: जी
0: रहा है।
1: जी जी
0: तो सोच के स्तर पर योग और प्राणायाम से कैसे फायदा होता है, और व्यक्ति इसके लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए क्या करे?
1: जी अभी हमने कहा शुरू में कि हमारे शरीर का जो फ्यूल है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ही सारा कुछ। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, आपने देखा होगा कोरोना काल में सबके घर में सब हर एक व्यक्ति के पास ऑक्सीजन नापने वाली मशीन हो गई थी। तो ऐसी जरूरत शायद हम लोगों को सामान्य जीवन में कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा हम लोग अनुभव नहीं करते कि ऑक्सीजन लेवल कभी कमा होगा। लेकिन एक दौर था वो, उस दौर में बहुत लोग कालकवलित भी हुए। लेकिन उस समय एक चर्चा चल रही थी, बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर हैं भारत के नामी गिरामी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऑक्सीजन हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए हमको भगवान ने खुद दिया है और इसके लिए एक प्राणायाम करने की जरूरत है। तो प्राणायाम करने से आप समझिए कि आपका शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं जो पिछले 20 वर्षों से लगातार इस मिशन में लगे हैं। और चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, औरतें हो, किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो हम लोग यही कहते हैं कि आप अगर इंटरनली आप जो भी समस्या आ रही है शरीर के अंदर, या जैसे मेटाबॉलिज्म की बात है, ये तीनों को, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सबको ठीक करने वाला एक साधन है हमारा, वो प्राणायाम है। इसका अलग अलग विधि है, उस विधि के अनुसार पे, जैसे हमने कहा पहला प्राणायाम भस्त्रिका है, श्वास लीजिए छोड़िए, तो इससे आपका जो श्वसन तंत्र है वो स्ट्रांग हो जाता है, मस्तिष्क की जो सेल्स है वो सक्रिय रहते हैं, तो इससे भूलने की बीमारी नहीं होती है। बुढ़ापे में ये बहुत बड़ा रोग है कि सामने सामान रखा हुआ है, चश्मा पहने हुए हैं, खोज रहे हैं पूरा चश्मा कहाँ है,
0: जी
1: चाबी कहाँ है, वो टोपी पहने हुए है, टोपी कहाँ है, मफलर है गर्दन में लेकिन भूले हुए हैं कि मफलर कहाँ है, खोज रहे हैं इधर उधर। तो ये सब भूलने की जो समस्याएं हैं, अनिद्रा की जो समस्या है, रात में कम सोना, तो ये सारी समस्याएं प्राणायाम के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। तो ये श्वसन तंत्र के लिए है जो हमने कहा भस्त्रिका प्राणायाम, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा, जैसे आपको हमने कहा ना जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, तो आपको खाना क्या खाना है ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर, कि जो ऋतु के अनुसार भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो महर्षि सुश्रुत ने अपने एक बार अपने शिष्य से पूछा कि भाई कोरुक कोरुक कोरुक, इसका मतलब संस्कृत में होता है कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं है। तो उनके जो शिष्य थे वांग भट्ट, उन्होंने कहा हित भूख, मित भूख और रित भूख। हित भूख यानी अपनी शरीर की प्रकृति को जानना, कि हमारे शरीर की प्रकृति अगर वायु की है या पित्त की प्रकृति है या कफ की प्रकृति है, तो तीन तीन प्रकार के दोष पाए जाते हैं शरीर में, कफ, पित्त, वायु। तो ये जो प्रकृतियां हैं इनको आपको खुद ध्यान में तोलना पड़ेगा कि हम वायु प्रकृति के हैं कि पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं। तो अगर कफ प्रकृति के हैं तो ठंडी चीजों से परहेज करना पड़ेगा, पित्त प्रकृति के हैं तो गर्म भोजन नहीं करना पड़ेगा, वायु प्रकृति के हैं तो खट्टी चीजें नहीं खानी पड़ेगी। तो ये सब तो ध्यान रखना होगा, साथ साथ आपको सुबह में अनाज नहीं खाना होगा। सुबह में आप केवल जो है जो सीजनल फल, चाहे खीरा हो, अभी जैसे गर्मियों का दिन है तो खीरा है, तरबूज है और भी बेल है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो शुगर है तो हमें, हमको तो फल खाना मना है, तो आप खीरा खाइए और सप्ताह में एक आध दो दिन बेल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आपका शरीर जो है पूरी तरह से, क्योंकि पाचन तंत्र यदि आपका स्वस्थ नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं रह सकता है, क्योंकि सब कुछ तो यही बनता है। अगर ब्लड है तो ब्लड के सारे सेल्स, जो हम लोग जब रोग होता है तो जांच करवाते हैं, तो ब्लड के सारे सेल्स अगर संतुलित रहते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है। अगर उसमें कोई क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो कहता है कि भाई आपका किडनी इफेक्टेड हो गया है। इसी तरह से लिपिड प्रोफाइल में आपका जब टेस्ट होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल अगर बढ़ा हुआ है तो कहते हैं कि भाई आपका हार्ट का कोई प्रभावित हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, ट्रिग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से एसजीपीटी, बिलरुबिन बढ़ा हुआ है तो कहते हैं लीवर की खराबी हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है इसको ठीक करने का तंत्र भीतर में ही है, और हम इसको चाहें तो नियमित रूप से कपालभाति 10 से 15 मिनट, और अगर 10 से 15 मिनट में फायदा ना हो तो उसको और उसका ड्यूरेशन बढ़ा करके अपने शक्ति के अनुसार उसको थोड़े छोटे छोटे स्पेल में 5-5 मिनट के टुकड़ों में या 10-15 मिनट के टुकड़ों में हम लोग उसको कर सकते हैं नियमित रूप से। और इससे आपका पाचन तंत्र जब ठीक रहेगा तो सारा सिस्टम ठीक काम करेगा।
0: जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर कभी घुटने में दर्द, कभी कंधे में दर्द, और खास करके जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी कमर दर्द, घुटने दर्द से अक्सर परेशान रहती हैं। तो बुजुर्ग महिलाओं के लिए आप कुछ योग बताना चाहेंगे, कुछ आसन बताना चाहेंगे?
1: जी देखिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो समस्याएं हैं

0: ब्लड प्रेशर की या शुगर की समस्याएं हैं, तो ये तो खान पान और कुछ आसन हैं ऐसे, जिसमें मंडूक आसन है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेटेड योगा की बात करते हैं।
1: जी
0: इंटीग्रेटेड योगा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो भाई समय तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। आप आधा घंटा मत निकालिए, 1 घंटा मत निकालिए, लेकिन 10-15 मिनट तो स्वस्थ होने के लिए निकालिएगा। और आप कहते हैं कि बुजुर्ग हैं अब हमको कोई काम नहीं है, तो क्या काम है? सुबह में कम से कम योग करिए,
1: जी
0: सारे आसन
1: घुटने
0: करिए
1: का दर्द हो, कंधा जाम हो गया
0: जी।
1: हो।
0: उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी खान पान में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। खान पान में ये परिवर्तन करना पड़ेगा कि जिन चीजों से उनका वायु विकार बढ़ता हो, क्योंकि ये वात रोग है। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कंधों का दर्द हो, इसको वात रोग बोलते हैं। संधिवात, कटिवात, तो ये सब जो है ना, ये वात रोग जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए उनको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हम खाते हैं जिसके कारण ये दर्द बढ़ता है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। और साथ में घरेलू एक दवा है जो अगर घर में चाहे तो बना करके उसको आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी, मेथी, सूंठ और अश्वगंधा, ये बराबर मात्रा में इसका चूर्ण। जैसे घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द है तो घुटनों के लिए क्या करें? साइकिलिंग करें, खूब पीठ के बल लेट करके साइकिलिंग करें, सीधा उल्टा घुमाएं, साइकिल चलाएं खूब, पूरा जैसा साइकिल चलाया था वैसा, केवल पेट पैर को हिलाना नहीं है। और दूसरी बात, एलोवेरा अगर आपके घर के पास पास में हो तो उसका ताजा जो है वो डंटी निकाल करके उसको किचन में काट करके खड़ा करके रख दीजिए। रात भर उसमें से पीला रस निकलता है, और सुबह में उसको छील करके उसका गुद्दा निकाल करके 10 से 15 ग्राम यदि आप खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये दो दवाएं अचूक हैं, खास करके जोड़ों के दर्द के लिए। चाहे वो कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, या फिर कंधों का दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो।
1: जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग योग और प्राणायाम की सहायता से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चलते चलते हमारे जो बुजुर्ग श्रोता हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम बिल्कुल तय कर लें कि घड़ी इतनी बजे हमको खाना है। अगर 7:30 बजे शाम में खाना है तो 7:30 बजे भोजन कर लें। 9 बजे या 10 बजे सोना है तो उस टाइम से बिल्कुल सो जाए, नींद आए अथवा ना आए उस समय सो जाए। और उठने की बात हो, वो तो नींद अपने आप खुल जाती है जब नींद पूरा हो जाता है तो। और अगर बीच में नींद टूट जाती है तो कुछ अब भगवान नाम का स्मरण करें तो उससे भी नींद आ जाती है। और खान पान पे तो संयम जरूर रखें, क्योंकि बुढ़ापे में मन थोड़ा छटकारे वाला भोजन जो है वो पसंद करता है, तो इस पर संयम रखें।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही। शिवजी कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लाभदायक है नियमित जीवन शैली, इस विषय पर शिवजी कुमार से बातचीत कर रही थी अलका प्रियदर्शनी। कार्यक्रम अक्षयवट संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना फिल्म सनम तेरी कसम में गुलशन बाबरा के बोल आर डी बर्मन का संगीत। इन्हीं के संगीत निर्देशन में हम आपको फिल्म जमाने को दिखाना है फिल्म से सुनवा रहे हैं, जिसके बोल मजरू के हैं। आवाज़ दी है आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और पद्मिनी कोल्हापुरे ने।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों का आपने सुना फिल्म महान में। अनजान की रचना थी, आरडी बर्मन का संगीत, और अब किशोर कुमार और साथियों को सुनिए। अनजान की रचना है, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म है आनंद और आनंद।

पुकार। इस फिल्म में भी आपने किशोर कुमार, आशा भोसले और आर डी बर्मन को सुना। गुलशन बाबरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत और अब फिल्म संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की सभी पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और आतंकवाद के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक लेकिन 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर NH की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल की वसूली केवल फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, 2 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को कयाजी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक, विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। NDA की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में 10 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत NDA के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4वें वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4वें वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में 15 जुलाई से बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधवारा में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, भभुआ, किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सुपौल जिले में तेज हवा चलने का

पूर्वानुमान है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने स्वर्ण पदक और साक्षी राज ने कांस्य पदक जीता है। सुप्रिया राज का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुआ है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंहमा के पास पुलिस और DIU की टीम ने एक चार पहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी

0: के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई अथवा बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.intiaanraialways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता

0: समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाई हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया

0: के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
1: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने

0: जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं

मेरे महबूब, इस फिल्म में भी आपने महमूद रफ़ी को सुना। शकील की रचना थी, नौशाद का संगीत, और अब लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आदमी से। शकील के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

फिल्म आदमी का ये गीत अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में सुना। शकील की रचना थी, नौशाद का संगीत। इन्हीं के संगीत में अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में है। गीत लिया है फिल्म पालकी से, शकील की रचना है। लीजिए सुनिए।

फिल्म कोहिनूर में भी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना, और अब इन्हीं के स्वर में अगला गीत हम सुन पा रहे हैं फिल्म राम और श्याम से। शकील की रचना है, नौशाद का संगीत।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर को भी आपने सुना फिल्म साथी में, नौशाद की रचना मजरू के बोल। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ

0: आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है, तो
1: मैं तो
0: बिल्कुल
1: डर
0: जरूर
1: गई दीपा
0: बताइए।
1: जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई, यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो
0: बताएं।
1: रहे हैं हम भी,
0: जी
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ
0: आ
1: चुके
0: चुके
1: हैं
0: हैं।
1: और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्विन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं।
0: पहुंचाते हैं
1: तो
0: जी।
1: अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से यह अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी।

0: हैं वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से यह अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर सौ सौ दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं।
1: जी बिल्कुल
0: याद है
1: जैसे
0: आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर,
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन नौ मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास नौ मन सोना तो होगा ही,
1: हो गई
0: नहीं। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी,
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
0: तो
1: थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती
1: जानते है। बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: जाता है
1: और मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट, लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी?
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें ये विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के CRO CSR कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं
0: आप। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: और कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धी
1: और
0: है, जी।
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
0: जी, तो पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।

0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते
1: चलिए
0: हैं, फिर उसके बाद चर्चा
1: जी।
0: करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित है
0: पहुंचा
1: वो
0: देंगे।
1: पहुँचाएँ हम।
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब फिर
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कितनी
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई, ये ही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
1: जी
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का एमोजी लगा देते हैं भूल से,
1: जी
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
1: जी
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
1: बिल्कुल
0: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई
1: मुसीबत में
0: है।
1: डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे
0: कुछ
1: हैं।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं
1: हाँ, ये बात भी होती है।
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते हैं
1: लेते हैं।
0: कि हाँ, ये
1: जी
0: किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है, उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग। इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं।
1: जी
0: अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील रील पोस्ट करते हैं और कुछ लोग
1: और
0: अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है।

0: और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे विषयों
0: मतलब
1: पर वो
0: मुझे तो
1: लोग
0: लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल
0: पर।
1: मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का
0: और
1: इस्तेमाल
0: इसमें
1: करना।
0: नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाएं, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि

0: कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ
1: जी
0: ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी
1: कम
0: नहीं
1: किया
0: कम किया
1: जाता है
0: जाता है
1: जी
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है,
1: जी
0: लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं, अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां
1: जी
0: पर
1: जी
0: ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते
1: वो
0: हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया? ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती हैं कि हम तो ठग गए,
1: हाँ
0: जबकि
1: जी
0: ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है। ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई
1: जी
0: बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी
1: हाँ
0: वालों
1: जी
0: से
1: हाँ
0: अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो
1: हाँ
0: सब्जी
1: ये बात
0: वाले
1: होती
0: भी
1: जी
0: आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है ये
0: बिल्कुल।
1: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो में गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात
1: बता
0: लिखी
1: दिया
0: है,
1: जी
0: और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें ऐसा
0: सुनते हैं।
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए हैं, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब
1: वहां
0: मूल
1: पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता
1: और
0: ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले, तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें, कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ
0: अच्छा
1: ये
0: करी
1: बात तो है,
0: पत्ता
1: करी
0: भी
1: पत्ता तो
0: डाल दो।
1: डाल दो।
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो 2 या 3 दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
1: बिल्कुल
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: और
0: जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
1: बिल्कुल आज 1.5 चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब

0: राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
1: मुर्गे
0: श्रोताओं ने
1: की
0: लिख भेजा
1: एक
0: है कि
1: टांग, ये भी एक
0: हाँ
1: मुहावरा है।
0: ये भी एक
1: अब एक
0: मुहावरा।
1: श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
0: बिल्कुल, ये भी होती है जहां अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया है कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
1: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
0: जी
1: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है। कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
0: जी
1: इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी। तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
0: जी
1: तो अर्थ बदल जाता
0: अर्थ
1: है।
0: बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है,
0: जी
1: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
0: जी
1: तरह के
0: जी
1: डिजाइनदार
0: जी
1: दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए, लड़कियां औरतें फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा, तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे।
0: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहां पर क्या आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना, तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
1: तो 100 रुपए में मिल जाएगा।
0: 600 रुपए में मिल
1: आज तो हम
0: जाएगा।
1: सबकी हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं
0: कभी
1: खिचड़ी पका
0: खिचड़ी
1: रहे
0: पक
1: हैं।
0: रही
1: अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारे कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है,
0: जी
1: लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन
0: जी
1: लेते हैं
0: चलिए
1: ये
0: सुनते
1: गाना।
0: हैं।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं, बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूँ वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन,
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए,
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है। तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ

0: हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं।
1: जी
0: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
0: क्या
1: था,
0: बात है, क्या
1: तो आई नेवर इमेजिन एनी अदर
0: बात! वाह वाह वाह,
1: प्रोफेशन। बट
0: मुश्किल।
1: जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक
0: हाँ
1: हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
0: हाँ
1: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
0: हाँ
1: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
0: जी।
1: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
0: जी
1: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
0: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है,

0: प्रोफेशन,
1: वाह वाह
0: बट
1: वाह,
0: जरिया नहीं मिल रहा था तो
1: हाँ
0: नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा
1: ये कितने
0: मैं
1: तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए, जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी जी
0: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो मैं
1: अच्छा
0: चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
1: जी
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है
1: जी
0: लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी के वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइट ली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये एक
1: गाना,
0: बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में, और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा,
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं
0: अच्छा
1: थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी जी
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है, बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया, जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया, जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ, बट
0: हाँ
1: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला, और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो दैट इज थिंग।
0: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमोसफेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो
1: गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है ना।
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए बस। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली?
1: जी ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जबानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है।
0: यस
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा। और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना
0: था।
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
0: आह
1: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश छाड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
0: जी
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड हैपेंड इन माय लाइफ।

0: अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
1: हाँ, बड़े सेलुलॉइड पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
0: नहीं
1: इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
1: जी
0: तो सामने, मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ, पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
1: ओहो
0: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी,
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ हाँ
0: हमारा शो और उनका शो, KBC और वो,
1: जी
0: हम
1: जी
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का।
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युवानी।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम यू वाणी में, जहां हर बार जुड़िए आपसे और आपके विचारों से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया और मेरे साथ स्टूडियो में है
1: अंकिता। दोस्तों, हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ प्रेरक बातें और साथ साथ शानदार फिल्म संगीत का आनंद।
0: बिल्कुल अंकिता, क्योंकि युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की आवाज है। यहाँ हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे समाज, हमारे भविष्य और खासकर युवाओं के जीवन से जुड़े होते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम भी बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के विलक्षण रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जयंती के बारे में।
0: और इसके साथ ही दोस्तों, आज है 7 जुलाई यानी विश्व चॉकलेट दिवस। अब तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अंकिता।
1: प्रिया, इतना ही नहीं, आज का

0: कार्यक्रम और भी खास होने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं प्रेम दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड लव। आज यही दोनों की वजह से दुनिया टिकी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने अंकिता, और इन दोनों का हमारे जीवन में होना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज है दिन मंगलवार, तो हर मंगलवार को हम लेकर आते हैं बेहद खास सेगमेंट मनोबल मंगलवार। और हो जाइए आप भी तैयार, इस पे हम जानेंगे कि अपनी ताकत को आप कैसे पहचाने और निखारें कैसे।
0: साथ ही दोस्तों, अंत में हम ले चलेंगे आपको ऐसे अपडेट की ओर जिसका युवा साथियों को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। इसी के साथ कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और बीच बीच में आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का माहौल भी बना रहेगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो अगले 1 घंटे तक जुड़े रहे हमारे साथ और लेते रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत का आनंद, और सुनवाते हैं आपको आज का ये पहला ट्रैक।

0: तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल का रिश्ता से अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गाना।
1: और अब हो चुका है हमारे अगले विषय की ओर, लेकिन उसके बात करने से पहले हम कुछ प्रेरक पंक्ति के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे युवा श्रोता को एनर्जी मिले और एक नया जुनून के साथ वो अपने दिन की शुरुआत को जारी रखे। तो दोस्तों, किसी ने सच्ची कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है।
0: वाह, सच ही तो कहा है प्रिया। इंसान की सफलता उसके साधनों से नहीं, बल्कि उसके साहस, मेहनत और दृढ़ निश्चय से तय होती है। अगर इरादे मजबूत हों, तो छोटी सी शुरुआत भी मंजिल तक पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल अंकिता, और इतिहास और वर्तमान दोनों ऐसे लोगों की मिसालों से भरे पड़े हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हौसले के दम पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी परिस्थितियों से घबराया नहीं और ना ही उन्हें अपनी कमजोरी बनने दिया, बल्कि उनसे लड़ा और अपने लक्ष्य को हासिल किया।
0: और यही संदेश हम सभी युवाओं के लिए भी एक सपने की तरह है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी जरूरी है। असफलता रास्ता रोकना नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने सिखाने आती है, जो हर गिरावट के बाद फिर उठकर खड़ा होता है। अंततः वही सफलता का स्वाद चखता है।
1: तो आइए दोस्तों, आज हम संकल्प लें कि चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम अपने आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे।
0: क्योंकि याद रखिए, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। हौसले बुलंद हो तो हर सपना एक दिन हकीकत जरूर बनता है।
1: बिल्कुल अंकिता, तो हम अपने दोस्तों को अगले विषय की ओर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: तो दोस्तों, दिल के हाल को तो सही में बयान नहीं किया जा सकता। अभी आप ये सुन रहे थे फिल्म बेशरम से ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नए चर्चा के विषय पे।
1: बिल्कुल अंकिता, और हम अपने अब अगले विषय की ओर चलते हैं और चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के ऐसे विलक्षण रचनाकार को जिन्होंने लिखा तो कम लेकिन जो भी लिखा वो अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जिनकी जयंती हर वर्ष 7 जुलाई को मनाई जाती है।
0: बिल्कुल प्रिया, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के गुलेर शहर क्षेत्र से थे, इसलिए उनके नाम के साथ गुलेरी जुड़ा। वे केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे।
1: दोस्तों, साहित्य की दुनिया में उनका सबसे बड़ा परिचय उनकी अमर कहानी रही। वो कहानी थी उसने कहा था। दोस्तों, यह कहानी प्रेम, कर्तव्य, त्याग और मानवीय संवेदनाओं का ऐसा अद्भुत चित्र प्रस्तुत करती है कि आज भी इसे हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल किया जाता है।
0: और खास बात यह भी है प्रिया कि गुलेरी जी ने कहानियां बहुत कम लिखी। उनकी प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। मात्र 3 कहानियों ने ही उन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया।
1: बिल्कुल अंकिता, और वे एक कुशल शिक्षक, शोधकर्ता और इतिहास के गंभीर अध्येता भी थे। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापन किया और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास एवं धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी किया।
0: उनकी लेखन शैली सरल,

0: प्रभावशाली और संवेदनाओं से भरपूर थी। उन्होंने यहाँ सिद्ध किया कि साहित्य की महानता शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति से शक्ति से तय होती है।
1: बिल्कुल अंकिता, उनका ज्ञान तो असीम था। उन्हें हिंद संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली और प्राकृत जैसे अपभ्रंश भी, जैसे कई भाषाओं पर महारत हासिल उन्हें थी। इतना ही नहीं, जब वे केवल 10 साल के थे तब उन्होंने संस्कृत में भाषण देकर बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर दिया था।
0: दोस्तों, आज उनकी जयंती पर हम उनके साहित्यिक योगदान को नमन करते हैं और नई पीढ़ी से यही कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक उसने कहा था उनकी कहानी नहीं पढ़ी है, तो इसे अवश्य पढ़ें। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है।
1: बिल्कुल अंकिता, और सही कहा आपने, ऐसे महान साहित्यकार की जयंती पर आज हम उन्हें याद करना और उनकी रचनाओं को पढ़ना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: दोस्तों, गुलेरी का साहित्य आने वाली पीढ़ियों को संवेदनशीलता, कर्तव्य और मानवीय रिश्तों का महत्व सिखाता रहेगा।
1: इसी संदेश के साथ क्यों न हम अपने श्रोताओं को अंकिता एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल प्रिया, तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं आज का अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवावाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वदेश से उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में ये गाना। तो प्रिया, आज कौन सा खास दिन है जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल अंकिता, आज है विश्व चॉकलेट दिवस। दोस्तों, आज है 7 जुलाई और हर 7 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व चॉकलेट दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को इस मीठे और खुशियों से भरे दिन के ढेरों सारे शुभकामनाएं।
0: प्रिया, चॉकलेट का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
1: बिल्कुल अंकिता, और चॉकलेट केवल स्वाद ही नहीं बल्कि खुशियों, प्यार और अपनापन बांटने को भी का भी एक खूबसूरत माध्यम है। और यही कारण है कि जन्मदिन या त्योहार या फिर कोई किसी की सफलता पर या किसी खास मौके पर लोग चॉकलेट देना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, उपहार के रूप में उसे देते हैं और लेना भी बड़ा मजा आता है।
0: जो भी गई है, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या आप जानती हैं कि विश्व चॉकलेट दिवस

0: मनाने की शुरुआत इस विश्वास के साथ हुई थी कि इसी दिन यूरोप में पहली बार चॉकलेट पहुंची थी। तब से यह दिन चॉकलेट के इतिहास, स्वाद और उसकी लोकप्रियता का उत्सव बन गया है।
1: सचमुच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अंकिता कि चॉकलेट बनती कैसे है?
0: जी हाँ, चॉकलेट कोको के पेड़ से लगने वाले फलों के बीजों से बनती है। इन बीजों को सुखाया जाता है, भूना जाता है और फिर उनसे कोको तैयार किया जाता है। उससे अलग-अलग प्रकार की चॉकलेट बनती है।
1: जैसे दोस्तों मिल्क चॉकलेट, डार्क जो डार्क चॉकलेट है, और व्हाइट चॉकलेट, और न जाने कितनी स्वादिष्ट वैरायटियां हैं।
0: सही कहा, खासकर डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हम तो बहुत खाते हैं और एग्जाम के समय तो मेरा आंख खोलने का एक ही तरीका है,
1: मुझे एक और
0: डार्क
1: पसंद है
0: चॉकलेट।
1: अंकिता।
0: तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि सीमित मात्रा में खाने पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं।
1: लेकिन अंकिता, हर अच्छी चीज की तरह चॉकलेट भी संतुलित मात्रा में ही खानी चाहिए। कहा जाता है ना कि ओवर किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा आप खाइएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को हार्म करता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, और वो उस लिमिट में हमें किसी भी चीज को खाना चाहिए। अधिक मिठाई या अधिक चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, और अन्य भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां को झेलनी पड़ती है।
0: बिल्कुल, इसलिए स्वाद का आनंद ले, लेकिन स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान रखें।
1: और कहीं ना कहीं अंकिता, बच्चों के लिए भी यही संदेश है, और हमारे युवा साथियों के लिए भी, कि चॉकलेट खाने के बाद कुल्ला करें या दांत साफ करें, ताकि दांत भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें।
0: प्रिया, क्या आपको पता है कि चॉकलेट से जुड़े कई रोचक तथ्य भी हैं?
1: जरूर होंगे, लेकिन जैसे अंकिता आप बताइए।
0: कोको के पेड़ पर फूड ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का भोजन भी कहा जाता है कोको के पेड़ को।
1: अरे वाह, यानी दोस्तों दुनिया में हर साल लाखों टन चॉकलेट का उत्पादन भी होता है, और चॉकलेट का उपयोग केवल खाने में ही नहीं, बल्कि केक, आइसक्रीम, कुकीज, पेय पदार्थ और कई मिठाइयों में भी किया जाता है।
0: और सबसे अच्छी बात तो यह है कि छोटी सी चॉकलेट भी किसी का दिन खास बना सकती है। एक मीठा उपहार रिश्तों में मिठास घोल देता है।
1: बिल्कुल सही कहा अंकिता, लेकिन याद रखे दोस्तों, असली मिठास हमारे व्यवहार, हमारी मुस्कान और हमारे अच्छे शब्दों में भी होती है।
0: कितनी सुंदर बात कही है आपने। तो आइए इस विश्व चॉकलेट दिवस पर हम केवल चॉकलेट को नहीं, बल्कि अपने रिश्तों में भी प्यार, सम्मान और मिठास घोलने का संकल्प लें।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो इसी संकल्प के साथ हम चलते हैं आज के अगले ट्रैक की ओर। आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा संगीत।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेलकम से आनंद राज के आवाज में ये गाना। गाना सुन के तो मजा ही आ गया प्रिया। तो प्रिया, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज ऐसा कौन सा खास सेगमेंट लेकर आई हैं आप?
1: बिल्कुल श्रोताओं, आपको पता ही होगा आज है दिन मंगलवार और हर मंगलवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद खास सेगमेंट मनोबल मंगलवार। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इसके अंतर्गत कुछ प्रेरक बातें जिससे हम और आपको कुछ सीखने को मिले।
2: आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युवाणी, और मैं हूँ आपके साथ नीतू। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में परीक्षाओं का माहौल है। किताबें खुली हैं, नोट्स फैले हैं, लेकिन मन में उम्मीदों के साथ साथ थोड़ा तनाव भी है। अक्सर परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चे पढ़ाई से ज्यादा अपने मन के तनाव से जूझने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज परीक्षा के तनाव पर खुलकर बात हो रही है। आपने परीक्षा पर चर्चा के बारे में जरूर सुना होगा, जहां देश के प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों को संबोधित करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि परीक्षा डर नहीं, एक अवसर है खुद को समझने और आगे बढ़ने की। और इसी सोच से जुड़ी है आज की हमारी कहानी, तनाव को समझने की और आगे बढ़ने की। तो चलिए, मिलाती हूँ आपको ऐसे ही एक लड़के से। पटना के कदम कुआं मोहल्ले में एक पुरानी टीन की छत वाला छोटा सा घर, और उस घर पे रहता था अर्जुन, 12वीं साइंस का छात्र। पापा सुबह 5 बजे से रिक्शा चलाते, शाम को थक कर घर लौटते। माँ घरों में झाड़ू पोछा करती थी। छोटी बहन रिया जो क्लास 8 में पढ़ती और अर्जुन को अपना हीरो मानती थी। अर्जुन का सपना साफ था, अच्छे नंबर लाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, कि पापा को रिक्शा न चलाना पड़े, माँ को झुककर काम करने की जरूरत ना हो और रिया को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन बोर्ड एग्जाम सिर्फ 30 दिन दूर थे और अर्जुन का मन हर पल नरक जैसा लग रहा था। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता, वो उठता,

चेहरा धोता टेबल पर बैठता। किताबें खोलते ही मन से आवाज आती, यार इतना सिलेबस, फिजिक्स के 18 चैप्टर, केमिस्ट्री के रिएक्शन तो याद ही नहीं होते, मैथ्स में तो एक सवाल भी सॉल्व नहीं होता। 5 मिनट में ही सिर भारी, आंखें जलने लगती, पेट में गांठ सी बन जाती, हाथ ठंडे, दिल की धड़कन तेज हो जाती। वो सोचता, अगर फेल हो गया तो पापा का दिल टूट जाएगा, माँ रोएंगी। रिया पूछेगी, भैया तुम तो कहते थे अच्छे नंबर लाओगे। सब हंसेंगे, मैं क्या करूंगा, ऐसे तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। रात को 12 बजे तक जगता, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा सोचता, यानी ओवरथिंकिंग की लूप में वो फंसते चला जा रहा था। फिर नींद आती, सपने में पेपर आता, सारे सवाल अनजाना, वो कांपते हुए उठ जाता। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त वो पुराने पेड़ वाले पार्क में रुक गया। वहां एक बूढ़े अंकल बैठे थे, सफेद कुर्ता, लाठी, चेहरे पर शांति जो सालों की मेहनत से आती है। अर्जुन कई बार उनसे मिलता था, नाम था उनका बाबूजी। बाबूजी ने देखा अर्जुन का चेहरा उतरा उतरा सा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो?

एक बूढ़े अंकल बैठे थे, सफेद कुर्ता, लाठी, चेहरे पर शांति जो सालों की मेहनत से आती है। अर्जुन कई बार उनसे मिलता था। नाम था उनका बाबूजी। बाबूजी ने देखा अर्जुन का चेहरा उतरा उतरा सा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने रोते हुए सब बता दिया। बाबूजी, परीक्षा का डर सता रहा है, मर नहीं लगता, लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा, आजा मेरे पास बैठ, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। 1975 की बात है। उस साल बिहार में सूखा पड़ा था, हमारा गांव सूख गया। पिताजी बीमार, घर में अनाज खत्म, मैं 10वीं में था, किताबें तक नहीं थी। सब कहते पढ़ाई छोड़ दे, मजदूरी कर। मुझे लगा सपने तोड़ दूं, लेकिन रात को एक सपना आया। सपने में मैं एक विशाल नदी के किनारे खड़ा था, दूसरी तरफ मेरा सपना, शहर, नौकरी, परिवार की खुशी, लेकिन बीच में पुल टूटा हुआ, मैं रो रहा था। तभी एक बूढ़ा संत आया और बोला, बेटा पुल टूटा है तो क्या, नदी तो बह रही है ना, तो पुल बनाने की कोशिश क्यों नहीं करता? शुरू में पत्थर गिरेंगे, हाथ छिलेंगे, थकान होगी, पर अगर तू हर दिन सिर्फ एक पत्थर रखता रहा तो एक दिन पुल बन जाएगा, और अगर तू रुक गया तो तेरा सपना हमेशा तुझसे दूसरी तरफ होगा। अर्जुन ने पूछा, फिर आपने क्या किया? बाबूजी हंसे, मैंने वही किया, हर दिन एक पत्थर। सुबह सुबह पड़ोस के भैया से पुरानी किताबें मांगी, रात को लालटेन जलाकर पढ़ता। कई बार नींद आती, कई बार डर लगता, पर खुद से कहता, बस आज एक चैप्टर, बस एक, कल का कल देख लेंगे। धीरे धीरे एक चैप्टर हुए, फिर दो हुए, और दो से चार। परीक्षा के दिन कांप रहा था, लेकिन पेपर देखा तो लगा, अरे ये तो वही टॉपिक है जो मैंने पढ़े थे। नतीजा, सेकंड डिवीजन। टॉप नहीं किया लेकिन पास हो गया। उसके बाद नौकरी मिली, परिवार संभाला, आज मेरे बेटे बेटियां अच्छी जगह हैं। सब शुरू हुआ उस एक पत्थर से। अर्जुन की आंखें चमक उठी, तो बाबूजी मेरा पुल कैसे बनेगा? बाबूजी ने कंधे पर हाथ रखा, सुन बेटा, परीक्षा कोई जंग नहीं, बस एक नदी है। तनाव तब आता है जब तू पूरी नदी एक बार में पार करने की सोचता है। तू बस आज एक पत्थर रख, जैसे एक घंटा बिना फोन देखे 10 सवाल को हल कर और एक चैप्टर को रिवाइज कर। और याद रख ये बातें, तू फेल नहीं हो रहा, तू सीख रहा है। 100% नहीं चाहिए, बस कल से 1% बेहतर होना है। माँ पापा को परफेक्ट मार्क्स नहीं, तेरा प्रयास दिखाना है। और सिर्फ तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे लाखों बच्चे अभी डर महसूस कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, अगर मन न लगे तो? बाबूजी बोले, 5 मिनट का नियम आजमा, बस 5 मिनट पढ़, अगर इसके बाद भी मन न लगे तो छोड़ दे, पर 95% बार ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद तू खुद रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल शुरुआत होती है। उस दिन से अर्जुन ने खुद से छोटे वादे किए, सुबह 5 से 7 सिर्फ साइंस, हर 50 मिनट बाद 5 मिनट टहलना, पानी पीना, रात 10 बजे से फोन साइलेंट, और रोज डायरी में लिखना, आज मैंने एक पत्थर रखा। पहले हफ्ते मुश्किल थी, कई बार रोया, लेकिन 5 मिनट का नियम शुरू किया। धीरे धीरे आदत बनी, फिजिक्स के न्यूटन के लॉ रटे, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के रिएक्शन समझे, मैथ में डेरिवेशन की प्रैक्टिस की, और परीक्षा के आखिरी 5 दिन रिवीजन। और इसी तरह धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ, नींद अच्छी आने लगी और कॉन्फिडेंस बढ़ा। परीक्षा का दिन आया, पहला पेपर फिजिक्स का। अर्जुन घबराया, लेकिन सवाल देखा तो ज्यादातर वही थे जो पढ़े थे। धीरे धीरे लिखना शुरू किया, सारे पेपर खत्म हुए। रिजल्ट का दिन आया, अर्जुन का दिल धड़क रहा था। स्क्रीन पर नाम अर्जुन कुमार, 85%। घर पहुंचा तो माँ खुशी से रो रही थी। रिया चिल्लाई, भैया टॉपर। पूरे घर में खुशी की लहर थी। पापा ने गले लगाकर कहा, बेटा तूने जो मेहनत की वो सबसे बड़ी डिग्री है। आज अर्जुन एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है। वो शाम को पार्क में बच्चों को पढ़ाता है और हर बच्चे से कहता है, नदी बह रही है, पुल टूटा हुआ लगता है, लेकिन तू बस आज एक पत्थर रख दे, कल एक और, परसों एक और, एक दिन तू उस पार होगा और तब तुझे पता चलेगा तनाव सिर्फ शुरुआत की थी, जीत तेरी मेहनत की होगी। दोस्तों, अर्जुन की तरह आप भी परीक्षा के साथ आने वाले इस अनचाहे मेहमान तनाव को खुद से दूर कर सकते हैं। इसके लिए बस मिनी मेडिटेशन करें, 1 मिनट श्वास पर फोकस, और कल्पना करें तनाव बादल की तरह उड़ रहा है। क्रिएटिव ब्रेक लें, पढ़ाई के बीच में ड्राइंग बनाए या कोई खुद की पसंद वाला काम जो आपको अच्छा लगता हो। साथ में शायरी या कविता लिखे, जैसे मैं योद्धा, परीक्षा मेरी दोस्त। दोस्तों, परीक्षा एक चैप्टर है, जीवन की किताब लंबी है जिसमें अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग चैप्टर्स हैं। और सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद। बस जिस तरीके का गिफ्ट एज अ सरप्राइज चाहिए, उसके लिए आज से मेहनत करना शुरू करें। पढ़े, मुस्कुराए, गिरे तो उठे, और याद रखें, तनाव आएगा जाएगा, लेकिन आपकी मुस्कान हमेशा रहनी चाहिए। तनाव को खुद का दुश्मन मत बनने दे, उसे दिशा दे, और खुद पर भरोसा रखे। मैं

0: तो आपसे विदा लेती हूँ इस इंस्पायरिंग थॉट के साथ कि बस अगले मोड़ पर सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा सा और चलते हैं। आकाशवाणी पटना पर सुनते रहिए युवाणी। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मनोबल मंगलवार में इतनी सारी इंस्पिरेशनल थॉट्स। अब चलिए आपको सुनाते हैं अगला गाना फिल्म साइना से अमाल मलिक की आवाज में।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे विषय की जिसकी आवश्यकता हर इंसान को, हर समाज को और पूरी दुनिया को है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शांति और प्रेम की।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज है इंटरनेशनल पीस और लव डे। जब मन में शांति होती है और दिल में प्रेम, तब जीवन सुंदर बन जाता है। यही संदेश हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस देता है।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता आपने। शांति का अर्थ केवल युद्ध का न होना ही नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता, आपसी सम्मान और सहिष्णुता और भाईचारे का होना भी है।
1: और प्रेम का अर्थ केवल परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं होता। प्रेम का मतलब है हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, करुणा, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना रखना।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आज के समय में हम तेज रफ्तार की जीवन जी रहे हैं। काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम अपने व्यवहार में प्रेम और धैर्य को बनाए रखेंगे तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, एक मुस्कान, एक मधुर शब्द या किसी की

0: मदद, एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में एक बड़ी खुशहाली ला सकता है।
1: दोस्तों, इतिहास गवाह है कि प्रेम और अहिंसा की शक्ति ने बड़े बड़े संघर्षों का समाधान किया है। संवाद, समझ और सहयोग से ही शांति स्थापित की जा सकती है।
0: शांति की शुरुआत हमारे अपने घर में होती है। यदि परिवार में सम्मान, संवाद और विश्वास होगा, तो समाज भी मजबूत होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और समाज से ही देश और दुनिया बनती है। इसीलिए दोस्तों, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह नफरत नहीं बल्कि प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाए।
0: आइए दोस्तों, आज हम यह संकल्प ले कि अपने शब्दों, व्यवहार और कार्यों से प्रेम, सम्मान और शांति का संदेश फैलाएंगे।
1: बिल्कुल, और याद रखिए, शांति किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी मानवता की आवश्यकता है, और वह है प्रेम। प्रेम वह भाषा है जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपसी प्रेम, सद्भाव और शांति को बनाए रखिए। तो अंकिता, हम अपने दोस्तों को आज का अगला ट्रैक भी सुनाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तुमसे मिल के दिल का ये हाल क्या कहें। बिल्कुल दोस्तों, आपके साथ जुड़े रहने से बहुत ही मजा आता है और हमें भी एक नया ऊर्जा मिलता है। आप सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना से गायक सोनू निगम और की आवाज में। तो अब हम चलते हैं एक ऐसे सेगमेंट की ओर जिसको हमारे युवा श्रोताओं के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। तो अंकिता, आज के खास स्पोर्ट्स में क्या है बताइए आप।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मैचों की श्रृंखला की तीसरे मुकाबला आज शुरू होगी। नोवाक जोविक ने रोमन सॉफिलिन को हराकर विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।
0: और इसके साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण कर रही हरी झंडी दिखाया और रवाना किया। तो अब हम चलेंगे आज के अपने अंतिम सेगमेंट की ओर, और वो है रोचक तथ्य। तो क्या कुछ खास लेकर आई हैं अंकिता हमारे रोचक तथ्य में?
1: प्रिया, क्या आप जानती हैं कि आज दुनिया में मौसम का पूर्वानुमान पहले से तुलना में कहीं अधिक सटीक हो गया है? इसकी बड़ी वजह है सुपर कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मौसम उपग्रहों से मिलने वाली रियल टाइम डेटा।
0: अरे वाह अंकिता, और एक और दिलचस्प बात बता दो दोस्तों कि आज कई शहरों में ट्रैफिक सिग्नल भी स्मार्ट हो रहे हैं, और ये सिग्नल सड़क पर वाहनों की संख्या देखकर अपने आप ग्रीन और रेड लाइट का समय बदल सकते हैं, जिसे जाम करने में काफी मदद मिलती है, जाम को कम करने में काफी मदद मिलती है।
1: वाह प्रिया, क्या बात बताई है आपने। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं आज के मौसम के अनुसार अपना अगला ट्रैक।

0: उम्मीद है दोस्तों, युवानी कार्यक्रम आज की कड़ी भी हमेशा की तरह आपको काफी पसंद आई होगी और आगे भी आप यूं ही युवानी का आनंद लेते रहेंगे।
1: कार्यक्रम के कुछ अगर कमी रह गई हो तो आप अपने सुझाव या शिकायत हमें साझा कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे feedback@patna@gmail.com।
0: जी हाँ दोस्तों, याद रखें, हमारा पता है कार्यक्रम युवानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना, हमारा पिन कोड है 8001। तो कैसा लगा आपका कार्यक्रम, हमें जरूर सुझाव दें। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त प्रिया और अंकिता को। नमस्कार।
1: कार

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मगही कार्यक्रम मगधी।

मागधी सुनिहार के नीलाद्री के प्रणाम। तो देखते देखते आखिरकार मेघ पड़े लगले हैं। तो आए हन मंगलवार हमने प्रस्तुत हियन हिनका लेल मागधी कार्यक्रम लेके। चर्चा करबन आय खाद प्रसंस्करण, ग्रामीण रोजगार और स्थानीय उत्पाद के बाजार पर, खेती किसानी खातिर मानसून के महत्तम पर। सुनबे लोकगीत कलाकार अनिल कुमार अकेला से, और साथे साथ एगो वार्ता सुनबे शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर, वार्ताकार हथिन हेमा कुमारी। समसामयिकी में हमनी आई पुण्यतिथि है, कल पुण्यतिथि हले जगजीवन राम के, आय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती। प्रमुख पंडवानी गायिका तीजन बाई पर आ रेबिज के टीका पर। खाद प्रसंस्करण कृषि उत्पाद के जे है दाम के बढ़ा के आ ओकरा ज्यादे समय तक सुरक्षित आ उपयोगी बनाबे के एगो तरीका है। ई ग्रामीण इलाका में फसल जे हमनी के उपजा है ओकर बर्बादी के रोके लेल प्रक्रिया के लावल जा है। स्थानीय किसान के ई आय बढ़ावा है, गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से ढेर रोजगार भी पैदा करा है। गांव में आटा मिल, अचार, पापड़, बड़ी, दूध के उत्पाद और मसाला पिसाई नियन इकाई ग्रामीण क्षेत्र

क्षेत्र में ढेर रोजगार पैदा करा है। इसे लोगन के शहर ने पलायन करे से रोकल जा सके है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में तेजी से आगू आ रहे हैं। खाद प्रसंस्करण के घरेलू स्तर से निकाल के सूक्ष्म उद्यम में बदले में महिला के दबदबा है। स्थानीय उत्पाद के प्रसंस्करण से कीमत बढ़ा है, मुनाफा बढ़ा है। एकरा से लोकल से वोकल आओ ONTC माने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नियन जे डिजिटल प्लेटफॉर्म है ओकर उपयोग करके सीधे सीधे राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी पहुँचल जा है। PMFME ये वो योजना है। एकरा में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम के 10 लाख तक और स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य 40,000 के बीज पूंजी देल जा है। खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से इकाई स्थापित करे लेल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी उपलब्ध है। खाद प्रसंस्करण के मुख्य लक्ष्य खाद सुरक्षा बर्बादी के कम करना और किसान के आय में वृद्धि करना है। तो हमने एकरा पहने की आर आगू बढ़िए। अभी मेघ जब तनी देरिए सही लेकिन मानसून है या मेघ पड़बे कैले हैं तो हमने आय के कार्यक्रम में पहल जो लोकगीत है वो बरसाती विधा के सुनबे कलाकार हथिन अनिल कुमार अकेला।

0: तऽ बरसातके मौसम अयलै, हमनी लेल कजरी सुनैके मौका, झूला झूलैके मौका सब लेके अयलै हैं। तऽ एकरेसँ सम्बन्धित एगो हमनी तनि बातचीतके आगू बढ़ाबैयै कि मानसूनके एते महत्तम काहे है, हमनीके खेती किसानीमे भी मानसूनके ओतने महत्तम है। भारतमे जे खेती किसानीके लेल मानसून है ओ जीवन रेखा कहल जा सकै है। मने देशके 50% से ज्यादे जे कृषि क्षेत्र है ओ एकदमे से बरसे पर निर्भर है, आ ज्यादातर खरीफ फसल धान होलन, मक्का होलन, सोयाबीन, ई सब लेल पानि बहुत जरूरी है। जब मेघ पड़ै है तब भूमिगत जल के स्तर बढ़ै है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आ खाद्य सुरक्षा के भी स्तर बढ़ै है। भारत में होवे वाला कुल वार्षिक वर्षा के लगभग जो 75% हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से मिला है, जो जून से सितंबर तक ज्यादा सक्रिय रहा है। धान, कपास, दलहन, तिलहन नियन जो प्रमुख खरीफ फसल है, एकर बुआई जो है सीधे मानसून के आगमन आ ओकर स्थिरता पर निर्भर करे है। वर्षाक जो पानी है वो मट्टी से रिस के कुइया, नलकूप, तालाब के जलस्तर के भराव के बढ़ावा है। मानसून के बाद आबे वाला रवि के फसल के सिंचाई लेल भी पानी के ही मुख्य स्रोत रहा है। प्राकृतिक सिंचाई से कृषि लागत में कमी आवे है। वर्षा के पानी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन आ दोसर जरूरी पोषक तत्व पौधा के जड़ तक बिना कोनो प्रयास के, अतिरिक्त प्रयास के पहुँच जाए है। खेत में जब नमी रहा है तो प्राकृतिक खाद बना है, ई मट्टी में ह्यूमस के स्तर के बढ़ा के रखा है। मानसून के सीधा संबंध ग्रामीण रोजगार से है, ज्यादा वर्षा से उत्पादन, रोजगार, आमदनी, खरीद के शक्ति ये सब बढ़ के देश के समूचे आर्थिक वृद्धि में योगदान करे है। आ अब हमनी एगो आगू बढ़ के सुनिए वार्ता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। वार्ताकार हथिन हेमा कुमारी।
1: आइका समय में महिला के शिक्षित होना बहुते जरूरी है। अगर एक महिला शिक्षित होब है तो एक परिवार शिक्षित होब है। जब महिला शिक्षित रहता तब ने अपन बाल बच्चा के सही रास्ता देखता। समाज के विकास ले महिला के स्वस्थ, खुशहाल, समझदार, व्यवहारिक आउ बुद्धिमान होना जरूरी है, जे शिक्षा से ही संभव है। महिला के अपन स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आउ शैक्षिक दृष्टिकोण से सशक्त होते तभी वो परिवार, समाज आ देश के विकास में सहयोग दे पैथिन। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के पहला सीढ़ी है। ई कहल जा है शिक्षा ही उ साधन है जकरा से महिला समाज में अपन सशक्त उपयोगी भूमिका निभा पैथिन। शिक्षा से ही महिला में दक्षता, हुनर आउ क्षमता के विकास हो सके है। महिला के शिक्षित होबे से खाली अपने नए उनखा से आबे वाला पीढ़ी भी खुशहाल होते। अगर महिला शिक्षित होथिन त उनखा शोषित, प्रताड़ित नहीं कैल जात। महिला के कोई भी निर्णय लेबे के हौसला बढ़त, जे सशक्तिकरण के सीढ़ी है। कहल जा है महिला के वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज आउ देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होबे है। शिक्षा ई जिंदगी के कुंजी है, जेकर काम है उजाला करे के आउ अंधेरा मिटवे के। अगर समाज के वास्तविक स्थिति जाने के है त हम महिला के शैक्षिक स्थिति कैसन है

ओकरा की अधिकार मिलल है राजनीति असामाजिक निर्णय लेवे में ओकर कत्ते सहभागिता है। ई सब महिला के शिक्षा विकास के एगो महत्वपूर्ण अंग है जे महिला के समाज में ऊपर उठावे में मदद कर रहल हैं। सरकार भी मैया के शिक्षा आउ मैया के सशक्तिकरण ले योजना चलैलका हैं। ई योजना से मैया के हौसला बढ़ल हैं। सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आउ अल्पसंख्यक जाति के मैया ले आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शुरुआत कैलका हैं। शिक्षा से ही महिला में अपमानजनक आउ मानवीय परिस्थिति के विरोध करे के ताकत मिलत। शिक्षा नहीं हो तो मैया आगे नहीं बढ़ पैथिन। शिक्षा के चलते ही महिला अपन बारे में सोचे समझे लगलखिन हैं। महिला के शिक्षा विकास में बहुते बाधा भी आ रहल हैं जे ई सब है लैंगिक भेदभाव पारिवारिक परंपराएं पर्दा प्रथा बाल विवाह निर्धनता सामाजिक आर्थिक पहलू आदि। ई समस्या के दूर करेले इनका शिक्षित होबे पड़तन तभी तो महिला के सशक्तिकरण संभव है। शिक्षा के कारण ही महिला कत्ते कुरीति से उभर पैलखिन है जे ई सब है अंधविश्वास जादू टोना धार्मिक भेदभाव आउ छुआछूत बेटा बेटी के शिक्षा में भेदभाव नहीं करथिन। महिला शिक्षा ले पाठशाला के घर से भौगोलिक दूरी कम करे के है। संगठित आउ असंगठित ई दुओ जगह पर जहाँ महिला काम कर हथिन वहाँ बाल घर के बनबल जाए ताकि मैया के स्कूल छोड़ के अपन भाई बहन के देखभाल नहीं करे पड़े। सामाजिक दृष्टिकोण से महिला समाज जे रूप में समाज में सहयोग दे रहलखिन हैं शिक्षा के पूर्ण प्रताप से ही सरकार के सहयोग से सामाजिक जीवन में शिक्षा के प्रसार से आज जे सामाजिक परिवेश बनल हैं ओकरा में बदलाव आल हैं उ नजर आ रहल हैं। अब बाबू आउ मैया में भेदभाव कम हो गेल हैं। समाज के बहुसंख्यक परिवार में ई सोच जगल हैं कि मैया के भी पढ़ावल जाए। पहले लोगन सब पेट काट के मैया के ब्याह ले पैसा जमा कर हलखिन। आज के दौर में मैया के पढ़ावे खातिर पैसा जमा कर रहलखिन हैं। सरकार जे मैया के पढ़ाई पर निःशुल्क शिक्षा अभियान चलैलका हैं ओकरा में सरकार मंगनी में पोशाक पढ़े ले किताब आउ स्कूल जाए ले साइकिल दे रहला हैं। महिला में ई भरोसा हो रहल हैं कि अब हम केकरो पर बोझ नहीं हूँ। शिक्षा के बदौलत ही महिला के जीवन में सुधार हो रहल हैं। देश स्तर पर जत्ते भी संरचना है वहाँ अब महिला के उपस्थिति देखे ले मिला है। न्याय के क्षेत्र में हो या राजनीति के गलियारा में चाहे सरहद के कठिन से कठिन क्षेत्र हो व्यवसाय के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में हो आज के महिला सभ्य क्षेत्र में अपन सहयोग दे रहलखिन हैं। ई महिला सशक्तिकरण के कदम ताल के परिचायक है। अब सोचो ने एगो दौर हल जब महिला समस्या पर साहित्य के क्षेत्र में चर्चा मर्द साहित्यकार कर हलखिन
आय

0: इस समस्या पर कत्ते महिला अपन अनुभूति के आधार पर चर्चा कर रहलखिन हैं। समाज के सोच बदले में ऐसन साहित्य के भी योगदान है। आधी आबादी के रास्ता तो मिल गेल हैं, लक्ष्य हासिल करे में अभी आरो सुधार के जरूरत है। शिक्षा के माध्यम से ही आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति होत। ई एगो बड़ा सवाल है कि धन से कमजोर होबे के कारण लोग महिला के मजबूर बुझे हथिन, ओकर मजबूरी के नजायज फायदा उठबे हथिन। ई समस्या से निकले ले महिला समाज के शिक्षा के माध्यम से हुनर हासिल करे में सहायता मिले है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर ऐसन कत्ते योजना चल रहल हैं जेकर माध्यम से महिला समाज आर्थिक रूप से सबल हो सकलखिन हैं। महिला ले कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण सरकार चलेलखिन हैं, प्रशिक्षण केंद्र के जे विस्तार होल हैं ओकरा में ऐका युवा महिला पीढ़ी के जुड़ाव के आवश्यकता है। ई सबसे इहे लगा है कि जैसे जैसे महिला शिक्षित हो रहला हैं वैसे वैसे उ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहला हैं। महिला और मर्द दोनों रथ के पहिया के समान हथिन। एगो कमजोर पड़थिन त समाज रूपी रथ आगे नहीं बढ़ पैथिन। इले महिला के सशक्तिकरण में शिक्षा के अहम योगदान है।
1: तो शिक्षा कैसे हमनी के सशक्त बनाबे है, खासकर महिला के संदर्भ में? तो वार्ता कर रहलखिन हेमा कुमारी, आ वार्ता के विषय हले शिक्षा आउ महिला सशक्तिकरण। हिनका ई वार्ता लेल दही धन्यवाद। आ अब हमनी सब लोकगीत तो सुनबे करबे आ समसामयिकी पर भी बातचीत कैने चलबे। कल है मने जे बीत गले दिन 6 जुलाई के जगजीवन राम के पुण्यतिथि हले। हिनका पूर्ण रूप से बाबूजी कहल जा हले। ई भारतीय राजनेता आ भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री आ एगो स्वतंत्रता सेनानी हलखिन, संविधान सभा के सदस्य हलखिन। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में हिनकर कार्यकाल 1970 से 1974 तक रहलन आ 1977 से 1978 तक रहलन। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में 1977 24 मार्च से 28 जुलाई 1989 तक रहले। साथ ही साथ आए जे है आए है साथ कल्हे हलन महान शिक्षाविद राष्ट्रवादी विचारक का भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती 6 जुलाई के मनवल जा है। हिनकर जन्म 1901 में कोलकाता में होलन हल। ई 33 वर्ष के आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे मने युवा कुलपति बन गेलखिन हल। स्वतंत्र भारत के पहला उद्योग आ आपूर्ति मंत्री हलखिन। एक देश एक विधान एक प्रधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय लेल ई अपन जीवन न्योछावर करलखिन। वर्ष 1951 में ई भारतीय जनसंघ के स्थापना करलखिन जे आगू चल के भारतीय जनता पार्टी बनले। त समसामयिकी में आर महत्वपूर्ण जानकारी देवन। अब हमनी बढ़े आगू आ कलाकार अनिल कुमार अकेला से सुनइए ई शिव भजन।

अनिल कुमार अकेला से हमनी सुनलिए ई गीत, हिनका आय के लोकगीत लेल धन्यवाद दहिए। आ परसू माने कि बीतलका जे 5 जुलाई हलन, तीजन बाई के निधन हो गेलै। तीजन बाई जे हलखिन छत्तीसगढ़ के लोक कला आ पंडवानी गायन के पूरे दुनिया में बहुत महत्तम जे भूमिका है ओकरा पहचान दिलावे में अदा कर रहलखिन। दुर्ग जिला के गनियारी गांव में पारधी समुदाय में ई जन्म लखिन हल। गायन चूंकि गाथा के गीत के रूप में गाव हलखिन तो ई लेल हिनका समाज से बहिष्कृत करल गले। बड़े दिन तक आर्थिक तंगी के सामना करलखिन, लेकिन एकरा प्रति ऐसन हुनकर प्रतिबद्धता हले कि 7 समुंदर पार तक हिनकर आवाज आ पंडवानी के गीत पहुँचले। हिनकर पिता के नाम हुनुकनाल पारघी आ माता के नाम सुखवती हलन। ई तीज के दिन जन्म लखिन हल तो उहे से हिनकर नाम तीजन बाई पड़ गलन। ऐसे मोटा मोटी हिनकर जन्म

के तो नए सही तिथि नहीं पता है, लेकिन तीज के त्योहार के दिन ही जन्म लखिन हल आ 1956 के बरस हली। हिनकर नाना हलखिन ब्रजलाल, ई उ बच्चे से हिनका महाभारत के कहानी सुनब हलखिन आ इहे हुनकर पंडवानी गायन के आधार बन गेलै। 21 दिन में ई महाभारत के सभे जे 18 गो पर्व है ओकरा कंठस्थ कर लेलखिन। बाद में लोक कलाकार उमेद सिंह देशमुख हिनका प्रशिक्षण दलखिन पंडवानी गावे के। 13 बरस के उम्र से में ई पहिल बेर पंडवानी गायन के प्रस्तुति दलखिन हल। तखने जे हले खाली जे महिला पंडवानी गायिका हलखिन उ बैठ के गाब हलखिन, एकरा वेदमती शैली कहल जा हले। तीजन बाई पहला महिला हलखिन जे कपालिक शैली में पंडवानी के प्रस्तुति करे लगलखिन। ओकर बाद पेरिस, लंदन, टोक्यो तक ई मने सौंसे दुनिया में कथिन कि छाल रहलखिन। तीजन के जीवन के ई निर्णायक मोड़ हले जब हुनका हबीब तनवीर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने राष्ट्रीय फलक पर प्रस्तुत करलखिन। एकर बाद श्याम बेनेगल के श्रृंखला भारत एक खोज हुनका घर घर में पहचान दिलेलकन। ऐसन सेल जे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ओकर पहला महिला कर्मचारी हलखिन जिनका पद्म सम्मान मिल रहल। अब कहथिन कि पंडवानी गायन कौन चीज है, तो पंडवानी गायन जे है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत है, लोक गाथा है, जेकरा में महाभारत के प्रसंग के प्रभावशाली कथा वाचन लोक गायन आ संगीत के साथ जीवंत रूप में प्रस्तुत करल जा है। आय हन रेबीज के टीका के जे शुरुआत होला हल 1885 में 6 जुलाई के, वैज्ञानिक लुई पास्चर एकर प्रयोग करलखिन हल। आ अब हमनी के समय ओरिया रहलन है, तब विदा देथिन, जल्दी मिलबन फिर, प्रणाम।

मागधी, अभी आप ये मगही कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 6:30 पर और शाम 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

7:30 पर प्रादेशिक समाचार और 7:47 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा।

7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा से भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे अनूप जलोटा। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या। 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नौ बजकर 30 मिनट पर आज आप सुनेंगे एक नाटक।

लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। दस बजकर 30 मिनट पर पुनः आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीमावर्ती जिला सभ के घुसपैठ मुक्त बनावे के सरकार के प्रतिबद्धता दोहरौले बाणे। श्री चौधरी आज अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जुटल जन समुदाय के संबोधित करत रहले। उ कहले कि राज्य में घुसपैठ आतंकवाद आ अपराध खातिर कौनो जगह नहीं खे। श्री चौधरी कहले कि सहयोग शिविर आम लोगन के समस्या के तुरंते समाधान के एगो प्रभावी माध्यम बन के उभरल बा। उ बतौले कि यह शिविरन के माध्यम से अबही तक 453,000 लोग के आवेदन कैले बाणे। एमे मात्र 27,000 आवेदन लंबित बा। ए मौका पर मुख्यमंत्री सहयोग शिविर में लोगन के समस्या सुने आ एकरा जल्दी समाधान के निर्देश देहले। प्रदेश में अब राज्य सरकार के मालिकाना हक वाला राजमार्ग बड़का पुल बाईपास आ सुरंग पर टोल टैक्स देवे के पड़ी। परिवहन विभाग पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के अधिसूचना जारी करके नया टोल नीति लागू करे के कहले बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़े कि नया टोल नीति के तहत खाली कमर्शियल गाड़ी सबके ही टोल टैक्स देवे के पड़ी। निजी गाड़ी के कोनो प्रकार के टोल ना देवे के पड़ी। एने संवाददाता बतौले कि अलग अलग सड़कन खातिर अलग अलग श्रेणी से टोल टैक्स तय कैल गईल बा। भाजपा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर अभिषेक कुमार के अपन उम्मीदवार बनौले बा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ए संबंध में चिट्ठी जारी करके ई बात बतौले। अभिषेक कुमार पटना महानगर के बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकल बाड़ेन। जनसुराज प्रशांत किशोर के और आरजेडी रेखा गुप्ता के अपन उम्मीदवार बनौले बा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बांकीपुर सीट छोड़ला के वजह से ई सीट खाली भइल रहे। पटना में 10 जुलाई के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के एगो जरूरी बैठक आयोजित कल गई बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में होखे वाला यह बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सौंसे वरिष्ठ नेता शामिल हुई हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बतौले कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श कल जाय। एकरा अलावा

गठबंधन से जुड़ल औरी दूसर राजनीतिक आ संगठनात्मक मुद्दन पर भी चर्चा हुई। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 11 आ 12 जुलाई के गया जी में विधायक लोगन के 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बतौले की प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत औरी गणमान्य लोग उपस्थित रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म आ एयर टूरिज्म योजना के नाम पर

0: आवेदन स्वीकार कइल जाय। विभाग लोग से थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहे एजेंट के माध्यम से बुकिंग या पैसा ना देवे के अपील कइले बा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूर्वी चंपारण जिला के फेनहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नाम के एगो आदमी के घर छापेमारी कैले बा। जांच एजेंसी ओकरा से करीब 5 घंटा तक लंबा पूछताछ कैलस। मिलल जानकारी के मुताबिक मोहम्मद कलामुद्दीन पर लइकन सन के झांसा दे के कम्बोडिया भेजे के आरोप बटे। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गई बा। प्रदेश भर में रुक रुक के बरखा बरसता। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगला एक हफ्ता तक बरखा खातिर अनुकूल माहौल बनल बा। विभाग बिहान अररिया किशनगंज मधुबनी सुपौल कैमूर जिला में कुछ जगहन पर भारी बरखा बरसे के चेतावनी जारी कैले बा। राज्य के दूसरा हिस्सन में भी भारी बारिश के अनुमान बा। पूर्वी चंपारण जिला के हरपुर थाना इलाका से एसएसबी और पुलिस के टीम मिल के यूक्रेन के एगो मेहरारू के गिरफ्तार कैले बा। वो मेहरारू बिना कोनो वैध कागजात के नेपाल में घुसे के कोशिश करत रहे। पटना मेडिकल कॉलेज में नर्स स्टाफ जूनियर डॉक्टरन के खिलाफ नारेबाजी करते काम के बहिष्कार कैले बाड़ी। नर्स लोग जूनियर डॉक्टरन के ऊपर मारपीट करे और बदसलूकी करे के आरोप लगौले बा। नर्स सब जूनियर डॉक्टर से माफी मांगे के कहलस। दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंचल नगर गांव में एगो निर्माणाधीन चार दीवारी के पास बम विस्फोट हो गई। धमाका में 2 गो लोग घायल हो गई बा, जिनकर इलाज डीएमसीएच में चल रहा बा। पुलिस पूरा मामला के जांच कर रहा बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान को बंटी और बबली फिल्म से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लाय।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे। और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

अगला गीत आइए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से उदित नारायण की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक शान्ति स्थिरतायै भारत इण्डोनेशिया देशयोर रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम्। जकार्तायाम् इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान्। भारत इण्डोनेशिया देशयोर मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख सन्धिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिन्तङ्ग् आदिपूर्ण इत्युपाधिना समलंकृतः। केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे एकस्मिन् सुरंग मार्ग निर्माण स्थले संजातेन दारुण पंकपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्व सूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात हरियाणा पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीये तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक सन्धेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचार विनिमयम् अकारि। द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। उभाभ्याम नेतृभ्याम जकार्ता नगरे भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता। संभाषणावधौ उभाभ्याम भारत इण्डोनेशिया व्यापक रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता। जकार्तायां राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः।
2: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त

0: करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशन साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
1: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इंडोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्धशतकोटि जनेभ्यः समर्पितः।
0: सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: इतः प्राक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायां इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
0: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माण स्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यंतं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्य आरक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां सम्बोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप प्रेसिडेंट कप शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां हरितक्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारम्भं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे सम्बोधयन् श्रीशाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपनसंकल्पः दिल्ली पर्यावरणतन्त्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्यमन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकास

0: विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यन्त्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टि उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिन 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्यप्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्नाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंघम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

0: नमस्ते दिव्या बहन।
1: नमस्कार विनीता बहन, एगो हम बात तोरा से कहल चाहे।
0: हाँ, बोला।
1: जैसन जैसन मौसम बदली थे, कभी हाँ। मतलब जाड़ा तो कभी बरसात तो कभी गर्मी लगे थे, उहे तोरा से तू भाई रम झम एकदम झमाझम हो जाए था।
0: हाँ,
1: तू बदले था
0: जरूरी देखे। एक बार एक तो बरसात के मौसम देखा तनी की बा, लेकिन आवत नहीं है बरसात।
1: हाँ,
0: वही तरह हम हूँ सोचे तनी कि कुछ लाल पियर हरियर कम से कम कुछ तो रंगीन लागे के चाहिए।
1: हाँ हाँ, अभी लाले लाल लग हरियर में एक महीना बाकी अब।
0: हाँ, हरियर में भी एक महीना नहीं खे दीदी, अभी और कम हो गई बा।
1: हाँ, देखिन पिछला कुछ साल में हमने के मौसम के भाई बदलत स्वरूप के बहुते करीब से महसूस कैली है। तो कभी गर्मी तो कभी मतलब पानी कम है तो कभी भाई ज्यादे है तो कभी बाढ़े है तो कभी सुखाड़ है, ऐसा परिस्थिति सामान्य होतल जा रहा है। तो एक में जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव है
0: एकदम। देखा तो नहीं पहले के जमाना में सुने में आवत रहे कि जब रोहिणी नक्षत्र चढ़त रहे तो किसान खेत में उतर जाता रहा, आ समय पर बरखा होत रहे, समय पर जार और समय पर लू चलत रहे। लेकिन
1: हाँ।
0: अब तो मौसम के कौनो माई बाप नहीं खे रह गए। देखते बनी जब जरूरत बा बरसात के, यहाँ किसान रोत रहे से भाई रोपनी नहीं खे होकर धान के कम रोपाई होकर।
1: हाँ।
0: हाँ, हाल बा कि बरसात होत नहीं खे।
1: पहले भाई खाद उद के कम व्यवस्था हल, कृषि में कम व्यवस्था हल, तभी भाई ज्यादा अथी होबल है ना। लेकिन अब मतलब बदलत मौसम के चलते एकरा में कमी हो गया तो वो खराब हो गया तो ये बढ़िया हो गया है कि ना।
0: बिल्कुल।
1: तो देखते जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़ कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैस में बढ़ल मात्रा है। तो वाहन के धुआं, उद्योग से निकले वाला धुआं, वन के अंधाधुंध कटाई और जीवाश्म ईंधन के ज्यादा उपयोग से पृथ्वी के तापमान लगातार बढ़ रहा है। यही सब हमने इतना एसी चला रही है, घर में रही नग रही फ्रिज चला रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ तक कि हमने जो फैशन लगी परफ्यूम जो जगह सेंट इतर कल जाए वो अपना छिड़क रही है, ओकरों से ओजोन लेयर पर भी एक असर पड़ा है।
0: वो तो एकदम
1: सही। तो कोशिश करते हैं कि घर में भी छोट छोट पौधा बहुत सारा रखते हैं कि इतना ये सब के जरूरी नहीं होवे।

0: एकदम कर रही है कि भाई खिड़की बंद रहा है, ऐसा घर में रह रही है, सब पैक करा दली है, तो
1: हाँ
0: भाई तनी बाहरी हवा भी जरूरी है
1: एकदम
0: ना।
1: सही कहानी रुआ। तो देखिए साथे साथ रुआ बात कही नहीं कि जलवायु परिवर्तन तो एक प्रभाव देखे में आवता कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों के तबियत पे बहुत असर पड़ा।
0: हाँ
1: अब बात बा कि जब आपन आवश्यकता के हिसाब से आपन शौक के हिसाब से देखते बनी लोग अपन घर में उतने काम करवा रहल बा लकड़ी के, ओकरा चलते
0: हाँ
1: खूब कटाई होता, तो जलवायु परिवर्तन तो लाजमी बा कि होखबे करी।
0: हाँ देख
1: आपन
0: दिन
1: सुख सुविधा खातिर जब हमनिन के ई चीज के ना देखम जा, पर्यावरण के रक्षा ना करम जा, तब बाद में वो कष्ट तो देवे करी हैं।
0: हाँ ये है देखते एक सबसे ज्यादा असर कृषि पर पड़ल है। समय पर बरसात नहीं होला से किसान के फसल प्रभावित हो रहा है, तो कहीं बाढ़ से खेत जलमग्न है और कहीं सूखा के चलते सिंचाई के संकट पैदा हो रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: एकरा से किसान के आय और खाद्य सुरक्षा दोनों प्रभावित है भाई। हमनियो बड़े असर है, ये ना कि
1: बिल्कुल
0: है कि
1: बिल्कुल
0: किसाने भाई के है।
1: हाँ एकदम बा बात सही कहता नहीं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो बा हमने इनके स्वास्थ्य पर अगर देखल जाओ कि पड़ रहा बा, तो बढ़त गर्मी से देखता नहीं कि लू लगे के घटना कतना बढ़ल चल जाता।
0: हाँ
1: अब मच्छर से जो फैले वाला रोग होला जैसे डेंगू हो गई, मलेरिया हो गई, वो हो तेजी से फैलेला, तो दूषित जल के कारण भी बहुते तरह का बीमारी बढ़ जाला। तो ये जल संसाधन पर भी एक गहरा प्रभाव देखे के मिल जाला। भूजल स्तर
0: हाँ
1: लगातार नीचे जा रहा बा, कतना क्षेत्र में तो बा पेयजल के संकट गहराता। समय रहत अगर जल संरक्षण भ गइल, वायु संरक्षण, मृदा संरक्षण, ये सब चीज पर ध्यान ना देवल जाए, तो जलवायु परिवर्तन जोन बा वो आपन कहर ऐसे ही बरपावत रही।
0: और हमने देखते इनमें कितना बतावित भी रही है कि भाई बरसात होवे तो कैसे पानी के जमा रखथिन, कैसे ओकरा
1: बिल्कुल
0: दोसर उपयोग करथिन, है कि ना।
1: एकदम सही। और बरसात के पानी के बात कहनी जमा करे के, तो वो तो भगल जल संरक्षण पे बात बा कि बरसात के पानी के जमा करे के एगो तरीका होके के चाहिए, लेकिन
0: हाँ
1: साथ ही अगर बारिश में पानी उनी बा कूलर में, चाहे कोनो टूटल टाटल डब्बा में, टायर में पानी जहां तहां जम जाए, तो ओकरो निकासी जरूरी बा। ऐसे काहे कि ओही में फिर जाके डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपेला।
0: हाँ भाई
1: तो
0: बरसात है,
1: आस
0: सब पर
1: पास में,
0: ध्यान देवे
1: हाँ
0: के है।
1: आस पास में ये जरूरी बा कि वैसन स्थिति में किरासन तेल डाल के ओकरो के मच्छरों में ना पनपी मर जाए, तो उस सब पर भी ध्यान देवल जरूरी बा।
0: हाँ अब एक और जरूरी बात है
1: हाँ
0: कि भाई अब कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है तो लोक भजन सुनाबा हथिन,
1: एकदम सही। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जरूरी बा कि हमने इनके श्रोता लोग इनके मन भी
0: मन
1: तनी
0: भी।
1: परिवर्तित हो
0: हाँ
1: खत रहे, तो कहे ना सुनाओ जाओ लोक भजन सतीश कुमार शर्मा जी और उनकर साथी के आवाज में,
0: सुना जाए।
1: सुनी सभी गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विनीता बहन, अब सुनथिन वार्ता सांप्रदायिक सद्भाव आज की आवश्यकता। वार्ताकार हथिन मनोज कुमार।
2: सुने सबे पहले ही वार्ता के।
3: सांप्रदायिक सद्भाव आज के समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी देश और दुनिया में जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, वहां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और प्रगति के लिए आपसी भाईचारा बेहद आवश्यक है। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से यह सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमने सदैव वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे महान आदर्शों को अपनाया है, उसकी राह पर चले हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद उपनिषदों ने भी संपूर्ण धरती एक परिवार है और हमें धर्म

नस्ल या राष्ट्रीयता के भेद को भुलाकर सभी के साथ दया और सम्मान के साथ जीने की शिक्षा दी है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और समुदायों के बीच प्रेम, भाईचारा, विश्वास, सहयोग और परस्पर सम्मान की भावना ही सांप्रदायिक सद्भाव का मूल मंत्र है। वर्तमान समय में यह केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और विकास की आधारशिला है। आज जब विश्व के अनेक देशों में धार्मिक कट्टरता, नस्लीय भेदभाव, असहिष्णुता और हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ रही है, ऐसे में भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश का महत्व और भी बढ़ जाता है। विविधताओं से भरी इस भूमि पर, जहां कदम कदम पर भाषाएं, पहनावे और पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं, वहां सांप्रदायिक सद्भाव केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि राष्ट्र की शांति, प्रगति और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सांप्रदायिक सद्भाव समाज में शांति, सुरक्षा और आपसी विश्वास स्थापित करता है। जब विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के रहन सहन, भाषा, संस्कृति और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनता है। इससे सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक उन्नति भी संभव हो पाती है, राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और देश विश्व के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर पाता है। वर्तमान समय में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए लोगों को यह समझना होगा कि धर्म, भाषा और पहनावे अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यह विचार करें। भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विविधताओं के समन्वय की संस्कृति रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा अन्य समुदायों ने मिलकर भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाया है। विभिन्न धर्मों के लोगों ने साहित्य, कला, संगीत, वास्तुकला, शिक्षा और सामाजिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। यहाँ दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, छठ और अन्य पर्व त्योहार सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। यह परंपरा बताती है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में ही निहित है। आज देश के विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक सद्भाव पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज का युग विज्ञान, सूचना और तकनीक का युग है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव आज सर्वव्यापक है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। अच्छी सूचनाएं और लोगों को जोड़ने का कार्य तो ये कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ झूठी खबरों, अफवाहों और भ्रामक खबरों का प्रसार भी तेज हुआ है। सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण कई बार समाज में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। छोटी सी गलत सूचना भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। कई बार कुछ स्वार्थी अपराधी तत्व धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। चुनावी राजनीति में ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कट्टर विचारधाराएं और सामाजिक असमानताएं भी कई बार सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसे समय में सांप्रदायिक सद्भाव समाज को टूटने से बचाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में सांप्रदायिक सद्भाव एक नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने में आज कई तत्व जिम्मेदार होते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थ, अफवाहें, सोशल मीडिया पर दिखने वाली झूठी खबरें और इतिहास की गलत व्याख्या प्रमुख हैं। सही शिक्षा और उचित जानकारी के अभाव में लोग अफवाहों और भड़काऊ प्रचार का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए धर्म का उपयोग कर समाज में नफरत फैलाते हैं और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करते हैं, जिससे समाज धार्मिक आधार पर बढ़ता है, भाईचारे की भावना समाप्त होती है और समाज हिंसा, दंगे, आगजनी का शिकार होता है। फलस्वरूप जन धन की हानि होती है, परिवार उजड़ते हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, व्यापार, उद्योग, पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और देश की विकास गति धीमी हो जाती है। सांप्रदायिकता केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय एकता का आधार केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, बल्कि नागरिकों के बीच विश्वास, समानता और सम्मान भी होता है। यदि देश के लोग धर्म, जाति और भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ जाती है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया है।
स्वतंत्रता सेनानियों ने यह संदेश दिया है कि देश की आज़ादी और प्रगति किसी एक धर्म की नहीं बल्कि सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। आज भी यदि हमें भारत को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है, इसे विकसित, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है।

0: तो सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में शिक्षा, परिवार एवं समाज, सोशल मीडिया, युवा, सरकार और प्रशासन, इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, मानवाधिकारों, समानता, सहिष्णुता, हमारे नैतिक मूल्य, सामूहिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न धर्मों के महान व्यक्तियों के विचारों से अवगत कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में अन्य समुदायों के प्रति सम्मान व भाईचारे की भावना विकसित होती है। शिक्षित समाज अफवाहों और कट्टर विचारों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है। परिवार और समाज भी सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूती के आधार स्तंभ हैं। यदि परिवार में सभी धर्मों व समुदायों के प्रति सम्मान का वातावरण होगा तो बच्चे भी उसी भावना को अपनाएंगे। समाज के बुद्धिजीवी, धार्मिक नेता, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया भी लोगों को प्रेम, सहयोग और शांति का संदेश देकर सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बना सकते हैं। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में सभी समुदायों की सहभागिता होने से आपसी विश्वास विकसित होता है। सरकार और प्रशासन का भी दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे तथा कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करे, क्योंकि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता और समान अधिकार प्रदान करता है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी युवा आबादी है। यदि युवा आपसी प्रेम, सहयोग और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सकारात्मक सोच से जुड़ जाएं तो सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूती अक्षुण्ण हो जाएगी, बल्कि युवाओं को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव से दूर रहना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या नफरत फैलाने वाली गतिविधियों का विरोध करना चाहिए। आज सोशल मीडिया सूचना के एक बड़े माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके माध्यम से समाज में, देश में सकारात्मक संदेश भी फैलता है और नकारात्मक भी। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर चलती खबरों को बिना सत्यापन साझा न करें। मीडिया को भी निष्पक्ष, जिम्मेदार और तथ्यपरक पत्रकारिता करनी चाहिए। सरकार को भी ऐसी नकारात्मक खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया के लिए मापदंड तय करने चाहिए। उन पर त्वरित कार्रवाई कर ऐसे लोगों को दंडित करना होगा जो भड़काऊ समाचार, झूठी जानकारी और नफरत फैलाने वाली सामग्री समाज में परोसते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। यदि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, संविधान के मूल्यों का पालन करें, अफवाहों से बचें, शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर बल दें, मानवता को सर्वोपरि माने, तो हमारा देश और अधिक शक्तिशाली और संपन्न होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म के नाम पर विभाजन व अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा न दें, बल्कि मानवता के आधार पर एकता को बढ़ावा दें। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि देश की उन्नति तभी संभव है जब शांति, भाईचारा और विश्वास का वातावरण बना रहेगा। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव केवल एक सामाजिक आदर्श नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की अनिवार्य शर्त है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, यही संदेश भारत की आत्मा है और यही हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति भी।
1: वाह, बहुत नीमन जानकारी मिलल।
2: बहुत बढ़िया से समझा के हमने इनके वार्ता के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव आज की आवश्यकता है वार्ता का विषय रहे। पर हमने इनके वार्ताकार मनोज कुमार जी बहुत बढ़िया से समझौले, तो सबसे पहले तो हमने इनका बहुत बहुत धन्यवाद दे दी है।
1: भाई श्रोता लोग इन तो समझबे कैलन, मगर तू बतावा कि भाई तू कुछ समझला कि न एक से।
2: बहुत बढ़िया से समझनी है, यही चलते हम ऐसे हूँ बिना ये वार्ता के पहले से भी बहुत सद्भाव में रहेला हम।
1: हाँ,
2: भावना कूट कूट के हमारा में भरल बा,
1: मगर ये वार्ता से कह समझला।
2: व्यवहारता से समझनी कि आपस में मिलजुल के प्रेम से, स्नेह से रहे के चाहिए।
1: हाँ, बस हमरा से लड़ित रही
2: ना, ना रोहो से हम कभी ना लड़ेला। रोहुआ से लड़ती तो बताई सभी केहू कहेला कि एकदम आज लागल बा जोड़ी।
1: हाँ तो जोड़ी लागल है तो भाई झूमर उमर सुनावा कुछ।
2: हाँ एकदम, अब जो बातें कर देनी तरह हंसावे के पड़ी नु, तो चलिए सुनल जाओ सतीश कुमार शर्मा साथी के आवाज में झूमर के, श्रोता लोग इनके साथ साथ रघु अपन मन मन सावन कर।
1: हाँ झुमा ही था।

0: मोरा धानी रे चुनरिया दगिया लागे गेले न, बहुत बढ़िया झूमर हले। हाँ मगर देखथिन भाई, बरसात के मौसम है तो एक साथ बरसाती झूमर सुनल जाए इनके से।
1: हाँ मन एगो झूमर से ना भरल त ठीक बा, हमहू तैयारी कैले बनी, दूसर को झूमर लगले रोगा के सुना देतनी।
0: हाँ
1: तो सुनिए झूमर के आनंद उठाई।

0: ये बरसात में बरसाती झूमर सुन के बहुत भाई मन झूम गए।
1: अब मन खुश भइल नू। अब कोई शिकायत नहीं
0: हाँ,
1: के नू।
0: कोई शिकायत नहीं
1: चाहे
0: है।
1: हमारा ये तो चाहत रहे कि कोई शिकायत ना रह जाए के चाहे।
0: हाँ, कहे कि एक साथ साथ
1: हाँ,
0: चौपाल के समय
1: चौपाल के समय अब संपन्न हो रहल बा, खेती गृहस्थी में आगे बढ़े के समय हो चुकल बा।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हाँ विनीता बहन, देखती भाई किसान भाई की तो बात करबे करम,
1: हाँ।
0: मगर ये बरसात के जब हमने सब बात कर रही है तो भाई बरसात में बैगन के पकौड़ी, बैगन के भरता, मतलब सतुतु भर के बनावा आग पर के लिट्टी,
1: अच्छा।
0: अंगोरा पर के तो कितना बढ़िया लगा है।
1: बैगन के बहुत चीज देखी, बैगन के भरवा भी बनेला।
0: हाँ, सब्जी बना है, चटनी बना है,
1: सब्जी भी बन जाला। लेकिन हम समझे तनी राहुल कहे के मतलब कि हमने आज किसान भाई लोग खातिर लगा था कि यही सब्जी के किस्म के बात बतिया है।
0: हाँ, तो देखी ना जी, बात करम बैगन के किस्म पर। तब बैगन भारत के प्रमुख फसल में से एक है। एकर बहुत सारा किस्म, आकार, रंग, उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर विकसित कल गई है। और खास करके देखते हैं बिहार सहित पूर्वी भारत के लेल पूसा पर्पल लॉन्ग्स, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्रांति, स्वर्ण मणि, स्वर्ण शक्ति, काशी तरु, काशी शंकर 8 और राजेंद्र बैगन 1 जैसन किस्म किसान भाई के बहुत लोकप्रिय है।
1: बिल्कुल सही कहानी है। देखिए अगर बात आप रुआ करो तो नहीं किस्म के तो एक और किस्म हम कहल जा हम पंत ऋतुराज। ई बैगन गोल होला, एकदम चटक बैगनी रंग के।
0: हाँ।
1: खास बात ई बा कि एकरा के रुआ साल में 2 बार बो सकेला, एगो अषाढ़ सावन में भी और एक कार्तिक अगहन में भी। एकर बाजार में बहुत मांग रहेला।
0: अच्छा,
1: अभी देखिए अषाढ़ सावन की बात करते नहीं तो अभी समय बा, अभी तो रोपाई हो सके।
0: हाँ भाई, रोपाई हो सके है।
1: पूसा हाइब्रिड 6 ई गोल और चमकदार बैगनी रंग के होला। एकर पौधा एकदम गफदार झाड़ीदार होला और खूब फल देला। अगर बढ़िया से एकर देख रेख कर जाओ तो 1 कट्ठा में मन भर के पैदावार देवेला।
0: हाँ, तो देखथिन पूसा पर्पल लॉन्ग्स में लंबा गहरा बैगनी रंग के फल दे है और अच्छा उपज के लगी जानल जाए। पूसा पर्पल राउंड के फल गोल आकार के भी होबा है जे बाजार में अच्छा कीमत प्राप्त कर सकथिन ओकरा से। अब पूसा क्रांति जीवाणु जनित ग्लानी और बैक्टीरियल विल्ट वाला जैसन रोग के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील मानल जाए। तो काशी तरु और काशी शंकर 8 शंकर किस्म के जेकरा में कि ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के फल प्राप्त करे लगी तो उहे राजेंद्र बैगन एगो जे एक है राजेंद्र बैगन 1 ओकरा बिहार के जलवायु लगी उपयुक्त मानल जाए।
1: अच्छा, अब पूसा पर्पल के बात कही नहीं रहुआ तो नामे से साफ बाकी ये बैगन गुच्छा में हो खत होई।
0: हाँ।
1: एक एक

0: पौधा में एकर पूरा भर भर के बैगन आवेला। आ ई लमहर रहेला, बैगनी रंग के होला, बीमारी से लड़े में एकरा बहुत क्षमता होला एकरा।
1: तो देखिन, ज्यादा उत्पादन लगी प्रमाणित बीज के चयन करतीन, समय पर रोपाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, नियमित सिंचाई और कीट एवं रोग के समुचित नियंत्रण के जरूरी है। तो सही किस्म के चुनाव और वैज्ञानिक खेती अपना के किसान बैगन के खेती से मतलब ज्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकलथिन है।
0: बिल्कुल सही बात कहने रहुआ। आ बैगन खातिर हमेशा दोमट माटी सबसे बढ़िया होला। खेत में पानी ना रुके के चाहिए, ना तो जड़ सड़ जाइए। ओकर कीड़ा से बचाव के बात अगर कहल जाओ तो बैगन में तना और फल छेदक बहुत लागेला। ओकरा से बचे खातिर नीम के तेल के छिड़काव करी, चाहे कोनो बढ़िया दवाई कृषि केंद्र से पूछ के छिड़की।
1: हाँ,
0: तो ई तो भ गई हमने इनके उन्नत किस्म के बात कही नी। ऐसन बैगन लगाए कि बाजार के और सब व्यापारी रोगा खेत पर दौड़ के आवस।
1: हाँ भाई,
0: ते किसान भाई लोगन के फायदा होकर जरूरी न बात दिव्या बहन।
1: एकदम। अब ओकरा से खाली किसाने के फायदा ना होवे,
0: हाँ,
1: हमनियो के भाई
0: हमनियो के
1: निमन निमन
0: फायदा हो,
1: सब्जी
0: एकदम सही
1: तरकारी
0: कहा,
1: मिलाई खाए लगी।
0: एकदम।
1: तो देखिए, खाली बैगने नहीं है, है ना, ये
0: हाँ
1: बरसाती मौसम में बहुत तरह के किस्म किस्म के सब्जी आवा है। तो काहे नहीं ओकरे परे को वार्ता सुनबा थी।
0: एकदम, ऐसे बढ़िया और का हो।
1: हाँ, तो कौन वार्ता सुनवा रहल थी ना?
0: वार्ता के विषय है कि बरसाती सब्जी के किस्म। आ
1: अच्छा,
0: वार्ता कारबारी डॉक्टर सीमा जी,
1: सुनल
0: तो
1: जाए।
0: सुनी सब है एह वार्ता के।
2: सब्जी आज से ही नहीं, पहले से ही सभी किसानों के लिए एक फायदेमंद का सौदा रहा है। किसान को जब कभी लगता है कि अब इस खेती में किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है, तभी किसान के लिए सब्जी एक वरदान के रूप में मुख्य रूप से काम करती है। आज के दौर में मुख्यतः सभी किसान थोड़े क्षेत्र में अपना पालन पोषण करने के लिए किसी न किसी प्रकार की सब्जी की खेती जरूर ही करते हैं। वैसे तो सभी को पता है कि सभी सब्जियों को लगाने का अलग-अलग सीजन होता है, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। इन तीनों सीजन में मुख्य रूप से अलग-अलग प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, परंतु कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनकी खेती आप पूरे वर्ष कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन, मूली, पालक, पत्ता गोभी, बैंगन की खेती। बरसात का मौसम, जिसे मॉनसून भी कहा जाता है, भारत में सब्जियां उगाने के लिए आदर्श समय है। बारिश खरीफ के फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती है, सिंचाई की जरूरत कम करती है और सूखे का जोखिम कम करती है। भारत में मॉनसून के कारण तापमान भी ठंडा हो जाता है, जो कई सब्जियों के लिए फायदेमंद है। बारिश कृषि उपज की गुणवत्ता और मात्रा के साथ साथ भारतीय किसानों की आय और आजीविका को भी प्रभावित करती है। भारत का लगभग 50% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस मौसम में किसानों को खेतों में जल भराव की समस्या से सामना करना पड़ता है, जिससे बाजारों में सब्जियों की आवक कम हो जाती है। इसलिए किसान उन्हीं सब्जियों की खेती करते हैं जो इस मौसम में आसानी से अच्छी पैदावार दे सके। बरसात के मौसम में सब्जियां लगाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान देना चाहिए। बरसात में सब्जी की खेती के लिए हमें पहले खेत की तैयारी करनी होगी। बरसात में सब्जी की खेती में गोबर की खाद का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इस समय गोबर की खाद पूरी तरह से गल जाती है, जिससे इसका छिड़काव फसल में करने से बहुत अच्छी उपज के साथ साथ भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। इसके बाद हमें खेत को अच्छी तरह से जुताई करके समतल करना चाहिए और बरसात में सब्जी की खेती के लिए पौधों की रोपाई मेढ़ों पर ही करनी चाहिए। प्याज की खेती के लिए किसान को सामान्य रूप से खेत में 1 मीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर उठी हुई पट्टियां बनाकर उन पर रोपाई करनी चाहिए, जिससे कि जल निकासी में सुगमता हो। कद्दूवर्गीय सब्जियों और टमाटर की फसल को खरीफ के मौसम में वर्षा के पानी से नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही पौधों में कई प्रकार के रोग तथा उनके उत्पादन की गुणवत्ता में भी हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों को खेत में 10 से 15 फीट की दूरी पर बांस लगाकर उन पर लोहे के तार को सामान्य रूप से कस देना चाहिए। अब इन तारों पर प्रत्येक पौधों को धागा या सुतली की सहायता से बांध दें। इस विधि को मचान विधि भी बोलते हैं और इसका सीधा प्रभाव सब्जी के उत्पादन, वजन और आकार पर पड़ता है, जो कि किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता की सब्जी दिला सकता है। बरसात में सब्जी की खेती के लिए निराई गुड़ाई बहुत जरूरी प्रक्रिया है।

है, जिसका अर्थ खेत की साफ सफाई करना होता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि मुख्य फसल की वृद्धि अच्छी हो सके। समय समय पर खरपतवार को निकालने से मुख्य फसल को पानी और पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़े। खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में होने वाले कृषि उपकरण जैसे खुरपी, कुल्फा, वीडर होते हैं। इनके साथ ही बाजार में रासायनिक खरपतवार नाशक भी मिलते हैं,

जैसे खुरपी, कुल्फा, वीडर होते हैं। इनके साथ ही बाजार में रासायनिक खरपतवार नाशक भी मिलते हैं, जिनका प्रयोग फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। वर्तमान में खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्यतः 25 माइक्रोन मोटाई वाली प्लास्टिक मल्च फिल्म का प्रयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस विधि में किसान मेड़ पर रोपाई के पहले प्लास्टिक फिल्म को खेत में बिछा देते हैं और रोपाई करते समय इनमें निश्चित दूरी पर छेद करके पौधों की रोपाई की जाती है। बरसात में सब्जी की खेती में सिंचाई वर्षा को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। इसमें सामान्यतः 6 से 8 दिनों में ही सिंचाई करते हैं। आजकल आधुनिक कृषि में दिन प्रतिदिन नवीनीकरण को देखते हुए बहुत से माध्यम से सिंचाई की जा सकती है, लेकिन आप अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार ही इसका चुनाव करें। वैसे खर्च को ध्यान में रखते हुए आजकल जो भी सब्जी के उद्देश्य के लिए खेती कर रहे हैं, वे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से टपक सिंचाई का उपयोग कर ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। टपक सिंचाई में आपको पानी तथा उर्वरकों की बचत के साथ साथ मजदूरों की भी कम आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद के रूप में पहुंचा दिया जाता है। सीमांत और छोटे किसान भी इस टपक सिंचाई का फायदा ले सकते हैं। इसको लगवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। इन महीनों में सब्जियां लगाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वातावरण में नमी व अधिक तापमान, जलवायु व एरिया को देखते हुए ही सब्जियों के किस्मों का चयन सही रूप से करना चाहिए। सब्जी के किस्मों का चयन मौसम के अनुसार ही करें। बारिश में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए किसान भाइयों को मुख्य रूप से कीट व रोग रोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। किसान बरसात में धान, मक्का, बाजरा जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं। अगर आप भी उसी समय सब्जियों की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बरसात में सब्जी की खेती की बात करें तो यह जून से लेकर अगस्त तक होता है। ऐसे में बरसात में मुख्य रूप से कुछ सब्जियों की नर्सरी में तैयारी की जाती है, तो वहीं बहुत प्रकार की सब्जियों की मुख्य खेती में डायरेक्ट बुआई की जाती है। आम तौर पर बरसात के सीजन में 3 तरह की सब्जियों की खेती होती है। बेल वाली सब्जियां, खड़ी फसल वाली सब्जियां और जमीन के अंदर यानी कंद मूल बनने वाली सब्जियां। बेल वाली सब्जियों में खीरा, करेला, लौकी, तुरई, कद्दू आदि आते हैं। खड़ी फसल वाली सब्जियों में भिंडी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, ब्रोकोली, लोबिया, टमाटर, मिर्च और पालक आएंगे। जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों में मूली, गाजर, प्याज, शकरकंद, अदरक, लहसुन, चुकंदर और हल्दी इत्यादि आते हैं। टमाटर की उन्नत किस्मों में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख देसी किस्में हैं। इसके अलावा टमाटर की संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 आदि अच्छे माने जाते हैं। खीरा की उन्नत किस्मों में पूसा संयोग, पूसा संकर खीरा 1, पंत खीरा 1, मालिनी, जूही खीरे की कुछ उन्नत किस्मों में आते हैं। ककड़ी की उन्नत किस्मों में स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना ककड़ी, पंजाब चयन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, खेरा 90, कल्याणपुर हरा ककड़ी, कल्याणपुर मध्यम और ककड़ी 75 आदि शामिल हैं। इसकी नवीनतम किस्मों में है PCUH1, पूसा उदय, स्वर्णपूर्णा और स्वर्ण शीतल। इसकी संकर किस्में हैं पंत संकर खेरा 1, प्रिया हाइब्रिड 1 और हाइब्रिड 2। वहीं इसकी विदेशी किस्मों में आती है चयन, सीधी 8 आदि। लोबिया की उन्नत किस्मों में पंत लोबिया 4, लोबिया 263, अर्का गरिमा, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज आदि अच्छी किस्में मानी जाती हैं। चौलाई की उन्नत किस्मों में कपिलासा, RMA 1, RMA 4, छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई, अन्नपूर्णा, सुवर्णा, पूसा लाल, गुजराती, अमरनाथ 2 आदि अच्छी किस्में मानी जाती हैं। करेले की उन्नत किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा विशेष, अर्का हरित, पंजाब करेला, काशी उर्वशी, ऑल सीजन, ग्रीन लॉन्ग,
सफ़ेद लौंग आदि अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। भिंडी की उन्नत किस्मों में

0: पूसा ए चार, परभणी क्रांति, पंजाब सात, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पूसा मखमली, पूसा सा और वी आर ओ छः है। कद्दू की उन्नत किस्मों में पूसा हाइब्रिड एक, काशी हरा कद्दू, पूसा विश्वास, पूसा विकास, CS14, CO1 और 2, हरका चंदन, नरेंद्र अमृत, अर्का सूर्यमुखी, अम्बल, पैटी पान, पीला स्टेट पिनिप, गोल्डन कस्टर्ड आदि अच्छी किस्में हैं। टिंडा की उन्नत किस्मों में टिंडा S48, टिंडा लुधियाना, पंजाब टिंडा 1, अर्का टिंडा, अन्नामलाई टिंडा, माइको टिंडा, स्वाति, बीकानेरी ग्रीन, हिसार चयन 1, S22 आदि किस्में हैं। चुकंदर की किस्मों में रोमन स्काया, टेड, डार्क रेड, इजिप्ट्स, क्रस्पी, क्रिम्सन ग्लोब और अर्ली वंडर आदि प्रमुख हैं। तुरई की उन्नत किस्मों में पंजाब एवरग्रीन, पूसा नसदार, सुरपुतिया, MA11, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, PKM1, तुरई की वैरायटी हैं ये सारे। प्याज की उन्नत किस्मों में एग्री फाउंड डार्क रेड, वसवंत 780, अर्का कल्याण। फूल गोभी की उन्नत किस्मों में पूसा स्नोबेल 1, पूसा स्नोबेल 1, पूसा स्नोबेल 16 प्रमुख हैं। इसके अलावा पंत सुब्रा, अर्ली कुमारी, पूसा दीपाली भी अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। बैगन की उन्नत किस्मों में लंबी वैरायटी वाले फसल में मुख्य रूप से पूसा क्रांति, पूसा पर्पल, लॉन्ग, PH4, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत बैगन 126-5, पंत बैगन 61 आदि आते हैं। गोल फल वाली किस्मों में है पूसा पर्पल, पंजाब बहार टाइप 3, BR112, पंत बैगन 91-2, कल्याणपुर T-4 इत्यादि। मिर्च की उन्नत किस्मों में है काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च 283, जवाहर मिर्च 281, अर्का सुफल और संकर किस्म में आते हैं काशी अर्ली, काशी सुर्ख या काशी हरिता इत्यादि। बरसात में बोई जाने वाली सब्जियों की विशेषताएं ये होती है कि ये फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। जून जुलाई में प्री मॉनसून के ठीक बाद बुआई शुरू हो जाती है। अगस्त सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है और इन्हें सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सब्जियों की खेती के दौरान अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि वातावरण में नमी और अधिक तापमान, जलवायु व एरिया को देखते हुए सब्जियों के किस्मों का चयन सही रूप से करना चाहिए, वहीं अच्छी फसल उगाने के लिए पौधों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए। बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। खरीफ में नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पानी नहीं ठहरता हो या भरता हो। इन सब्जियों को ऊंचे क्यारियों या कंटेनरों में भी उगाया जा सकता है। इसके अलावा बारिश में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए कीट व रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। इस तरह बरसात के मौसम में इन सब्जियों की खेती करके किसान भाइयों आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: भाई बहुत निमन जानकारी मिलल है ना। तो अभी हमनी सब सुन रही वार्ता बरसाती सब्जियों की किस्में वार्ता कर रहे थे डॉक्टर सीमा, तो इनका भाई बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल
1: हमनी के भाई बतेल थीन कि मतलब हम बरसात के मौसम में जो अभी भाई मौसम चल रहा है ओकरा में कैसन कैसन किस्म के सब्जी रहा है, कैसन कैसन लगा थीन है ना।
2: लेकिन एकरा साथ ही साथ दिव्या बहन हम एक बात और कहल जा हम
1: से का
2: कि बरसात के मौसम में सब्जी भ गइल या कोई चीज भ गइल तो ठीक बा कि का लगावे के चाहिए का नहीं। हाँ। एकरा साथ ही साथ बरसात में और भी बहुत सारा ऐसा बात होला जेकरा पर ध्यान देल बहुत जरूरी हो जाए।
1: अच्छा से का
2: देखी बर बीमारी उतने होखेला, कीड़ा मकौड़ा उतने पनपेला।
1: हाँ।
2: मच्छर उतने होखेला। अब बरसात के सबसे जौन कहल जाला कि बरसात में रोआ बाहर से सब्जी उब्जी लावतनी फल लावतनी तो बिना धोले कभू ना खाए के चाहिए।
1: हाँ।
2: काहे कि आजकल तरह तरह के रसायन बा, छिड़काव होता, खाद के छिड़काव होता।

0: तो कौन चीज के कैसे ना, यही चलते देखो तो बनी कि बहुत कम कम उम्र के लइकन के देखो तो कम की बड़ बीमारी हो जाता। पहले के अनाज इतना शुद्ध रखत रहत रहे, फल सब्जी सभी के हो, लोग भी तनिक जगहो रहत रहे तो तनिक घरों में तर तरकारी लोग रोप देते रहे।
1: हाँ
0: कद्दू और नेनुआ तो हम तो हमेशा से लई कहीं से देखनी कि घर ही के फरल खात रही।
1: हाँ
0: अब देखी अब हतनी हतनी गो बाजार से कदुआ लोग लावे जाता था कतना महंगा मिलता, तो अब घर पे लोग खेती बैर छोड़ दिले बा
1: ओकरा में देखते हैं बहुत तरह के रसायन के भी उपयोग
0: एकदम।
1: रहा है ना,
0: हाँ
1: तो इस सब से भाई ध्यान रखे के चाहिए। अब बरसात में खास करके ज्यादा साफ सफाई के ध्यान रखते हैं, चाहे
0: एकदम।
1: वो अपना बाग बगीचा रहे चाहे पशु मवेशी रहे।
0: हाँ
1: हमने तो भाई अपना के ध्यान देवे के रही,
0: एकदम
1: मगर इस
0: एकदम।
1: सब भी ध्यान देना बहुत जरूरी
0: आप
1: है।
0: पशु मवेशी की बात कहनी दिव्या बहिन, तो हम एक बात जरूर कहल चाहे हम कि पशु मवेशी अनबोलता धन हो वाले,
1: हाँ
0: ऐसे उनकर ध्यान रखल उनकर ख्याल रखल बहुत जरूरी हो जाला कि किसान भाई लोगन अगर अपना भी पशु मवेशी रखत अरे तो वो
1: हाँ
0: बात के खास ख्याल रखन कि जो उस जगह पर उनका रखल जाता वो साफ सुथरा रहे, सुखल रहे, हवादार रहे, तब वो या कोनो तरह के रोग बीमारी नापन पे
1: एकदम। और देखते हैं भाई एक साथ कार्यक्रम के आगे चलावल जाए है ना।
0: एकदम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए, चूंकि खेती गृहस्थी के कार्यक्रम होते किसान भाई के गीत नाच से बहुत प्रेम होला
1: अच्छा तो किसान भाई के बात है तो कृषि गीत सुनल जाए,
0: एकदम।
1: गाए खातिन सतीश कुमार शर्मा और साथी।

0: तब कैसन लागल ई कृषि गीत?
1: भाई बहुत नीमन लागल। खेती गृहस्थी में कृषि गीत रहे तो न रहे तो मने न लगे है।
0: बिल्कुल, तो किसान भाई लोगन के भी जरूर पसंद आयल हो। यही के साथे साथे दिव्या बहिन
1: सतीश कुमार शर्मा के भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहले तपन
0: तो चलिए अब
1: प्रणाम। बहिन
0: नमस्ते। दिव्या बहिन
1: नमस्कार।

0: जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू। मुख्यमंत्री ने कहा स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव के रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी NDA की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।
4: दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। क्योंकि अपराध को, अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अगले वित्तीय वर्ष में एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगा, साथ ही जल्द ही अररिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी सौगात मिलेगी।
4: हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है, और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। किसी दिन आएंगे और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों।
3: श्री चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक 4,53,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें मात्र 27,000 आवेदन ही लंबित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और इसके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स देना होगा। सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर नई टोल नीति लागू कर दी है।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा, निजी वाहनों को किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा।
1: कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि अलग अलग सड़कों के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल टैक्स का निर्धारण किया गया है।
2: नई व्यवस्था के तहत दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% और 4.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले बाईपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं रास्तों पर लागू होगा जहां वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नहीं है। टोल की वसूली फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दो पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल टैक्स से नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 3 गुना तक जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अभिषेक कुमार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी बांकीपुर के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता का।
0: गौरतलब है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को जबकि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और शोषित समाज दल ने सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पटना में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा।
4: पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे, और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही उनसे भी फीडबैक लेना, हर एक जिला का जो सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाई।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं।

0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने सुपौल से दरभंगा तक पेड़ियामंच और मधेपुर होते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द DPR तैयार करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के परीक्षणों में E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में इथेनॉल की कमी ऊर्जा क्षमता के कारण मामूली कमी संभव है, लेकिन वाहन के प्रदर्शन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को 24 घंटे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा मिलेगी। आज पटना में LNJP अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हमने कहा है इन्हें कि रेडियोलॉजी जो है, सीटी स्कैन MRI, वो 24 घंटे होना चाहिए और पैथोलैब जो होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसको भी 24 घंटा होना चाहिए। और समाधान कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उनका सीटी स्कैन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें और उनका जो है डॉक्टर जो है टाइम से ड्यूटी पे रहे वो करें।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने उससे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद कलामुद्दीन पर युवकों को झांसा देकर कंबोडिया भेजने का आरोप है। इस मामले में उसे 13 जुलाई को पटना में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंचल नगर गांव में एक निर्माणाधीन चारदीवारी के पास बम विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोग घायल हो गए जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंहमा के पास पुलिस और DIU की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन स्थित एक किराना दुकान से पुलिस और STF की टीम ने 30 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पटना के हाथीदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 किलो गांजा और 1 पिस्तौल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती

इलाके से एसएसबी और पुलिस की टीम ने यूक्रेन की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वे बिना वैध कागजात के नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। बरौनी रिफाइनरी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर सदर डीएसपी आनंद पांडे ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंदोसी गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी बच्चू राम को गिरफ्तार कर लिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में बांका जिले को राज्य भर में पहला स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू, मुख्यमंत्री ने कहा स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
1: बेगूसराय के कारगिल भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार, तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, मंडल अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया।
2: नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने दो निशान, दो प्रधान, दो विधान को हटा करके एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान को स्थापित किया। ये आज उनका बलिदान बेकार नहीं गया। आज भारत फिर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का केंद्र बन करके दिन कर

0: इस कविता को मोदी पूरा कर रहे हैं।
1: बड़ौनी जंक्शन पर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कवि गुरु एक्सप्रेस से लगभग 25 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में दो महिलाओं सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खोदावंतपुर प्रखंड में इस वर्ष खरीफ मौसम के दौरान 1250.30 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने पंचायत बार लक्ष्य तय करते हुए किसानों को समय पर बिचड़ा तैयार करने और वैज्ञानिक पद्धति से धान की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA की जिला इकाई ने प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की जयंती डॉक्टर्स डे के रूप में मनाई। कार्यक्रम में बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सत्यप्रकाश, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और IMA के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर BC राय के योगदान को याद किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई ने पोखरिया स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय जनता दल ने कंकोल स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने की। इस अवसर पर पूर्व MLC डॉक्टर तनवीर हसन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरौनी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दो नाबालिग सगी बहनों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। दोनों बहनें परिवार से बिछड़ गई थी। जिले में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया है। मकई सहित खरीफ की अन्य फसलों को लाभ पहुंचा है, जिससे किसानों में खुशी है। 4 जुलाई को जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत राज्य से प्रखंड स्तर तक अधिकारियों ने सामुदायिक संस्थाओं का भ्रमण कर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। और मधुरापुर दक्षिण टोला में अग्निकांड से प्रभावित 54 परिवारों के बैंक खातों में 8,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने स्वर्ण पदक और साक्षी राज ने कांस्य पदक जीता है। सुप्रिया राज का चयन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है।
2: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं अनूप जलोटा।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम और पिया भी शाम, तो शब्दों

ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा पीयूष पवार जी संतूर पर आपको वही बजा के सुनाएंगे, और जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं।

0: Ram, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेलबर्न की आगामी यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त श्री नागेश सिंह का साक्षात्कार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं धड़कन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं।

अगला गीत हमने लिया है बंटी और बबली फिल्म से, अलीशा चेन्नई और शंकर महादेवन के स्वर में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, गुलजार के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

बंटी और बबली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आनंद उठाते हैं कुछ भजनों का। कलाकार हैं अनूप जलोटा।

भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए।

0: अभी आप अनूप जलोटा से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के

0: साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख

0: दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है, जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जुजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया, जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तिसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निपटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं।

0: भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आईएमडी ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकल व हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसअत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का विषय है वो गांव की बेटी। लेखक है अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। आइए सुनते हैं नाटक।
1: प्रस्तुत है नाटक।

0: वो गांव की बेटी, लेखक अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता है छत्रानंद सिंह झा।
1: दीना, ए दीना।
2: हाँ मालिक।
1: अरे गैया और भैंसिया को तनी उधर ले जाकर बांध दो।
2: ठीक है मालिक, बांध देते
1: हैं। अच्छा ठीक है, इधर कौन आ रहा है मोटरसाइकिल से? इधर आ रहा है।
3: हाँ

0: वाला हूँ। नाम है जगलाल, किसान हूँ भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, आने का कारण?
0: उका है कि त्रिलोकी सिंह डुमराव वाले ने आपके विषय में कहा था, आप अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर।
2: अच्छा अच्छा, बरतुहार है। अच्छा अच्छा, इत्मीनान से बैठिए बैठिए।
1: हाँ जी, आप अपने विषय में बताइए।
0: राम सिंह हसन बाबू, कृपया आप मेरी बात पर ध्यान दें। मेरी बहन जो है ना, वो सर्वगुण संपन्न है। मेरी बहन एक ऐसी बेटी है जिससे किसी को आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। बीए पास है, बैंक की परीक्षा दे चुकी है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर उत्तीर्ण होगी।
1: ठीक है, लेकिन देखिए जगलाल बाबू, मेरी आदत सीधी सीधी बात करने की है। घुमा फिरा कर बात करने और वक्त बर्बाद करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, समझिए।
3: अरे मेरा बेटा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है।
1: अच्छी कदकाठी है,
3: सुंदर है,
1: होशियार है।
3: अरे सीधी सीधी बात कीजिए ना, इधर उधर बात घुमाने से कोई लाभ नहीं है। काहे परीक्षण जी?
2: हाँ, जगलाल भाई
0: जी।
2: ए जगलाल भाई
0: जी, कहिए।
2: मेरी सलाह है कि आप अपनी बहन की शादी की इच्छा रखते हैं तो खोल कर बताइए। हाँ, आपका क्या एस्टिमेट है, और कुछ तो प्लान होगा, क्यों भाई जी?
0: बात तो परीक्षण जी आपने सही कही है। मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि आखिर छोड़िए, आप ये बताइए कि मुझे खर्च कितना करना होगा।
3: अरे भाई जी, आप तो उल्टी ये बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप खुद ही देखिए ना हम लोग का क्या पोजीशन है। अरे उसी हिसाब से सोच समझ कर कहिए।
2: हाँ, अरे भाई, शहर वाला हिसाब किताब नहीं है। आप जान लीजिए कि गाय, बैल या भैंस हमेशा सालों भर, यानी कि सालों साल दरवाजे पर बंधी रहती है। अरे दूध दही की कोई कमी नहीं है। दीना, ए दीना
4: जी। मालिक।
2: अरे चाय पानी ले आओ भाई, मेहमान आए हैं।
0: देखिए सुनिए परीक्षण बाबू, देखिए चाय पानी में समय गंवाने की जरूरत नहीं है, और मुझे लौटना भी है। मेरी इच्छा थी कि लड़के को जरा देख सुन लेते तो बात आगे बढ़ाता।
1: इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़का और लड़की का मैच तो होना ही चाहिए जगलाल जी।
0: लेकिन राम सिंह हसन बाबू, एडुकेशन की क्या स्थिति है?
2: देखिए भाई, देखिए, स्कूली पढ़ाई के पोजीशन तो आपसे छुपा है नहीं, गेसिंग का जमाना है। जितना जुगाड़ लगा उतना तो पढ़े ही। ट्राई किया मैट्रिक में दो दो बार, पर सक्सेस नहीं हुआ।
1: हाँ, लेकिन देखिए देखिए देखिए, मैट्रिक फेल है पर हिम्मत नहीं हारी। टेक्निकल लाइन में चला गया, और घर में अन्न पानी की कोई कमी तो है नहीं।
0: टेक्निकल लाइन? राम सिंह हसन बाबू, ये टेक्निकल लाइन से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।
2: अरे भाई, गांव के बाजार में ही एक शानदार साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है। हाँ भाई, अपना रोजगार है, अच्छी कमाई हो जाती है, एक असिस्टेंट भी रखे हुए हैं। हाँ।
5: लीजिए सरकार, चाय पिया जाए, नाश्ता आ रहा है।
0: अरे चाय चाय रहने दीजिए। देखिए, अब मुझे अनुमति दीजिए, निकलेंगे। कहे कि उधर बाजार में ही शॉप यानी रिपेयरिंग शॉप देखते बढ़ जाएंगे। जी चलता हूँ, प्रणाम।
1: अरे अरे अरे जगलाल जी, आप तो एकाएक हड़बड़ आ गए।
3: अरे रुपये पैसे की चिंता नहीं करिए ना, हिसाब किताब सेट हो जाएगा।
0: ठीक है ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। प्रणाम परीक्षण जी, प्रणाम।
2: प्रणाम
0: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रणाम,
0: चलता हूँ मैं
1: जी। प्रणाम।

0: अरे माला, तुम यहाँ यहाँ क्यों खड़ी हो? माला, शादी देखने जा रही हो ना?
1: इरादा तो ऐसा ही था, लेकिन नहीं जा रही हूँ। ऐसी शादी में सम्मिलित होना महापाप है, महापाप।
0: अरे इस तरह क्यों बोल रही हो माला?
1: इसीलिए तो, इस शादी से मुझे नफरत है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। बताओ मनोज, 14 साल की लड़की की शादी, ये अन्याय है ना?
0: हाँ है तो, कानूनन अपराध भी। अच्छा एक बात कहो माला, रुक्मिनी तुम्हारी सहेली है, एक क्लास में पढ़ती भी हो, आखिर पढ़ाई बीच में छोड़ के कच्ची उम्र में शादी करने के लिए रुक्मिनी तैयार कैसे हो गई? माँ बाप को उसने बताया नहीं क्या?
2: अरे सबके सब यहीं खड़े हो, शादी हो गई, खाना पीना हो गया क्या? यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों क्या घिटर पिटर कर रहे थे?
3: ओह सॉरी, हम लोगों ने बाधा दे दिया।
1: नहीं रे, तुमने बाधा नहीं दी, असल में हम लोग एक गंभीर समस्या पर बातचीत कर रहे थे।
3: मेरे सुनने लायक है क्या?
1: बात ये है कि आज रुक्मिणी की शादी है, बल्कि ये कहो हो गई। जानते हो मनोज, यह शादी रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध हुई। वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी, 9th में पढ़ती है, शादी की उम्र भी नहीं हुई।
2: हाँ ये तो ठीक नहीं है।
3: ओ अब समझा, तुम लोग इसीलिए इस शादी में सम्मिलित नहीं हुए, शादी का बहिष्कार किया, क्यों है ना यही बात?
1: हाँ इसीलिए हम लोग यहाँ रुक कर सोच विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिससे आगे किसी और रुक्मिणी की शादी के नाम पर बलि ना दी जाए।
3: ठीक है, क्यों ना हम लोग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए जो गांव में घूम घूम कर लड़कियों को शिक्षित करने और उम्र से पहले शादी नहीं कराने का प्रचार प्रसार करे।
1: हाँ हाँ हाँ सही बोले।
2: और हाँ सुनो, और लोगों को ग्रुप में जोड़ना है।
0: जरूर, विचार तो काफी अच्छा है, अगर हौसला हो तो कोई काम कठिन नहीं होता, अच्छा सोचने वाले को अच्छा फल ही प्राप्त होता है, क्यों?
1: हाँ, एकदम सही।
4: किसी के दरवाजे पर बारात आती है तो मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। क्या मेरे दरवाजे पर भी इस खुशी का अवसर आएगा? लक्ष्मी बड़ी हो गई है, उसका हाथ पीला करा देता तो बाबूजी को दिया गया वो वचन पूरा हो जाता। रुपये पैसे की तंगी तो किसी तरह पूरी की जा सकती है, पर योग्य वर कहां से ढूंढूं? समझ में नहीं आता। हित कुटुंब से विवाह की चर्चा करता हूं तो लोग उलाहना देते हैं कि और लड़की जात को ऊंची शिक्षा दिलाओ, बहन को पढ़ाया तो क्या गुनाह किया? अनपढ़ रखता, गांव की बेटी पढ़ गई तो परिवार की शान में कोई कमी आ गई क्या? वही पुरानी दकियानूसी बातें करते हैं लोग, करो समझ नहीं आता।
5: अरे जगलाल भैया, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे आपकी तो गली पुरवारी वाली है ना? अरे भैया कहाँ से आ रहे हो?
4: अरे भैया ध्यान जरा दूसरी तरफ अटक गया था भैया, इसीलिए आगे बढ़ गया।
5: किस तरफ ध्यान भटक गया भैया? इसीलिए तो कहते हैं, मेरा मतलब है, कहने वाला कहता है कि कुंवारा मन बड़ा चंचल होता है, और समय पर आपको भी विवाह कर लेना चाहिए था। वो क्या कहते हैं कि हमको भौजाई मिल जाती और आपको वाइफ।
4: अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात सुन लो भैया, अपनी शादी की बात सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया है, अभी तो बहन के विवाह के लिए दौड़ धूप कर रहा हूँ भैया।
5: अरे भैया, लक्ष्मी बहन की शादी के लिए काहे चिंता करते हैं? लक्ष्मी बहन जैसी लड़की जिस घर में भी जाएगी वो घर निहाल हो जाएगा।
4: वो तो सही कहा भैया, पर योग्य वर ढूंढते ढूंढते मैं कभी कभी निराश होने लगता हूँ, पर यही सोचकर मन को बहला देता हूँ कि जो राम जी चाहेंगे वही होगा। अच्छा सोचने से अच्छा होता है, अच्छा ही होगा भैया। जानते हो भैया, मुगाओं गया था, बाबू त्रिलोकी सिंह ने एक लड़का बताया था, पर कहा कहें?
6: पर क्या भैया, बात नहीं बनी क्या?
4: अरे वो बात नहीं है भैया, घर परिवार तो अच्छा ही है, पर लड़के की पढ़ाई बहुत ही कम है, मैट्रिक फेल। अब तुमसे कहा बताएं भैया, लक्ष्मी जो BA पास है उसके लिए ये लड़का ठीक होगा।

0: अब तुम ही बताओ।
1: ना, हमारे हिसाब से किसी भी तरह से नहीं, नॉट एट ऑल भैया।
0: और जानते हो भैया, रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो साइकिल रिपेयरिंग का शॉप चलाता है, पर बाजार में पता चला है कि लड़के को नशा सेवन करने की आदत है, खैनी पान जर्दा और कभी कभी तो गांजा भी पीता है। अब तुम ही बताओ भैया, ऐसे लड़के से बिना कुछ लिए दिए भी शादी का ऑफर होता ना तो मैं ये शादी नहीं करता। सो मैंने लड़के वालों को इशारतन ना कहकर चलाया।
1: एकदम ठीक किया, जाइए, आपका घर आ गया, मैं भी चलता हूँ।
0: हाँ भैया जाओ, प्रणाम।
2: सुनती हो माँ, भैया आ गए।
3: जगलाल, मु गाँव गए थे ना बेटा, शादी की बात चलाने, क्या हुआ, कुछ बोल दे रहे हो बेटा, इतने उदास क्यों हो?
0: अब कहा बताए अम्मा, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, अरे उसका जीवन हम नष्ट नहीं ना करेंगे अम्मा, मुगांव वाले लोग तो
3: क्यों, वो लोग तो धनी मानी है ना, घर द्वार खेती बाड़ी भी अच्छी है, तो क्या खराबी है उसमें बेटा?
0: अरे सिर्फ खराबी ही खराबी है अम्मा, दो बार लड़का मैट्रिक की परीक्षा दे चुका है पर दोनों बार फेल होता रहा है। अब तुम ही बताओ अम्मा, अपनी ग्रेजुएट बहन का विवाह ऐसे लड़के से कर दूं? और जानती हो अम्मा, साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है। हाँ, और बाजार में ये भी पता चला है कि नशे का सेवन भी करता है वो लड़का।
3: लक्ष्मी बेटी, जल्दी आ जा बेटा, भैया को पानी पिला।
4: आई माँ। ये लीजिए भैया, बैठिए, लीजिए मीठा खा करके पानी पी लीजिए।
0: हाँ, लक्ष्मी।
4: हाँ भैया।
0: ये ले मैगजीन, तेरे परीक्षा देने में काम आएगा। जो जो सर्विस के लिए तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कैसी तैयारी करनी है, अरे सब इसमें मिलेगा।
4: भैया आपने ये बहुत अच्छा किया, मैगजीन ले आए।
3: हाँ हाँ, बड़ा अच्छा किया। सुन, घर के काम समेट, धान उधर सूख रहा है, जा उसे चला दे। चली है बैंक की तैयारी का सब।
0: अरे अरे अरे अम्मा, अम्मा क्या बोल रही हो अम्मा? लक्ष्मी इधर आ, इधर आ। अरे माँ तुम ऐसा क्यों बोलती हो? इधर देखो, ये मैगजीन देखो अम्मा।
3: हाँ।
0: इस फोटो को देखो।
3: क्या देखूं?
0: 22 व्यक्तियों को बैंक की नौकरी में सफलता मिली है।
3: अच्छा।
0: और जानती हो अम्मा, उसमें 9 लड़कियां हैं, समझी?
3: अच्छा।
0: लक्ष्मी।
4: हाँ भैया।
0: लक्ष्मी तू तैयारी कर, जा। अरे परिश्रम के सामने कोई कार्य कठिन नहीं होता बहन, सपना देखना ही चाहिए। और ये मैं जानता हूं बहना कि तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। और जानती है लक्ष्मी?
4: हाँ भैया।
0: अगर तेरा सपना पूरा होगा ना तो अरे तेरे भैया का भी मान बढ़ेगा बहना।
4: भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद का सहारा है, परिश्रम करना मेरा धर्म है, भगवती चाहेंगी तो मैं अवश्य सफल हो जाऊंगी भैया।
5: दीदी तुम जरूर बैंक में निकल जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, मेरी भी आगे की तैयारी होती चलेगी।
0: हाँ मनोज, सही कहा तुमने, अरे लक्ष्मी जरूर पास करेगी। और मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो वचन मैंने बाबूजी को दिया था कि अपनी छोटी बहन और भाई के जीवन को आगे बढ़ाने का हर प्रयास करेंगे वो पूरा हो।
6: जगलाल जी, कोई है भाई? जगलाल बाबू।
0: अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। अरे जोगी बाबू, कैसे कैसे इधर आना हुआ?
6: इधर ही आए थे कुछ काम से, तब सोचा आपसे भेंट कर ले। भाई जी बुरा मत मानिए, 10,000 रुपया का काम पड़ गया है, हो तो दे देते अच्छा होता।
0: क्या 10,000? अरे भैया मेरे हिसाब से तो 7,000 निकलता है। वो 1-2 महीने में चुका दूंगा भैया, और फसल का हाल तो आपसे छिपा नहीं है ना।
6: 7,000? खैर जो हो, 7 या 10,000,

0: भाई जल्दी मिल जाता तो अच्छा था। अपना पैसा देकर आदमी को निहोरा करना पड़ता है। क्या सोच रहे हो भैया?
1: अब सोचना कहाँ है भैया, कर्ज है तो वापस करना ही है ना। अरे
2: भैया,
1: माँ, मनोज, लक्ष्मी, अरे अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं समझ लूंगा।
3: भैया आप अपने बारे में भी सोचिए। हम लोगों के भाग में जो होगा वो पूरा हो जाएगा। हम लोगों को बनाने में अपना जीवन सूना कर लिया आपने, विवाह तक नहीं किया। भैया ये ठीक नहीं है।
1: अरे अरे मनोज, तू मेरा भाई ही नहीं है, और मेरे भाई मेरे लिए तुम लोगों के अलावा क्या है, बोल। तू ऐसा मत सोच कि मेरा जीवन सूना है। माँ, बहन, भाई, अरे क्या नहीं है मेरे पास।
4: जगलाल, जगलाल,
5: दोनों भाइयों में क्या बात चल रही है बेटा? जोगी की आवाज सुनाई पड़ी थी, चाय ले आई हूँ। चला गया क्या?
1: हाँ हाँ माँ, वो अपने बाकी रुपए के तगादा में आया था, पर जानती हो अम्मा, उसके हिसाब से 10,000 और देना बाकी है।
5: ठीक है, चिंता क्या करना है बेटा, जो है वो तो देना ही पड़ेगा ना।
1: हाँ हाँ माँ।
5: एक काम कर।
1: क्या?
5: थोड़ी जमीन हटा दे और कर्ज खत्म कर।
1: ये क्या कह रही हो अम्मा? देखो, जमीन की बात मत करो अम्मा।
6: हाँ भैया। माँ, तुम दोबारा जमीन बेचने की बात मत करना।
1: हाँ हाँ माँ। अरे अम्मा, जमीन बिक गई तो हम किसान से मजदूर हो जाएंगे। लक्ष्मी ठीक ही तो कह रही है, जमीन नहीं बिकेगी अम्मा।
6: भैया मेरी बात सुनिए, मेरी शादी के लिए जो जेवर बनाकर रखा है उसमें से कुछ बेचकर कर्ज लौटा दे, और 3-4 वर्ष के लिए मेरे विवाह की बात टाल दे। भगवान चाहेंगे तो बैंक वाली परीक्षा में तब तक सफलता मिल ही जाएगी भैया।
3: दीदी सही कह रही है भैया, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। कहा गया है ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
5: ठीक है, तुम लोगों की राय से मैं भी सहमत हूँ।
1: ये हुई ना बात।
5: हे भोलेनाथ, आपकी दया से सब कुछ चल रहा है, कृपा बनाए रखें प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: भोले बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए।
5: लक्ष्मी।
6: हाँ माँ।
5: ले बेटा, ये प्रसाद मुंह में डाल ले।
6: माँ, आज मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है।
5: अच्छा,
6: सुनती हूँ कि इसका कोई प्रभाव होता है?
5: ओह, चिंता मत कर बेटी, ये सब मन की भावना है, मैं नहीं मानती। मनोज ठीक ही कहता है, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है।
6: हाँ माँ, एकदम सही है। गांधी जी की जीवनी पढ़ रही थी तो गांधी जी के दृढ़ संकल्प की बात समझ में आई। कोई बात अगर आदमी दिल से ठान लेता है तो वो पूरी होती ही है।
5: मैं तो तुम लोगों की तरह IABA पास हूँ नहीं, पर महसूस होता है बेटा तुम लोगों के विचारों में कितनी बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं।
1: अरे माँ, माँ तुम यहाँ हो? अरे उधर देखो, छोटका नाना जी आए हैं।
5: क्या कहा? छोटका बाबूजी आए हैं। मनोज जा, जा बेटा पानी ले आ।
1: अभी जाता
5: हूँ। लक्ष्मी, तुम क्या ताक रही है बेटा? जा जा के जल्दी से प्याज काट के और बेसन लगा के प्याज को बना दे। जा जा। छोटका बाबूजी को बहुत पसंद है।
1: जा रहे हम लोग।
6: जाती हूँ।
5: प्रणाम बाबूजी।
7: खुश रहो बेटी, बहुत खुश रहो। अरे तुमसे ही मिलने चला आया। अरे लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी।
6: हाँ नाना जी।
7: अरे
6: नाना जी, चरण छूती हूँ।
7: हाँ खुश रहो बेटा। लक्ष्मी, पूरे गांव जेवार में समाचार फैल गया है कि रमा भैया की नातिन बैंक के ऑफिसर की परीक्षा में बैठी है। अरे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गांव की बेटी बैंक के ऑफिसर।
6: अब चकाने की कोई बात नहीं है नाना जी। नाना, आपका आशीर्वाद चाहिए, रिजल्ट आज ही कल में निकलने वाला है।
5: छुटका चाचा, आपकी नातिन ने संकल्प लिया है।
7: अच्छा?
5: कि जब तक वह अपना कोई स्थान नहीं बना लेती ना, तब तक इस शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेगी।
1: अरे माँ, मुझे लक्ष्मी की बात उचित लगी,

0: और वैसे भी अभी इसकी उम्र ही क्या है।
1: ठीक ही कहते हो जगलाल, नया जमाना के हिसाब से तो उम्र अभी नहीं हुई है रे, पर मेरे जमाने को देखो तो इस उम्र में हम लोगों के हाड़ में हरदी लगवा दी जाती थी।
2: चाचा जी लीजिए, आपकी नातिन ने बड़े शौक से प्याजुआ आपके लिए बनाई है।
3: हाँ नाना, आपके आने की बात सुन माँ एकदम हड़बड़ा गई, बोलने लगी ई बनाओ ऊ बनाओ, और हाँ प्याजुआ जरूर बनाना, छोटका चाचा को बहुत पसंद है।
1: सुनो सुनो सुनो बेटी
2: जी,
1: लक्ष्मी के लिए एक अच्छे लड़के की जानकारी मिली है।
2: अच्छा?
1: हाँ, कॉलेज में लेक्चरर है, सुखी संपन्न परिवार है, अगर तुम कहो तो बात चलाएं।
4: अरे नाना जी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लीजिए, वो कहा है ना कि आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
3: ए भैया, उन लोगों को बैठने के लिए कह दीजिए, अभी बाप बेटी में बहुत जरूरी बात चल रही है।
2: चली बोलने।
4: आप लोग आराम से बैठ जाइए, नाना जी आ रहे हैं। अरे बैठ जाइए भाई। अरे मनोज, अरे देखो तो किसका जयकारा लग रहा है।
5: मठिया की बेटी
6: जिंदाबाद,
5: मठिया की बेटी
6: जिंदाबाद,
5: लक्ष्मी दीदी
6: जिंदाबाद,
5: लक्ष्मी दीदी
6: जिंदाबाद।
7: मनोज भाई, बैंक की परीक्षा के रिजल्ट आउट हो गया। सरैया बाजार के बैंक मैनेजर साहब बोल रहे थे कि फाइनल रिजल्ट निकल गया, नेट पर रिजल्ट आ गया, लक्ष्मी दीदी के फाइनल रिजल्ट निकल गई है।
4: क्या, लक्ष्मी का रिजल्ट निकल गया? धन्यवाद प्रभु।
1: जगला जगला, अरे क्या समाचार है भाई?
4: अरे बहुत नीमन समाचार है नाना जी, बैंक के ऑफिसर हो गई है आपकी बिटिया।
1: अच्छा?
4: उसका रिजल्ट निकल गया नाना।
1: हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।
4: लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे अरे जरा बाहर निकल, अरे जल्दी आ रे लक्ष्मी, इधर आ इधर आ इधर आ, ये देख गांव के युवा लोग तुमको बधाई देने आए हैं।
3: शांत हो जाइए, और मुझे आपसे कुछ कहना है, एक बहुत जरूरी बात। आप लोग एक बात सुन लीजिए, गांव के सब बेटी को पढ़ाना अनिवार्य कीजिए, विवाह के लिए उतावले मत होइए, तिलक दहेज को नकारिए। मैं यही आग्रह करूंगी आप सबसे।
4: आशीर्वाद बहना।
3: हाँ भैया।
4: तुमने अपने बाबूजी का सपना, अपने दादा का मान पूरा किया बहना, उसे आगे बढ़ाया। जा नाना जी और माँ का आशीर्वाद ले लो।
3: हाँ भैया।
5: दीदी पार्टी, पार्टी।
4: अरे आप लोग बड़ा शांत हो जाइए, होगी पार्टी, रसदार बुंदिया और बड़की पूड़ी चलेगी।
8: वो गांव की बेटी, अभी आप सुन रहे थे ये रेडियो नाटक। भाग लेने वाली कलाकार थे शैलेश जमियार, संगीता साही, रत्नेश कुमार, शिवशंकर रत्नाकर, संजय किशोर, सरोज कुमार मिश्र, अर्चना सोनी, उदय शंकर, आशीष कुमार सिंह और संजय सिंह। बाल कलाकार थे विराट वैभव, अमृत राज, अम्बरीन हसन और सृष्टि सिन्हा। लेखक अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रस्तुति सहयोग उपेंद्र कुमार पासवान। संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता छत्रानंद सिंह झा। ये प्रस्तुति विविध भारती पटना की थी।
9: अभी आप सुन रहे थे नाटक वो गांव की बेटी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। हमारे यहाँ षष्ठी पूजन तक सोहर गाने की परिपाटी है, इसलिए आज यदि फिर हम अपना कार्यक्रम सोहर से आरंभ करें तो कैसा रहे? सात सखियों के संग यशोमती जमुना किनारे गई। उस पार से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। यशोदा ने नाव से नदी पार किया और पास जाकर पूछा, ए बहन, तुम्हें कौन सा दुख है? सास ससुर का, मायके का या प्रवासी पति का? जवाब मिला, नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं संतान दुख से दुखी हूँ। मेरे सात पुत्रों को कंस ने मार डाला। अब आखिरी की बारी है, कैसे भरोसा करूँ? यशोदा ने भीड़ बंधाया, चुप हो जाओ बहन, मैं अपनी संतान की बलि देकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगी।

चक्र सुदर्शन धारी चतुर्भुज रूप प्रभु ने अवतार लिया। नंद घर की बिटिया देवकी के पास आई और देवकी का पुत्र नंद घर पहुंचा। मंगल गीत गाए जाने लगे। सोना और रूपा की बात कौन करे, न्योछावर में संपूर्ण गोकुल ही लुटा देने की धुन सवार है।

चक्र सुदर्शन हाथों में लेकर पैदा लेने वाला कोई मामूली हस्ती तो हो ही नहीं सकता। उसकी लीलाओं से ब्रज के कण कण परिचित हैं। वो मन मोहना है, मन रसिया है, उसके बोल मीठे हैं, उसके अंग अंग प्रेम रस में डूबे हैं। वो प्रेम करना जानता है, प्रेम सिखाना जानता है। फिर क्यों नहीं वंशी की जादू भरी तान पर पल प्रतिपल जियरा बेसुध हो, कैसे नहीं नैनों से नैना उलझ जाए राधा दीवानी के।

सखी हो श्याम रंग रंगी, बावरी राधा के नैन ढूंढते फिरते हैं कन्हैया को, मिलने के लाख बहाने निकल आते हैं। कभी तो कृष्ण मोहिनी रूप धरकर सखियों के बीच विराजमान होते हैं और कभी राधा ही दही बेचने को चल पड़ती है। नंद के लाला पूछते हैं, ए ग्वालन, दही का मोल क्या है और बेचोगी किस भाव में? राधा का उत्तर है, 10 टका का दही है और 20 टका में बेचूंगी।

हंसी थी ठोली के, न जाने ऐसे कितने अवसर आए। एक दिन राधे गई यमुना स्नान को, कदम उतर वंशी टेढ़े मुरारी ने देख लिया। तट पर रखे कपड़े उठाए और कदम की डार पर जा बैठे। राधा बेचैन हो गई, अपने को जल में छुपाए उसने कपड़ों के लिए बड़ी आरजू मेहनत की। कैसे कैसे कौतुक किए कन्हैया ने, एक तरफ तीर हरण होने से बचाया और दूसरी तरफ खुद ही सिर चुराया।

सावन का महीना, डार डार में झूले पड़ गए, पेड़ों के पत्ते नए, रेशम की डोर नई, चितचोर नए, ब्रिज बालाएं नई, सांवरे संग बीतने वाला हर पल नया है। जितने झूले उतनी सखियां, जितनी सखियां उतने मोहन, जो सारे जग का मोहन है उसके लिए एक से अनेक होना कोई बड़ी बात नहीं।

तरह से प्रेम प्रदर्शित करने वाला, सखियों को छेड़ छेड़ तबाह करने वाला, सावन की रिमझिम फुहार में झूले की बहार लेने वाला, कहीं दूर बहुत दूर जा बसा। ब्रिज बालाएं बेहाल हैं, आओ मनमोहना जी जो थारी बात, अनवरत प्रतीक्षा है। आकाश के बादल भले ही थम जाएं, आंखों के बादल नहीं थमते। मन की सुलगती आह दर्द भरा गीत बनकर ठंडी हवाओं में घुल मिल जाती है। सांवरे तुम इतने कठोर तो नहीं थे।

गूंजी बिहार। अभी आप ये लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं शागिर्द फिल्म का प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है मजरूह और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है राजा मेहदी अली खान और संगीतकार है मदन मोहन।

0: अभी आप सुन रहे थे समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आरडी बर्मन।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फर्ज फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं काला बाजार फिल्म का ये गीत मोहब्बत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं एसटी परमन।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते

0: था सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः के 5:45 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।